हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्वागत करते हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की चौथवीं तिथि, तदनुसार 25 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 35 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं, सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। समाचारों के तुरंत बाद सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन

0: पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमेरिका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश 4थे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

वंदन वार, सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है कि किसी भी व्यक्ति के विचार ही सब कुछ हैं, वो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

ईश्वर प्रेम का मार्ग नहीं बल्कि संपूर्ण प्रेम ही है। जो मनुष्य ईश्वर के प्रेम में लिप्त होता है उसे ये संसार अपना ही रूप लगता है। समस्त जीव जंतु सहचर प्रतीत होते हैं और वो स्वयं ब्रह्मांड की विशाल सत्ता के सामने नतमस्तक होता है।

भक्ति का वास्तविक मार्ग क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में ही भक्ति का सार छिपा है। चंदन घिसने से पत्थर भी सुगंधित हो जाता है, ये सगुण भक्ति रूप है। तो उस पानी की कल्पना कीजिए जो चंदन और पत्थर के घर्षण के समय उपस्थित होकर चंदन ही बन जाता है। हमारी भक्ति उस पानी के समान ही होनी चाहिए।

तो उस पानी की कल्पना कीजिए जो चंदन और पत्थर के घर्षण के समय उपस्थित होकर चंदन ही बन जाता है। हमारी भक्ति उस पानी के समान ही होनी चाहिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन। आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण सुनिए झरोखा के अंतर्गत। सुबह 6:35 से श्री रामचरितमानस सुन सकते हैं। आज सुनिए 230वीं कड़ी। 6:45 से संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक SL कंडारा। इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी सुनिएगा। सुबह 7 बजे से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। 7:30 से हम है राही प्यार के और 8 बजे से समाचार प्रभात। आठ बजकर 15 मिनट से सुन सकते हैं कार्यक्रम त्रिवेणी और 8:30 से नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार मदन मोहन पर। सुन सकते हैं सुबह 9:30 से। सुबह 10 बजे से पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान कार्यक्रम में सुनिए चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत। संपादन काजल भदरगे का, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। 11 बजे से रंग तरंग और 12 बजे से हिंदी में समाचार।

मेरा सफर कार्यक्रम 1 बजे से 2 बजे से सुनिए त्रिवेणी। 2:15 से दोपहर समाचार, 2:30 से सदाबहार नगमे कार्यक्रम और 3 बजे से सुनिए सखी सहेली। 4 बजे होंगी आपकी फोन इन फरमाइशें पूरी हेलो फरमाइश कार्यक्रम के साथ। शाम 5 बजे छाया गीत का पुनः प्रसारण, तराने नए पुराने कार्यक्रम 5:30 से और 6 बजे से समाचार। छह बजकर 5 मिनट से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। शाम 6:30 से झरोखा के अंतर्गत आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण सुनिएगा। 6:35 से संध्या रंजन और 6:45 पर सुन सकते हैं संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार 8वीं कड़ी। कलाकार है वायलिन वादक SL कंडारा। शाम 7 बजे से जयमाला, 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए कार्यक्रम में निर्देशक और फिल्मकार सुभाष जैन से नंदाकिनी जोशी की बातचीत की पहली कड़ी सुनिएगा, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। लो कर लो दर्शन, ये झलकी सुन सकते हैं रात 8 बजे से हवा महल में, लेखन आतिश का, निर्देशन हर्षवर्धन गवई का।

रात 8:15 से चित्रलोक, 8:45 से समाचार संध्या, 9 बजे से सुनेगा कार्यक्रम आपके लिए, 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम सुन सकते हैं, केंद्रित है संगीतकार मदन मोहन पर। रात 10 बजे से छाया गीत, 10:30 से ढलती जाए रात और 11 बजे से रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। ये थे आज के मुख्य कार्यक्रम जिनका विवरण आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत।

देवताओं का हित इसी में निहित था कि भरत के अनुनय विनय को मानकर श्री राम वन से वापस न चले जाएं। अतः इंद्र सहित अन्य देवगण ने एक बार फिर सरस्वती से प्रार्थना की कि वे अपनी माया से भरत की मति फेर दें, ताकि श्री राम को लौटा ले जाने में भरत सफल न हो सकें। किंतु सरस्वती जानती थी कि भरत की मति सुमेरु पर्वत के समान अटल है, और ये भी कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की प्रबल माया के लिए भी ये संभव नहीं कि वो भरत की मति फेर सकें। फेरना तो दूर, वो उनकी ओर देख भी नहीं सकेंगी। स्वार्थवश सब देवताओं ने प्रबल माया जाल रचकर चारों ओर भ्रम, अप्रीति और भय फैला दिया। देवराज इंद्र को ये आशंका बनी रही कि कार्य का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। उधर मुनिवर वशिष्ठ, राजा जनक तथा भरत श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए। कुलगुरु ने भी इससे पहले जनक और फिर भरत का ये प्रस्ताव निवेदित किया कि स्वयं भरत श्री राम के साथ वन में रहें और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं। मुनिवर ने निर्णय श्री राम पर छोड़ दिया।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: संगीत सरिता के सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आजकल आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायोलिन का विहंगम संसार। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध वायोलिन वादक पंडित एसएल कंडारा जी। आपको तबले पर संगति कर रहे हैं श्री संतोष मिश्र। पंडित जी, प्रातः समय गाए बजाए जाने वाले रागों में एक मुख्य राग है अहीर भैरव
2: जी।
1: आज इस राग की चर्चा करते हैं।
2: बिल्कुल।
1: अहीर भैरव राग का हमें परिचय दीजिए, कैसा इसका चलन है, इसके आरोह अवरोह के बारे में कृपया बताइए।
2: इस राग में देखिए ऋखव साथ तो होता ही सब राग में। सा के बाद ऋखव कोमल है, गंधार शुद्ध है, मध्यम शुद्ध है, पंचम तो शुद्ध होता ही है।
1: हाँ।
2: वो तो सिर्फ स्वर है सा और प। फिर धैवत भी शुद्ध है, निखात उसकी कोमल है। ऋखव और निखात दोनों कोमल है। सारे गामा पाधा निशा
1: जी,
2: मैं आपको इस पे करके बताता हूँ।

0: इस राग की खासियत यह है कि भैरव के प्रकारों में ये बहुत लोकप्रिय राग है।
1: जी जी।
0: और इस पे फिल्म वालों ने भी काफी काम किया है, कुछ अच्छे गीत बनाए हैं, और क्लासिकल म्यूजिक में भी ये बहुत लोकप्रिय राग रहा है। तो पहले मैं आपको इसमें एक बंदिश सुनाता हूँ, उस्ताद आमिर खान साहब की बंदिश है वो।

0: क्या बात है पंडित जी। अहिर भैरव में यह खूबसूरत बंदी सुनने के बाद अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं मन्ना दा की आवाज में मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का गाना। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई,
1: वो ऑल टाइम ग्रेट गीत है वो।
0: जी जी।
1: और उसमें जिस तरह से पंडित रामनारायण के जो सारंगी के पीसेज हैं,
0: जी हाँ,
1: वो बहुत सुनने काबिल है। बजाइए,
0: सुनते हैं
1: जी।

0: मन्ना डे के स्वर में अहीर भैरव राग पर आधारित मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया श्रोताओं। ये रचना शैलेंद्र की, संगीतकार सचिन देव बर्मन। और इसी के साथ वायोलिन का विहंगम संसार श्रृंखला की ये कड़ी अब यहीं समाप्त हो रही है। अगली कड़ी में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने, तबला संगति संतोष मिश्रा की।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भूले

विविध भारती पर कार्यक्रम भूले बिसर गीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आज है संगीतकार मदन मोहन के जन्म की तारीख और उन्हें याद करते हुए उन्हीं के संगीतबद्ध गीत इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं।

0: मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे। भाई भाई फिल्म के इस गीत में गीता दत्त की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपने आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की।

0: प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
0: तेरा जवाब नहीं।
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
0: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
0: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

अधोश फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहंदी अली खां के बोल और मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती पर सुन रहे हैं। कार्यक्रम में वक्त एक अंतराल का।

0: चाचा जिंदाबाद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमा।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लक्ष्मी शंकर की आवाजों में मस्ताना फिल्म से गीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: छोटे बाबू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में, कैफ इरफानी के बोल, मदन मोहन का संगीत।
1: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: अब आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है।

अभी हमारे श्रोता विविध भारती के कार्यक्रमों को सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:30 हुए हैं, लेकर हाजिर हैं अपना दैनिक कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा यानी विनोद का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस सुविचार से। महात्मा बुद्ध का कथन है, चुगलखोर वही होता है जो हर किसी का बनता फिरता है पर होता किसी का नहीं है।

नमस्ते रोहतास में नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। आज 25 जून है। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 25 जून वर्ष का 176वां दिन है। लीफ वर्ष में यह 177वां दिन है। साल में अभी और 189 दिन शेष हैं।

नजर डालते हैं आज के इतिहास पर, जानेंगे आज 25 जून इतिहास के पन्नों पर क्यों है खास। श्रोताओं, आज ही के दिन 2004 को रूस द्वारा भारत के साथ रणनीति साझेदारी बनाने का निर्णय लिया गया था, और आज ही के दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने मकान व प्लाट की रजिस्ट्री सस्ती कर उस पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क 8% से घटाकर 5% कर दिया था आज ही के दिन 2008 को। और आज ही के दिन 2017 को श्रीकांत ने ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर सीरीज का खिताब जीता था। नजर डालते हैं आज जन्मे व्यक्तियों पर। श्रोताओं, मैं आपको बता दूं कि आज जन्म है भारत के 8वें प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का। उनका जन्म आज ही के दिन 1931 को हुआ था, और आज ही के दिन जन्म हुआ था 1900 को लॉर्ड माउंटबेटन का, जो ब्रिटिश राजनेता, नौसेना प्रमुख और भारत के अंतिम वायसराय रहे। उनका जन्म आज ही के दिन 1900 को हुआ था। चंद्रशेखर पांडे का आज के दिन जन्म हुआ था 1903 को, जो प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक रहे। चंद्रशेखर पांडे का भी जन्म आज ही हम मना रहे हैं। और आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं 1908 को जन्मे सुचेता कृपलानी का, जो महिला भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ रही सुचेता कृपलानी, उनका भी जन्म आज ही के दिन है। आज जन्म है 1924 को जन्मे मदन मोहन का, जो बॉलीवुड फिल्म संगीत निर्देशक रहे। उनका भी जन्म आज ही के दिन 1924 को हुआ था। और जन्म हुआ था आज के दिन उदय चंद का 1935 में, सेवानिवृत्त भारतीय पहलवान और कुश्ती कोच हैं। उनका जन्म आज ही के दिन 1935 में हुआ था। और आज ही के दिन जन्म हुआ था गोपाल प्रसाद दुबे का, जो सराय केला छऊ नृत्य के अग्रणी नर्तक रहे। उनका भी जन्मदिन आज ही है, 1957 को जन्म हुआ था। और आज ही के दिन जन्म हुआ था 1975 का मनोज कुमार पांडे का, जो परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक थे। उनका भी जन्म आज ही के दिन 1975 को हुआ था। जन्म हुआ था सुधा सिंह का आज ही 1986 को, जो भारत के प्रसिद्ध महिला एथलीटों में से एक रहीं। सुधा सिंह का जन्म आज ही 1986 को हुआ था। और आज ही के दिन जन्म हुआ था 1961 को सतीश शाह का, जो भारत

नजर डालते हैं आज निधन हुए व्यक्तियों पर। उन व्यक्तियों के बारे में जानेंगे जो आज के दिन इस दुनिया को छोड़ चले गए। आज ही के दिन 2019 को मोहन रनाडे का निधन हुआ था, जो गोवा के स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। मोहन रनाडे, इनका निधन आज ही के दिन 2019 को हुआ था। और आज ही के दिन निधन हुआ था 1950 को स्वामी सहजानंद सरस्वती का, जो भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। 1950 को निधन हुआ था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का। और श्रोताओं, आखिरी पड़ाव में जानते हैं आज अवसर एवं उत्सवों के बारे में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम मना रहे हैं संविधान हत्या दिवस। श्रोताओं, जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा कि भारत सरकार द्वारा हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। यह दिन 25 जून को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश में लगाए गए आपातकाल की याद दिलाती है। इस दिवस को घोषित करने का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने 1975 के आपातकाल के दौरान अमानवीय यातनाएं और कष्ट सहे थे। यह दिन नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों, प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा में हमारे संविधान के महत्व के प्रति जागरूक करने के साधन के रूप में किया जाता है। और साथ ही में आज हम मना रहे हैं नाविक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, डे ऑफ सेफरर। हर साल 25 जून को मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार, विश्व अर्थव्यवस्था और हमारे दैनिक जीवन में नाविकों द्वारा दिए जाने वाले अमूल्य योगदान को मान्यता देना और उनका सम्मान करना है।

अभी आपने आज के इतिहास के बारे में जाना। अब श्रोताओं, कुछ मनोरंजन के लिए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत है, फिल्म है अलग अलग।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र

0: बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: स्वागत है आकाशवाणी के सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप इस समय सुन रहे हैं प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। श्रोताओं, कार्यक्रम को गति देते हुए नजर डालते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर। कैमूर जिले में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। समाहर्ता सह जिला दंडाधिकारी कैमूर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित में कक्षा 12 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 30 जून तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। जिले में मुहर्रम को शांति व्यवस्था तथा विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिले के सासाराम अनुमंडल के सासाराम नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थलों पर कुल 130 दंडाधिकारी तथा 130 पुलिस पदाधिकारी की 2 शिफ्टों में प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही सशस्त्र बल एवं पुलिस केंद्र के लाठी बल का भी प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि मुहर्रम पर 523 दंडाधिकारी रहेंगे तैनात, ड्रोन से होगी निगरानी। जिले में बुधवार को भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहा। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले के अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। सुबह से ही तेज धूप और उमस के कारण लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया। दोपहर बाद स्थिति और गंभीर हो गई तथा अपराह्न 4 बजे तक हीट वेव का असर पूरे जिले में महसूस किया गया। कैमूर जिले में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मोहनिया प्रखंड कार्यालय सभागार में बुधवार को मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारियों यानी BLO की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी मनेंद्र कुमार सिंह ने की।

डालमिया नगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की ओर से गुरुवार को यानी आज ही अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगार देने को लेकर रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेला का आयोजन स्थानीय डालमिया नगर जिला नियोजन कार्यालय में 25 जून को कौशल सह विशेष रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई प्रतिष्ठित कंपनियां युवाओं को रोजगार देगी। युवा साक्षात्कार में जाते समय साक्षात्कार के लिए अपना बायोडाटा, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और रंगीन फोटो लाना आवश्यक समझा जाएगा। सासाराम शहरी क्षेत्र में प्रशासन द्वारा मुहर्रम पर्व पर शांति, सद्भाव और सुरक्षा को लेकर शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के नेतृत्व रोहतास जिला अधिकारी दीपक कुमार मिश्र व एसपी रोशन कुमार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। शहर में विधि व्यवस्था का डीएम एसपी ने लिया जायजा। श्रोताओं, इसी कड़ी में सुन लेते हैं एक और खूबसूरत सा गाना, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, फिल्म है मेरी जंग।

आखिरी पड़ाव में अब नजर डालते हैं आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज 25 जून है। लगभग सभी अखबारों ने इस खबर को प्राथमिकता देते हुए अपने पहले पन्ने पर जगह दिया है और अपने अपने तरीके से सचित्र छापा है। प्रभात खबर इस खबर को लिखता है, महिला शिक्षकों को गृह प्रखंड में पोस्टिंग, पुरुष को जिले के भीतर। इसी खबर को दैनिक भास्कर अपने तरीके से लिखते हुए, महिला शिक्षकों को गृह पंचायत छोड़कर मिलेगी नजदीकी तैनाती। इस खबर को दैनिक जागरण ने अपने तरीके से लिखता है सरकारी शिक्षकों के होंगे ऐच्छिक तबादले। और हिंदुस्तान के हवाले से ये खबर है, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला होगा। राज्य के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को अब ऐच्छिक तबादला होगा। नई व्यवस्था के तहत स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, दिव्यांगता, पति पत्नी के अलग अलग पदस्थापन, पारिवारिक परिस्थितियों तथा अन्य मानवीय आधारों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये खबर है हिंदुस्तान की।

इन्हीं खबरों के साथ अब दीजिए इजाजत प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास से अपने रेडियो दोस्त विनोद को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

अभी हमारे श्रोता कार्यक्रम नमस्ते रोहतास सुन रहे थे आकाशवाणी के सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 8 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात थोड़ी देर में।

0: तो भरी गुड मॉर्निंग। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार

0: पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
1: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्रे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्रे तक पहुँचने के लिए नाभीडांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
2: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े कचरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP आर्मी व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभीडांग के समीप ही एक पड़ाव चयनित किया गया है।
1: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीषा।
0: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
4: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
5: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा।

0: मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग। शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: अभी हमारे श्रोता आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 MHz पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। सुनते हैं एक देशभक्ति संगीत। इस गीत को हमने लिया है ईश्वर फिल्म से, नितिन मुकेश अलका याग्निक ने इसे गाया है।

अभी आपने सुना एक देशभक्ति संगीत नितिन मुकेश अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म ईश्वर से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 7:20 हुए हैं। सुनते हैं आप श्रोताओं के भेजे गए पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी। कार्यक्रम पसंद आपकी का पहला गाना सुनेंगे लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, फिल्म है एक दूजे के लिए। सुनना चाहे आप सबों ने नाज में मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस बेगम इशरत अकरम वसीम अकरम रुबीना वसीम आरिज वसीम नदीम अकरम शमीम अकरम अमन अकरम ममता रानी शर्मा पूनम कुमारी शर्मा बच्चू शेख मीना शेख। कलेर बिहार से आप हैं मोहम्मद आसिफ खान बेगम निकहत परवीन नूर महल महसूल से हुमैरा नाज सुमैरा नाज अबीहा नाज अरहान बाबू हमजा बाबू और मुजम्मिल बाबू। ये श्रोता हैं सरगुजा मैन पाठ से सोनिया थापा सोनम थापा रेशमा थापा आदिबा थापा बिहारी कॉलोनी लोनी से।

परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से आप हैं वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार। ये श्रोता है ग्राम पंचायत बौरी खुर्द, तहसील जाफराबाद, जिला जलान, मराठवाड़ा से श्री सुधाकर राजे जाघव, श्री प्रशांत राजे जाघव, सौभाग्यमती जगुताई राजे जाघव, औरे गांव से चिरंजीवी संचित वयाल, मोताला से चिरंजीवी प्रथम देश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और चिरंजीवी सर्वद देशमुख। तो लीजिए सुनिए अपने मनपसंद का यह गाना फिल्म एक दूजे के लिए से।

कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म आशा से लता मंगेशकर ने इसे गाया है। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। फिल्म है आशा, सुनना चाहा है आप सब उन्हें। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से आप हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर। ये श्रोता हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा। ये श्रोता हैं अस्मिता रेडियो रिपोर्ट गुरु भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, मुरली छत्री, श्रीमती कविता छत्रिय, मिथिलेश यदु दशरथ साहू, कुमारी अंकिता जोशी, बेबी बैदही जोशी, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार डावर जी। ये श्रोता हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। गोकुल चौक गंगा जला सहरसा से आप हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रियाना रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी बुल्की वाली फलना झा। नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, गजेंद्र कुमार निराला। तो लीजिए सुनिए अपने मनपसंद का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आशा से।

कार्यक्रम की अगली पेशकश आप सबकी फरमाइश पर सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मुरवा से आप हैं भाई कारीदायकारी श्रीमती मीनाकारी पुंजराज आर्यन आरती पुंज आकर्षण पुंज जयश्री पिंकी रिक्की रिक्की नीतू रिंकी मोहम्मद फारूक ललन मिश्र और जयंत कुमार वैरागी। ये श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित कुमार राय हैप्पी राय दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय श्रीमती रोशनी राय प्रांजल राय शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय कैथोलिक चर्च निवेरिया सासाराम से आप हैं मुन्ना गुड्डन आदर्श ओम अरुण नंदिनी विनय सुजय वीना अनुज अंकित और उनके प्यारे दादा दादी प्रफुल्ल चौक नहोना से आप हैं भरत सिंह धर्मराज सिंह डॉक्टर अनिल सिंह जयनाथ सिंह हृदयनाथ सिंह जगदीश सिंह दशरथ सिंह बिमला देवी मास्टर अनिल सिंह रविंद्र सिंह डमरू कलाकार और मनोज कुमार गुप्ता। तो लीजिए अपने मनपसंद का यह गीत सुनिए आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म बंदिश से। इस गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

कार्यक्रम की अगली और आखिरी पेशकश किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, फिल्म है दोस्ताना। सुनना चाहा है आप सब उन्हें। भभुआ कैमूर वार्ड नंबर 10 चौक बाजार से भोला सेठ चौरसिया, गोलू चौरसिया, दीपक चौरसिया, नंदलाल चौरसिया, कन्हैया चौरसिया, विद्यावती देवी, प्रभावती देवी। ये श्रोता हैं ब्रह्मपुरा मनीगाछी से अच्छे भाई अच्छे लाल राय, श्रीमती पानो देवी, मुकेश कुमार राय, प्रेम कुमार, प्रिंस कुमार। आप हैं श्रोता धरसिंहवा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा यादव, अनुराधा, अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से आप हैं छुन्नू लाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव। ये होता है नरहन एस्टेट से आप हैं नूतन मिश्रा, सुमन मिश्रा, अमृता, अनुपम, आराध्या, विनीता मिश्रा और स्नेह लता जैन। कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकहत परवीन, सदफ आरजू, साहिल अरमान, मशकूर आलम, शमा परमीन और बेबी आलिशा। थाना चेनारी ग्राम खुरमाबाद से आप हैं लक्ष्मण प्रसाद चौरसिया, भरत प्रसाद चौरसिया, सन्नी चौरसिया, रामजी बाबू, सूरज कुमार, सुजल कुमार, सोनू कुमार, प्रियंका चौरसिया और पिंकू चौरसिया। थाना मुड़गढ़ हंडोखा रोहतास से मुन्ना भाई मंसूरी, नजबुन निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शहबाज और शहबाज और शबाना। तो लीजिए सुनिए अपने मनपसंद का कार्यक्रम के आखिर में ये गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में, फिल्म दोस्ताना से।

फिल्म दोस्ताना के इसी गाने के साथ दीजिए इजाज़त। कार्यक्रम पसंद आपकी से अपने रेडियो दोस्त विनोद को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:45 होने वाले हैं। अब हम सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र से थोड़ी देर में।

0: रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: बिहार के सभी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के भाइयों व बहनों ध्यान दें, जहां हो आपके हक की बात सहायता कॉल सेंटर दे आपका साथ हर बार। अगर आपको चाहिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से जुड़ी किसी भी योजना की जानकारी या अपनी शिकायतों का समाधान, तो डायल करें टोल फ्री नंबर 1800-345-6345।
2: सभी दिवस पर सुबह 6 से रात 10 तक सहायता आपके हक और तरक्की का साथी।
1: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। महिला शिक्षकों का गृह प्रखंड की नजदीकी पंचायत में हो सकेगा तबादला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी उन्मूलन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। पटना के ज्ञान भवन में होगा जेपी सेनानियों का सम्मान। और मौसम विभाग ने आज पटना, कैमूर और बक्सर समेत दक्षिण बिहार के 14 जिलों में लू की चेतावनी जारी की। वहीं अररिया, कटिहार, मधुबनी और सुपौल सहित आसपास के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि नई नियमावली लागू होने के बाद प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का तबादला पोर्टल आधारित या नियमबद्ध तरीके से किया जाएगा। इधर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि नई नीति के तहत महिला शिक्षकों का तबादला गृह प्रखंड की नजदीकी पंचायत में किया जाएगा। वहीं पुरुष शिक्षकों का तबादला गृह प्रखंड से बाहर जिले के नजदीकी प्रखंडों में होगा।
1: हम लोगों ने शिक्षकों के ट्रांसफर नीति को सरल किया और उसमें जो महिला शिक्षिका है उन्हें अपने पंचायत के बगल के पंचायत में और पुरुष शिक्षकों को उनके प्रखंड के बगल के प्रखंड में, लेकिन जिला कैडर उनको बनाया जा रहा है। जितने भी शिक्षक हैं वो अपने जिला कैडर के ही अब वो हो जाएंगे और उसको लेकर पोर्टल पर पूरी तरह से स्थानांतरण की प्रक्रिया पारदर्शी पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफर होंगे।
0: एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए 5 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन को स्वीकृति दी है। बैठक के बाद मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चौधरी ने बताया कि मधुबनी में शांजा विश्वविद्यालय, नवादा में SA विश्वविद्यालय, पटना में हिमालय विश्वविद्यालय, औरंगाबाद में सीत योग विश्वविद्यालय और सीवान में एक विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए हुरको से 1,00,000 करोड़ रुपये के ऋण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए हुरको के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर के बाद टाउनशिप क्षेत्रों में सुनियोजित अवसंरचना और आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाए। कैबिनेट में कुल 45 एजेंडों की स्वीकृति प्रदान की गई। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का

0: सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संविधान हत्या दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल होंगे। इस दौरान 450 जेपी सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। इधर भाजपा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और जयंती के अवसर पर 6 जुलाई तक प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: पटना नगर निगम ने संपत्ति कर में 15% की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई दरें कल से लागू हो गई हैं। इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र में मकान या दुकान के लिए अब ज्यादा संपत्ति कर देना होगा। गौरतलब है कि विभाग ने 22 जून को बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स को लागू करने की स्वीकृति दी थी। संपत्ति कर में वर्ष 1995 के बाद ये बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक बनने के लिए लिखित परीक्षा भी देनी होगी। बिहार लोक भवन द्वारा तैयार नियमावली के अनुसार साक्षात्कार के साथ लिखित परीक्षा भी अनिवार्य होगी। ये परीक्षा 175 अंक की होगी, जबकि 25 अंक साक्षात्कार के लिए निर्धारित किए गए हैं। साक्षात्कार में 13 अंक ऑन स्पॉट शिक्षण कौशल टेस्ट के लिए तय किए गए हैं। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: कहाँ चलती है? इधर तो आओ।
4: इधर आइए। इधर
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612।

0: 2225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
0: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के दक्षिणी भाग में भीषण गर्मी का दौर जारी है। कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं बक्सर का अधिकतम तापमान 42.1, पटना का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शेखपुरा औरंगाबाद का अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। इन सभी स्थानों पर लू की स्थिति भी बनी रही। मौसम विभाग ने आज दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार के 14 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। वहीं उत्तर बिहार के अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट है।
3: दिनांक 25 जून राज्य के दक्षिण भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया एवं सुपौल जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
2: भीषण गर्मी को देखते हुए सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने प्रारंभिक विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधि पर 27 जून तक पठन पाठन प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं वर्ग 8 से ऊपर की कक्षाओं का संचालन सुबह 10 बजे तक ही करने का आदेश दिया है। प्रदेश में धान और गेहूं की बुआई तथा कटाई के समय विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत कोई भी नया काम नहीं होगा। कृषि विभाग की अनुशंसा के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विभागीय प्रधान सचिव पंकज कुमार के अनुसार कार्यक्रम पदाधिकारी जिला कार्यक्रम समन्वयक ये सुनिश्चित करेंगे कि कृषि मौसम के दौरान किसी भी ग्राम पंचायत में कोई नया काम नहीं हो। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा या असाधारण परिस्थिति में ही इस नियम में छूट दी जाएगी। प्रदेश में अगले महीने की 15 तारीख को महाकवि कालिदास की जयंती और वंदे मातरम समारोह का आयोजन होगा। कला संस्कृति मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि पटना स्थित प्रेमचंद रंगशाला में संगीत नाटक अकादमी और कला संस्कृति विभाग संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इस दौरान देशभक्ति आधारित नाटकों का मंचन भी किया जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में भवन निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता पवन कुमार के पटना, भागलपुर, नोएडा और दिल्ली समेत 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान अधीक्षण अभियंता के पास विभिन्न स्थानों पर 13 अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ईओयू को छापेमारी के दौरान 5 लाख रुपये से अधिक नकद और लगभग 39 लाख रुपए मूल्य के आभूषण मिले हैं। वहीं विभिन्न बैंक खातों में लगभग 90 लाख रुपए की राशि पाई गई है, जिसे फ्रीज कर दिया गया है। पश्चिम चंपारण के बेतिया स्थित वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में 29 जून से 30 सितंबर तक जंगल सफारी समेत पर्यटन से जुड़ी सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। वीटीआर प्रशासन के अनुसार मॉनसून अवधि में बाघों के प्रजनन काल, वन मार्गों की मरम्मत और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बेगूसराय के चकिया थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म कांड की पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 3 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत ने कल पीड़िता और उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ये जानकारी दी। इधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मदन सहनी ने भी कल पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात की। सुपौल जिले में सशस्त्र सीमा बल बीरपुर के जवानों ने सीमा चौकी कुनौली क्षेत्र से 1,44,000 रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मधुबनी जिले में एक महिला पुलिस अधिकारी

व्यक्ति के रुपए गिनने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने महिला पुलिस अवर निरीक्षक और दो सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वायरल वीडियो जिले के अररिया संग्राम थाना का है। इधर जिले की लदनिया थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान अलग अलग गांव से 68 किलो गांजा जब्त किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज की सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला होगा। दैनिक भास्कर ने भरत मुठभेड़ मामले को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है, जस्टिस विनोद सिन्हा करेंगे मुठभेड़ की जांच, एसडीपीओ राजेश हटाए गए। प्रभात खबर लिखता है, उपद्रवियों को बिना वारंट नकेल कसने का डीएम को अधिकार। अखबार लिखता है, 1 जुलाई से अगले 3 महीने तक पूरे राज्य में लागू रहेगा आदेश। दैनिक भास्कर ने खेल की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, इंग्लैंड आयरलैंड में वैभव को मिलेगा अलग चेंजिंग रूम, 16 वर्ष से कम उम्र की खिलाड़ियों को वयस्क खिलाड़ियों के साथ चेंजिंग रूम साझा करने की अनुमति नहीं। राष्ट्रीय सागर मंत्री दिलीप जायसवाल के हवाले से लिखता है, खास महल की भूमि पर रहने वालों को मिलेगा मालिकाना हक। आज अखबार की शब्द हैं, हर 3 माह में 3 पंचायतें होंगी बाल श्रम मुक्त। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को मंजूरी दी। महिला शिक्षकों का गृह प्रखंड की नजदीकी पंचायत में हो सकेगा तबादला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी उन्मूलन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। पटना के ज्ञान भवन में होगा जेपी सेनानियों का सम्मान। और मौसम विभाग ने आज पटना, कैमूर और बक्सर समेत दक्षिण बिहार के 14 जिलों में लू की चेतावनी जारी की। अररिया, कटिहार, मधुबनी और सुपौल सहित आसपास के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: AIR at 90.
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अभी हमारे श्रोता आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:06 हुए हैं। सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह के 9:10 पर हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका सुनेंगे और विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार सुनेंगे सुबह के 9:30 पर। सुबह 10 बजे आकाशवाणी के दिल्ली के

फिर से हिंदी समाचार का समय होगा। और आज हम सुबह 10:05 पर सुनेंगे हिंदी कार्यक्रम में साहित्य की कार्यक्रम। विषय होगा भारत के नदियों को जोड़ने की आवश्यकता। वार्ताकार होंगे डॉक्टर प्रेम सुंदर तिवारी। और अगली वार्ता सुनेंगे वाल्मीकि के राम के प्रासंगिकता, आज के संदर्भ में वार्ताकार डॉक्टर विजेंद्र पाठक के द्वारा। प्रस्तुतकर्ता होंगे संतोष कुमार। सुबह 10:30 पर भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी सुनेंगे और भोजपुरी एल्बम सॉन्ग सरसधार सुन पाएंगे सुबह 10:45 पर। भोजपुरी एल्बम लोकगीत भाग दो सुन पाएंगे लोक माधुरी पूर्वाहन के 11 बजे। और पूर्वाहन के 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे रंग तरंग। अपराहन के 4:31 पर पुनः हाजिर होंगे आप सबों के सेवा में कार्यक्रम लोक माधुरी के साथ है। और हिंदी समाचार का समय होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से शाम 5:10 पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदन सुन पाएंगे। और युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणिया सुनेंगे शाम 5:30 पर। भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम होगा शाम 6 बजे से। और भोजपुरी समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से शाम 6:05 पर। किसान श्रोताओं का कार्यक्रम किसानवाणी शाम 6:10 पर। इस किसानवाणी कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत का समय होगा शाम 6:40 पर। और प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान सुनेंगे शाम 7 बजे से। कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास सुन संध्याकालीन सूचना कार्यक्रम सुनेंगे शाम 7:15 पर। और शाम 7:45 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार का समय होगा। ई मनपसंद ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम को सुनेंगे शाम 7:50 पर। और समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से शाम 8:45 पर। पुनः आप सबों के सेवा में हाजिर होंगे रात्रि 9 बजे कार्यक्रम लोकधारा के साथ है। इसके अंतर्गत सुनेंगे कुछ भोजपुरी लोकगीत। गजलों से सजाएंगे कार्यक्रम महफिल को रात्रि 9:15 पर। और आज के फनकार पुनः विविध भारती से सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। हिंदी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रसरंग सुन पाएंगे रात्रि 10 बजे। और कार्यक्रम चित्रपट तराने फिल्मी संगीत का कार्यक्रम सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। अगले दिन का कार्यक्रम विवरण सुन पाएंगे रात्रि 10:55 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी व अंग्रेजी में समाचार सुन पाएंगे रात्रि 10:11 से। और 11:10 पर सभा समाप्त कर दी जाएगी।

अभी आपने सुना आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। कार्यक्रम के आरंभ में अनुराधा की आवाज़ में सुनते हैं। रविंद्र जैन ने इस गीत को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है और फिल्म है जानू।

कार्यक्रम की अगली पेशकश साधना सरगम और उदित नारायण की आवाज़ में। अनजान और इंदिवर ने इस गीत को लिखा है, बप्पी लहरी ने संगीत दिया है। फिल्म है करिश्मा कुदरत का।

अब हम सुनते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में। हसन कमल ने इस गीत को लिखा है, बप्पी लहरी का संगीत है, फिल्म है एतवार।

कार्यक्रम गीत मालिका के आखिर में सुन लेते हैं एक और गाना लता मंगेशकर और शाबिर कुमार की आवाज़ों में। SH बिहारी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, फिल्म है प्यार झुकता नहीं।

फिल्म प्यार झुकता नहीं के इसी गाना के साथ कार्यक्रम गीत मालिका अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 9:30 होने वाले हैं। अगला प्रसारण विविध भारती से, कार्यक्रम है आज के फनकार। इस कार्यक्रम को सुनेंगे थोड़ी देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत।

0: बैठे।
1: आज के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है, ढेर सारी कशिश है, जज्बात का सागर है।

संगीतकार मदन मोहन ने ढाई दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो गए थे।

मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का।

मुंबई आने के बाद मदन मोहन श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत,

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: इनके बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूंगा क्योंकि इट बी इजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे, तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफी याद हैं लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूजिक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिल के काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूजिक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है लेकिन उन्हें जरूर लगा। और इसकी वजह भी है, सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों। फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
2: जी मेरी एक छोटी सी याद है, उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था और मुझे अभी तक याद है ये, उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 ऑन किया और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रेहाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूजिक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने डैड को, म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सिटिंग में हूं। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी है, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूं और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे 1,000 रुपये मांगना चाहता हूं, इस खबर के लिए आप मुझे 1,000 रुपये दें। तो उन्हें कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूंगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूं, मैं बहुत बिजी हूं। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूजिक रूम में गया और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, तो मैं देखा कि कोने में रफी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहाँ, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूँ। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पे खड़े थे, उनके हाथ में एक शैंपेन की बॉटल थी और उन्होंने कहा मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
1: इसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था और दस्तक 1970

में, मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी, जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था, वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के दो सूट सिलवाए और मदन जी और संजीव कुमार ने वही दो सूट बोटाई के साथ एकदम सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए।

लेकिन मैं जैसे कह रहा था, इसकी वजह ये थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला अनपढ़ 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं जैसे कहा छोटा था, तो हम बोलते थे डैड तेज चलाओ तेज चलाओ, क्योंकि वर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था। तो वो तेज चलाने लगे, आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज़ पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माताजी जो साथ में बैठी थी, भाई रोको गाड़ी रोको, पुलिस आ रही है, क्या तुम इतने तेज से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए। उन्होंने कहा मदन जी, मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नज़रों ने समझा गाना जो सुना है का माल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है।

संगीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत, तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को, और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति गीत।

मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब खूब प्रयोग किया।

सन 1975, जुलाई का भीगा भीगा मौसम, जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया।

शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।

0: की समीक्षा के लिए डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। देश भर में आज इससे जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। यह अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से

0: शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और ऊर्जा का उपयोग तथा समानता और प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। वेनेजुएला में आज 7.2 और 7.5 तीव्रता के लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप आने के बाद देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। भूकंप के कारण राजधानी कराकास और आसपास के क्षेत्रों में कई इमारतें ढह गई हैं और बड़े स्तर पर जानमाल का नुकसान हुआ है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विद्यार्थियों की कक्षाएं और गैर जरूरी गतिविधियां अगले आदेश तक स्थगित करने की घोषणा की है। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को भी सक्रिय कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों, विशेषकर अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। खेलों में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ग्रुप ए के इस मैच में थापेलो मासेको ने दक्षिण अफ्रीका के लिए एकमात्र गोल किया। इससे पहले आज सुबह मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर अपने विश्व कप समूह चरण के 3 मैच जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों से पहले हमारे श्रोता विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। सुनते हैं हिंदी कार्यक्रम में साहित्य की कार्यक्रम वार्ता का विषय है भारत के नदियों को जोड़ने की आवश्यकता। वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रेम सुंदर तिवारी।
2: कृषि कार्य के लिए भूमि के साथ साथ जल की आवश्यकता होती है। भारत की भौगोलिक परिस्थिति तथा वर्षा की मात्रा इस प्रकार की है कि सफलतापूर्वक कृषि कार्य करने के लिए धरातलीय जल संसाधन आवश्यक है। देश का धरातलीय जल संसाधन समान रूप से वितरित नहीं है। भारत में प्रति वर्ष 4000 क्यूसिक किलोमीटर वर्षा होती है। यह वर्षा की मात्रा प्रतिवर्ष भिन्न रहती है। किसी वर्ष यह बहुत ही कम होती है तो किसी वर्ष बहुत ही अधिक होती है। जिस वर्ष वर्षा कम होती है उस वर्ष सूखा पड़ता है तथा जिस वर्ष अधिक होती है उस वर्ष बाढ़ आती है। दोनों ही स्थितियों में देश का खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित होता है। मानसून द्वारा लगभग 85% वर्षा ग्रीष्म ऋतु में हिमालय की गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों के अपवाह क्षेत्रों में होती है। इस प्रकार जहाँ देश के पूर्वी भाग में ब्रह्मपुत्र, गंगा और महानदी बेसिनों में जल की प्रचुरता है, वहीं पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग में इसकी भारी कमी है। वर्षा ऋतु में बड़ी मात्रा में सतही जल बहकर समुद्र में चला जाता है। जुलाई से सितंबर तक अत्यधिक वर्षा होने के बावजूद भी वर्ष के शेष भाग में पीने के पानी की कमी देखी जाती है। वर्षा ऋतु में जब देश के एक भाग में बाढ़ होती है तो दूसरा भाग सूखा से प्रभावित होता है। इस प्रकार नदियों को जोड़कर बाढ़ तथा सूखा एवं पीने की पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। बढ़ती हुई जनसंख्या के खाद्यान्न की आपूर्ति

पूर्ति हेतु भी नदियों को जोड़ना आवश्यक है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में पिछले दशक से गिरावट दर्ज हुई है, इसके बावजूद भी प्रति वर्ष यह 1 से 1.5 करोड़ बढ़ रही है, जिसकी खाद्यान्न आपूर्ति हेतु अच्छी फसल उत्पादन तथा प्रति इकाई उत्पादन वृद्धि आवश्यक है। यह तभी संभव है जब देश के प्रत्येक भाग में पर्याप्त जल सिंचाई हेतु उपलब्ध हो। यह कार्य नदियों को जोड़कर पूरा किया जा सकता है। नदियों को जोड़ने से एक और लाभ होगा, देश में सस्ता एवं सर्वसुलभ परिवहन का साधन उपलब्ध हो जाएगा। भारत में सड़कों पर वाहनों का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है। नदियों को जोड़ने से सड़कों पर व्यावसायिक वाहनों का बोझ कम होगा तथा नहरों के माध्यम से भारी खनिज पदार्थ एवं अन्य उत्पादों का परिवहन कार्य किया जा सकता है। नदियों को जोड़ने से भूमिगत जल स्तर में भी वृद्धि की जा सकती है। पिछले कई वर्षों से अत्यधिक भूमिगत जल दोहन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में जल स्तर काफी नीचे चला गया है, जिससे पीने, सिंचाई और औद्योगिक आवश्यकताओं हेतु पानी की कमी हो गई है। नदियों को जोड़ने से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे लोगों के जीवन स्तर में भी वृद्धि दर्ज की जा सकती है। नदियों को जोड़ने से जल विद्युत के उत्पादन में वृद्धि होगी तथा जिन क्षेत्रों में विद्युत की कमी है उसे भी दूर किया जा सकता है। अब हम भारत में नदियों को जोड़ने के इतिहास पर नज़र डालें। औपनिवेशिक शासनकाल में 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश इंजीनियर आर्थर कोटोन ने भारत की प्रमुख नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा था, जिसका मुख्य उद्देश्य सामानों का परिवहन था। साथ ही साथ अत्यधिक जल वाले क्षेत्रों से जल को सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक सिंचाई हेतु पहुंचाना भी था। अत्यधिक खर्च के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा इस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात 1970 में तत्कालीन पूर्व सिंचाई मंत्री श्री KL राव की अध्यक्षता में केंद्रीय जल और शक्ति आयोग द्वारा राष्ट्रीय जल ग्रिड का सुझाव दिया गया। इस आयोग द्वारा इसके लक्ष्य बताए गए जो इस प्रकार हैं: नहरों और नदी बांधों द्वारा नदियों के अतिरिक्त जल को उत्तर से दक्षिण और दक्षिण पश्चिम तथा पूर्व से पश्चिम जलाभाव वाले क्षेत्रों में उपयोग हेतु अंतरित करना, सागर में बह जाने वाले बाढ़ के जल को जल के अभाव में और सूखा प्रवण क्षेत्रों की ओर ले जाना, जिससे जलापूर्ति में असमानता को दूर किया जा सके, अतिरिक्त जल की प्राथमिकता के आधार पर दीर्घकालिक सूखा प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग करना। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उक्त केंद्रीय जल एवं शक्ति आयोग ने भी सुझाव दिए। सोन, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा और पेन्नर के बेसिनों से गुजरने वाली गंगा से कावेरी को जोड़ने वाली नहर का निर्माण, ब्रह्मपुत्र गंगा लिंक का निर्माण, नर्मदा से पश्चिम राजस्थान के लिए लिंक नहर का निर्माण, चंबल से नहर द्वारा मध्य राजस्थान तक जलापूर्ति, सतलुज, ब्यास और रावी नदियों को नहरों द्वारा उत्तरी राजस्थान तक जलापूर्ति, महानदी से नहरों द्वारा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों तक जलापूर्ति तथा पश्चिमवाही नदियों को पूर्व से जोड़ना। सन 1999 में भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नदियों को जोड़ने पर एक बार पुनः बल दिया गया। सन 2005 से सन 2014 के बीच केंद्रीय सरकार द्वारा कई कमेटियों का गठन कर सुझाव मांगे गए। कई कमेटियों ने पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणों से नदियों को जोड़ने की योजना पर आपत्ति भी दर्ज की। इस प्रकार इस क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हो पाई। अभी सितंबर 2015 में गोदावरी तथा कृष्णा नदियों को जोड़ने का कार्य पूरा हुआ है। भारत की नदियों को दो वर्गों में बांटकर उनके जोड़ने की योजना बनाई जा सकती है, हिमालय की नदियां तथा प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियों को जोड़ने का कार्य गंगा, ब्रह्मपुत्र, उनकी मुख्य सहायक नदियों पर भारत तथा नेपाल के जल संग्रहण भंडार बनाकर तथा उससे नहर निकालकर एक दूसरे को जोड़ा जा सकता है।

ब्रह्मपुत्र का जल गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों में पश्चिम की तरफ स्थानांतरित किया जा सकता है। इससे 220 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए अतिरिक्त जल उपलब्ध हो सकेगा तथा लगभग 300 लाख किलोवाट जल विद्युत का भी उत्पादन संभव हो सकेगा। इसका एक लाभ यह भी होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ पर भी नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना का लाभ भारत के साथ ही साथ नेपाल तथा बांग्लादेश को भी मिल सकेगा। हिमालय की नदियों पर कुल 14 अंतर नदी लिंक योजनाओं को भी बनाया जा सकता है, जो इस प्रकार है: गंगा यमुना लिंक, शारदा यमुना लिंक, यमुना राजस्थान लिंक, राजस्थान साबरमती लिंक, कोसी घाघरा लिंक, कोसी मेची लिंक, मानस संकोच तिस्ता गंगा लिंक, जोगी घापा तिस्ता फरक्का लिंक, गंगा दामोदर स्वर्ण रेखा लिंक, फरक्का सुंदरबन लिंक, गंगा गंडक लिंक, चुनार सोन बराज लिंक तथा सोन बांध गंगा की दक्षिण सहायक नदी लिंक। इस प्रकार प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने हेतु हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं: महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पिन्नर, कावेरी को आपस में जोड़ना, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों को आपस में जोड़कर इसमें से मुंबई से उत्तर वाली नदियों को एक में तथा दक्षिण वाली नदियों को एक में जोड़ना, केन नदी को चंबल नदी से जोड़कर तथा पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के जल को पूरब की तरफ मोड़कर। इस प्रकार प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ने से अतिरिक्त 250 लाख हेक्टेयर धरातलीय जल की उपलब्धता होगी तथा 100 लाख हेक्टेयर भूमिगत जल में भी वृद्धि हो जाएगी। हम लोग जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा गंगा कावेरी लिंक नहर की योजना प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत गंगा का वर्षा ऋतु का अतिरिक्त जल दक्षिण में कावेरी नदी तक 2635 किलोमीटर लंबी नहर द्वारा ले जाने का प्रस्ताव है। इसमें पटना के पास निर्मित बराज, जिसकी ऊंचाई 45.7 मीटर से एक दक्षिणवर्ती नहर निकाली जाएगी, जिससे 1700 क्यूसेक जल का उपयोग दक्षिण बिहार, झारखंड, दक्षिणी उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई हेतु किया जाएगा। शेष जल को राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को पहुंचाया जाएगा। इस जल को कावेरी नदी तक ले जाने के लिए सर्वप्रथम नर्मदा सोन जल विभाजक तक सोन नदी के सहारे निर्मित लिंक द्वारा प्रवाहित किया जाएगा, जिसके लिए कई बांधों और जलाशयों के निर्माण का प्रस्ताव है। सोन लिंक से जल बारगी जलाशय में डाला जाएगा। इस जल को देनगंगा, प्राणहिता और गोदावरी के प्राकृतिक अपवाह मार्ग के सहारे ले जाएगा। इसके आगे लिंक नहर कृष्णा और पेन्नर नदियों को पार करती हुई ऊपरी अनिकट से कावेरी नदी में मिल जाएगी। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें बड़े खर्च, विस्तृत सर्वेक्षण, दृढ़ प्रशासनिक निर्णय और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। इसमें कई प्रशासनिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कठिनाइयां भी हैं। यही कारण है कि अभी तक इस पर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस प्रस्तावित ग्रिड के जल का उपयोग सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई हेतु किया जाएगा। इससे न केवल सिंचन क्षमता में वृद्धि होगी, सूखे का प्रभाव कम होगा, बहुशस्यन को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक क्रियाओं को विविधता मिलेगी, वरन बाढ़ों पर भी नियंत्रण हो सकेगा। भौम जल का संरक्षण होगा, जल विद्युत का उत्पादन होगा तथा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रिड के अधीन बने नहरों और नदी बांधों का उपयोग जल कृषि के

0: संवर्धन हेतु किया जा सकता है। ग्रिड में इतनी जल विद्युत निर्माण होगा कि जिसे ग्रिड उपयोग के अलावा स्थानीय उद्योगों एवं कृषि विकास में लगाया जा सकता है।
1: अभी आपने सुना डॉक्टर प्रेम सुंदर तिवारी से एक हिंदी वार्ता, विषय था भारत के नदियों को जोड़ने की आवश्यकता। कार्यक्रम का अगला वार्ता सुनेंगे डॉक्टर बिजेंद्र पाठक से। वार्ता का विषय है वाल्मीकि के राम की प्रासंगिकता आज के संदर्भ में।
2: महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि और उनकी रचना रामायण को आदिकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। रामायण की कथा का प्रारंभ देव ऋषि नारद और महर्षि की वार्ता से होता है। क्योंकि नारद समस्त लोकों में अहर्निश भ्रमण करने वाले लोक संग्रही पुरुष हैं, वे राजाओं के प्रासादों से लेकर दीन दुखियों के नित्य कुशल के आकांक्षी हैं। वाल्मीकि को ऐसे चरित्र की खोज है जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसके चारित्रिक वैशिष्ट के अकलुष आकाश की छाया तले संतरस्त मानवता को शीतल छाया मिल सके। उन्होंने पूछा कि ऋषिवर, इस समय इस संसार में गुणवान, चरित्रवान, वीर्यवान, धैर्यवान, सत्यवादी, दृढ़ प्रतिज्ञ, सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यवान, सुंदर, मन पर अधिकार रखने वाला, अक्रोधी, कांतिवान, किसी की निंदा नहीं करने वाला तथा संग्राम में कुपित हो जाने पर देवता भी जिससे डरते हों, वैसा सर्वगुण संपन्न मनुष्य कौन है? महर्षि के प्रश्नों का देवर्षि नारद ने जो उत्तर दिया वह संपूर्ण महाकाव्य का विषय बना। उन्होंने बताया कि इस समय धरती पर इक्ष्वाकुवंशी रामचंद्र जी एकमात्र ऐसे पुरुष हैं जो समस्त सद्गुणों के एकत्र आगार हैं। यह बात लोक विस्तृत है कि कौशल्यानंदन राम माता के आनंद को बढ़ाने वाले, गंभीरता में समुद्र के समान और धैर्य में हिमालय के समान हैं। वाल्मीकि को ब्रह्मा जी ने आदेशित किया कि जिस राम के चरित्र को नारद जी ने बतलाया उसे लोक शिक्षण एवं लोक पोषण के निमित्त काव्य की भाषा में आबद्ध करें। ब्रह्मा से आदेशित एवं नारद से उत्प्रेरित वाल्मीकि ने राम के चरित्र को केंद्रीभूत कर लोक के समक्ष प्रस्तुत किया। उनके मन में यह भावना थी कि संकटग्रस्त एवं संतरस्त मानवता के समक्ष सद्गुणों से संपन्न सामर्थ्यवान चारित्रिक औदार्य के उदाहरण को रखें, जिससे चरमराती, टूटती एवं बिखरती मानवता सुस्थिर हो सके। निर्विवाद वाल्मीकि के राम काल्पनिक नहीं है। यह सत्य है कि कवि कर्म की मौलिकता को ध्यान में रखकर कवि ने घटनाओं को संजोने, सजाने एवं संवारने जैसे कार्य को संपादित किया। यह सत्य है कि कवि कर्म देशातीत एवं कालातीत होता है। उसकी वाणी में त्रिकाल सत्य की समस्त संभावनाएं निहित हुआ करती हैं। वह युग का दृष्टा, स्रष्टा एवं चिंतक होता है। यही कारण है कि कालजयी पुरुष को वह काव्य सृजना का केंद्र बनाता है जो उसकी कथा का नायक होता है। वाल्मीकि के प्रश्नों में सांप्रतम और अस्मिन लोके शब्द का प्रयोग हुआ है, जो इस अर्थ को प्रतिपादित करता है कि इस समय इस धरती पर कौन मनुष्य है जो मानवीय गुणों से संयुक्त एवं सामर्थ्यवान हो। वाल्मीकि की दृष्टि में सामर्थ्यहीन सद्गुणी से संकटापन्न मानवता का कल्याण असंभव है। जब उन्होंने जाना कि इक्ष्वाकुवंशी राम समुद्र की गंभीरता एवं हिमालय की धीरता से युक्त हैं, तब उनके मन में आशा की किरणें जगती हैं कि राम के आदर्श चरित्र को विश्व मंच पर प्रस्तुत कर चारित्रिक संकट को दूर किया जा सकता है। प्रत्येक युग में सत्यासत्य का संघर्ष होता है। जब जब चरित्र बल की अवहेलना से मानवता कराहने लगती है, तब तब युग पुरुष का साक्षात्कार कराकर युग का मनीषी, जो स्वयंभू कवि हुआ करता है, बचाने को अग्रसर होता है। राम कर्मयोगी राजर्षियों की परंपरा से संपोषित इक्ष्वाकुवंशी हैं। परिणाम स्वरूप उनके जीवन में कर्म की प्रधानता है। वे सूर्य की तरह निरंतर कर्म पथ के अविराम पथिक एवं शवों को विश्रांति तथा चेतना प्रदान करने वाले हैं। वाल्मीकि ने जिस राम का वर्णन किया है उस पर यदि सामान्य रूप से विचार किया जाए तो वे केवल मनुष्य रूप में वर्णित हैं। लक्षणा का प्रतीकात्मक अर्थ काव्यशास्त्र की परंपरा में गौण माना जाता है। कौशल्यानंदन राम का चरित्र लोक के समक्ष प्रस्तुत करना ही उनका लक्ष्य रहा, जिससे आने वाली मानवीय परंपरा को नवीन आलोक मिल सके। क्योंकि वे सर्वगुण संपन्न, सत्यम, शिवम, सुंदरम से संपृक्त मानव मात्र के सच्चे आदर्श हैं। महर्षि की दृष्टि में

मोह रूपी रावण, अहंकार रूपी बाली एवं कुंभकर्ण, क्रोध रूपी ताड़का को न तो ज्ञान रूपी राम मार सकते हैं और न देवता रूपी राम ही। उसे तो केवल मानव राम ही मार सकते हैं जो हमारे जीवन पथ के सहचर एवं सुख दुख के साथी हैं। चरित्र, धर्म, सत्य, सहनशीलता, सदाचार, सद्ज्ञान एवं सामर्थ्य के अन्वेषी वाल्मीकि की दृष्टि में राम के कार्य व्यापार लोक रक्षण एवं लोक शिक्षण के कारक हैं, जिनकी उपादेयता प्रासंगिकता कालातीत है। यह सत्य है कि धर्म, सत्य एवं सदाचार के निर्वहन में अनेक बाधाएं आती हैं। श्रेष्ठ पुरुष उन बाधाओं को पार करते हुए निरंतर नैतिक मूल्यों की रक्षा में सन्नद्ध रहता है। धर्म का अर्थ होता है जो धारण किए हुए हो, अर्थात जिसके सहारे सुस्थिर रहना संभव हो। शास्त्रों में कहा गया है, सत्यम वद धर्म चर, अर्थात सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। राम के जीवन आदर्श ही हैं सत्य का आचरण एवं धर्म का संपोषण। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव की शास्त्रानुमोदित वाणी को राम ने अपने आचरण में

सुस्थिर रहना संभव हो। शास्त्रों में कहा गया है सत्यम वद धर्म चर, अर्थात सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। राम के जीवन आदर्श ही हैं सत्य का आचरण एवं धर्म का संपोषण। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव की शास्त्रानुमोदित वाणी को राम ने अपने आचरण में उतार कर लोक के समक्ष प्रस्तुत किया। तभी तो वाल्मीकि को कहना पड़ा रामो विग्रहवान धर्म। श्री राम मूर्तिमान धर्म है, उनके रूप में धर्म ने शरीर धारण किया है, जिसके जीवन में कभी भी अवांछनीय कार्य व्यवहार नहीं दिखलाई पड़ते। वे युग युग तक धर्माचरण एवं सत्याचरण के उदाहरण बने रहेंगे। किशोरावस्था में ही राम के जीवन में संघर्षों का संघात पाते हैं। विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के निमित्त निशाचरों का वध, पुरुष प्रधान समाज से उपेक्षित, प्रताड़ित एवं तिरस्कृत अहिल्या का चरण स्पर्श, मिथिला नरेश के यहाँ रखे हुए विशालकाय शिव धनुष का भंजन, सीता से विवाह, मार्ग में आए परशुराम का गर्भहरण जैसी घटनाएं उनके भावी जीवन की भव्यता एवं विराटता को संकेतित करती हैं। पिता की इच्छा के विरुद्ध सत्य की रक्षा के लिए एवं स्वधर्म पालन के निमित्त वनवास की अवधि को सहर्ष स्वीकार कर अंतर कलह पर विराम लगा देने की उदात्त भावना कालातीत प्रासंगिक है। यह दुस्सह वनवास के 14 वर्षों की अवधि के अंतराल में राम के पावन चरित्र का चरमोत्कर्ष अनुगमनीय एवं मननीय है। उनकी धर्म भार्या सीता ने समझाया कि जटाजूट एवं बलकल से सुशोभित मुनि के वेश में धनुषबाण की क्या आवश्यकता है। शस्त्रास्त्रों से सज्जित देख दुष्ट असुरों के आक्रमण की संभावना बनती है, अतएव आप इन्हें किसी ऋषि के आश्रम में रख दें। सीता की बातों का राम ने जो उत्तर दिया वह उनकी धीरता, वीरता एवं लोक रक्षण की भावना का अप्रतिम उदाहरण है। राम ने कहा कि सीते, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लक्ष्मण को भी छोड़ सकता हूँ, किंतु दुष्टों के दलन एवं सज्जनों के संरक्षण की जो प्रतिज्ञा मैंने की है उसे नहीं छोड़ सकता, अतएव धनुष बाण भी नहीं छोड़ सकता। यहाँ हम राम को एक सच्चे लोक नायक की भूमिका में पाते हैं, जो अपने दायित्व निर्वाह के प्रति सदैव सजग एवं जागरूक हैं। वनवासी राम ने असुर संस्कृति का उन्मूलन कर आर्य संस्कृति की स्थापना की, उपेक्षित जनसमूह को समुचित सम्मान देकर मैत्री की स्थापना की, दलित नारी का प्रतिनिधित्व करने वाली शबरी का आतिथ्य ग्रहण कर लोक के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया, सुग्रीव से संबंध स्थापित कर मदांध एवं स्वार्थांध बाली का संहार किया, वनवासी समूह की सदिच्छा सहायता एवं सूझबूझ से विपन्नावस्था में भी सेतु निर्माण जैसे दुष्कर कार्य का संपादन किया, शत्रु के भाई विभीषण को आश्रय देकर कूटनीति का परिचय दिया, रावण कुंभकर्ण जैसे दुर्दमनीय शत्रुओं का संहार कर जिस आत्मबल की पराकाष्ठा को लोक के समक्ष रखा वह मानव मात्र के लिए प्रेरणाप्रद एवं प्रासंगिक है। राम ने स्वर्णमयी लंका से जन्मभूमि अयोध्या को श्रेष्ठ माना और अविलंब माता एवं मातृभूमि के दर्शनाभिलाषी राम अयोध्या लौटे। प्रवासी भरतवंशियों के लिए राम के उपरोक्त चरित्र की प्रासंगिकता को भला कैसे नकारा जा सकता है। राज्यारोहण के उपरांत कतिपय लोप का अपवाद के कारण राम अपनी प्राण प्रिया सीता को परित्याग कर इस सत्य संकल्प की स्थापना करते हैं कि राजा का व्यक्तिगत सुख एवं उसके जीवन की शांति लोकापवाद एवं प्रजा की संतुष्टि के समक्ष तुच्छ है। तभी तो हम आज भी कहने को विवश हैं, राजा हो तो राम जैसा। लाखों वर्ष बाद भी हम राम राज्य की परिकल्पना में आत्मविभोर हो जाते हैं। राष्ट्राध्यक्षों के समक्ष राम के इस पावन चरित्र की महानता एवं प्रजा रंजन की भावना की प्रासंगिकता स्वयं सिद्ध है। वर्तमान समय में विश्व के समक्ष समस्याओं का संघात सूरसा की तरह मुंह बाए निगल जाने को आतुर है। नैतिक मूल्यों की गिरावट एवं चारित्रिक अस्खलन ने मानव के सुंदर मुखमंडल को स्याह बना दिया है। चरित्र एवं धर्म बल के अभाव में आज मानवीय गरिमा नष्ट हो रही है। परिणाम स्वरूप हम कुंठाग्रस्त एवं आत्मघाती जीवन जीने को विवश हैं। हमारी स्वार्थपरता ने जीवन को जंजाल बना दिया है। राम का जीवन आदर्श हमारे वैयक्तिक एवं पारिवारिक जीवन को संवार सकता है। सुसंस्कृत सुंदर एवं सुस्थिर परिवार से सुस्थिर संगठित एवं शक्ति संपन्न राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। विघटित परिवार की मानसिकता में पला एवं बढ़ा बालक राष्ट्र को संगठित कैसे कर सकता है। अतएव राम के पारिवार

0: पारिवारिक जीवन का आदर्श आज की अनिवार्य प्रासंगिकता है। राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन में चतुर्दिक असत्याचरण एवं असत संभाषण की पराकाष्ठा हो गई है। परिणाम स्वरूप हम दिग्भ्रमित एवं आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं। आत्मपोषण की भावना ने जीवन को विषवत बना दिया है। अनावश्यक वासनाओं की संतुष्टि हेतु हम सतत प्रयत्नशील हैं। परिणाम यह है कि हम सब कुछ पाकर भी रीते रीते लगते हैं। राम का जीवन दर्शन हमें यह बतलाता है कि कर्तव्यों के निर्वाह में वास्तविक एवं सच्चे सुख की प्राप्ति संभव है। स्वयंभू जननायकों के समक्ष राम के चरित्र का आदर्श, उनके कार्य संपादन का कौशल, वाणी विचारों कार्यों की एकता चुनौती बनकर खड़ी है, जिसे अपनाने की त्वरा में ही सबका कल्याण समाहित है। गांधी जी ने राम राज्य का सपना देखा था और वह सुशासन तभी संभव है जब जननायकों के आचरण एवं वाणी में समानता हो। कर्तव्य बोध विस्मरण की इस विषम बेला में राम के जीवन चरित्र की ज्योति को अपनी अंतरात्मा में जलाकर उसके प्रकाश से स्वयं आलोकित होने एवं अपने परिवेश व परिस्थिति को आलोकित करना ही वाल्मीकि के जीवन व वाल्मीकि के राम की आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता है, क्योंकि उन्होंने धर्म के तत्व को सर्वांश में आत्मसात किया और स्वजनों से कराया भी। वाल्मीकि के राम का जीवन स्वयं में एक आलोक पुंज है, जिसकी प्रासंगिकता त्रिकाल सत्य एवं सर्वकालिक है।
1: अभी आपने सुना हिंदी वार्ता, विषय था वाल्मीकि के राम की प्रासंगिकता आज के संदर्भ में। वार्ताकार थे डॉक्टर विजेंद्र पाठक। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:30 होने वाले हैं। अब हम सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज कार्यक्रम लोक माधुरी में सुनेंगे शारदा सिन्हा को। इस पारंपरिक गीत को शारदा सिन्हा ने संगीत दिया है। एल्बम है परदेसिया बलमुआ। ताई सुनते हैं शारदा सिन्हा को कार्यक्रम लोक माधुरी में।

अभी आपने शारदा सिन्हा को सुना, भोजपुरी एल्बम लोकगीतों के कार्यक्रम लोक माधुरी में। श्रोताओं, अब हम सुनते हैं भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रसधार। कार्यक्रम रसधार के शुरुआत करते हैं मदन राय की आवाज़ में। इस पारंपरिक गीत को भरत शर्मा व्यास ने संगीत दिया है। माफ कीजिएगा, कार्यक्रम रसधार की शुरुआत करते हैं भरत शर्मा व्यास की आवाज़ में। अशोक शिवपुरी के गीत हैं, भरत शर्मा व्यास का संगीत है, एल्बम है निमिया के डाढ़ मैया।

अगला गीत सुनते हैं आर्यन बाबू की आवाज में। उपेंद्र उजाला ने इसे लिखा है, अशोक कुमार दीप ने संगीत दिया है और एल्बम है काहे बेटी गर्भवे में मारल जाली।

कार्यक्रम रसधार के आखिर में सुनते हैं एक और गीत अभिषेक सिंह गोलू के आवाज में। हरे राम डेंजर ने इस गीत को लिखा है, रोशन राज ने संगीत दिया है। एल्बम है मन करे जाए के नादी।

किसी कारण बस इस गीत को पूरा नहीं सुना सके, श्रोताओं इसके लिए खेद है। अब हम सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। कार्यक्रम लोक माधुरी में सुनते हैं मदन राय को। पारंपरिक गीत को भरत शर्मा व्यास ने संगीत दिया है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक माधुरी में खूबसूरत सा निर्गुण गीत मदन राय की आवाज़ में।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। उमना पंचायत से धर्मेंद्र कुमार सिंह बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: दिन है कि आज मैं उमना पंचायत को बिहार के पोर्टल पे एक नंबर स्थान पे रखने का काम किया। चाहे वो खेल मैदान हो, बाजार हाट हो, सामुदायिक भवन हो, छठी मैया घाट हो, रोड हो, नाली हो, तमाम कार्य हमने कराया है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कुमना पंचायत की जनता।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। बनी वैसी पंचायत से गुड़िया देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: कार्य किए हैं, बच्चा का खेल मैदान वाला बनवाए, उसके बाद गली बनवाए, नाली, उसके बाद सरकार भवन बनवाए, उसके बाद रोड बनवाए, उसके बाद कचरा वाला। तो बहुत अच्छा लगा। पहले भी हमको भागलपुर में मिला था, फिर हम गया गए थे, हैदराबाद गए थे, वहाँ भी हमको सम्मान मिला। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पठिया पंचायत से ज्योति कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं ज्योति कुमारी ग्राम पंचायत राज मठिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैंने जितने सारे कार्यों का वर्णन हम सभी मुखिया जी इस प्लेटफॉर्म पे आके वर्णन कर रहे हैं, यह सारी की सारी छुपी रह जाती अगर अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान सहयोग करके हमारे धरातल को हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को यहाँ उभार कर मंच प्रदान नहीं करती। तो आज इस मंच पे आके हम सभी प्रतिभागी यहाँ पर अपने आप को गौरवपूर्ण महसूस कर रहे हैं और इसके लिए फिर से एक बार अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता का महीना है, इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
3: नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम कुमारी पूनम हॉस्पिटल सासाराम रोहतास बिहार से बोल रही हूँ। हर दंपति का सपना एक खुशहाल परिवार बसाने का होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी यानी बंजापन कई दंपति का यह सपना साकार होने नहीं देता। इनफर्टिलिटी का अर्थ है एक बरस तक नियमित प्रयासों के बावजूद गर्भधारण न होना। यह हर 6 में से एक दंपति को प्रभावित करता है। याद रखें, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला नहीं पुरुष भी हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव से लेकर मॉडर्न प्रभावी उपचार जैसे IVF तक उपलब्ध है। अब समय है कि हम इस विषय पर बिना संकोच खुलकर बात करें और डॉक्टर से उचित मार्गदर्शन लें।
2: गुफिक बायोसाइंसेस के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी।
4: संदेश से पहले आपने सुना मुन्ना सिंह को, एल्बम था आधी आधी रतिया के। मनोज पुरुषोत्तम के बोल थे, मुन्ना सिंह का संगीत था। अब हम सुनते हैं पारंपरिक गीत प्रेम सागर सिंह की आवाज़ में, मदन शर्मा का संगीत है और एल्बम है करी हम कौन बहाना।

कार्यक्रम लोक माधुरी के आखिर में सुन लेते हैं भरत शर्मा व्यास को। इस पारंपरिक गीत को स्वयं भरत शर्मा व्यास ने ही संगीत दिया है। एल्बम है करी हम।

0: कौन बहाना।
1: जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता का महीना है। इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर संध्या सिंह, संध्या रंजन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रोजा रोड सासाराम से बोल रही हूँ। हर दंपति का एक सपना है खुशहाल परिवार बसाने का, लेकिन इनफर्टिलिटी यानी बांझपन कई दंपति का यह सपना साकार नहीं होने देता। इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का अर्थ है एक वर्ष तक नियमित प्रयासों के बाद भी गर्भधारण ना होना। यह हर 6 में से एक दंपति को प्रभावित करता है। याद रखें, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला नहीं पुरुष भी हो सकते हैं, इसलिए इस विषय पर बिना संकोच खुलकर बात करें और उचित परामर्श लें। उचित मार्गदर्शन, ससमय उपचार, जीवन शैली में बदलाव सार्थक हैं एवं मॉडर्न ट्रीटमेंट जैसे IVF तक उपलब्ध हैं। इसलिए बिना संकोच डॉक्टर से उचित परामर्श लें और अपने सपने को साकार करें। धन्यवाद।
1: गुफिक बायोसाइंसेज के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी

0: नुकसानी का। लेकिन इनफर्टिलिटी यानी बांझपन कई दंपति का यह सपना साकार नहीं होने देता। इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का अर्थ है एक वर्ष तक नियमित प्रयासों के बाद भी गर्भधारण ना होना। यह हर 6 में से एक दंपति को प्रभावित करता है। याद रखें, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला नहीं पुरुष भी हो सकते हैं। इसलिए इस विषय पर बिना संकोच खुलकर बात करें और उचित परामर्श लें। उचित मार्गदर्शन, ससमय उपचार, जीवन शैली में बदलाव सार्थक हैं एवं मॉडर्न ट्रीटमेंट जैसे IVF तक उपलब्ध हैं। इसलिए बिना संकोच डॉक्टर से उचित परामर्श लें और अपने सपने को साकार करें। धन्यवाद।
1: गुफिक बायोसाइंसेज के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी

इसी गीत के साथ कार्यक्रम लोक माधुरी अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। पूर्वाहन के 11:30 होने वाले हैं। अब हम सुनते हैं अगला प्रसारण विविध भारती से थोड़ी देर में।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है

कार्यक्रम में आप सुनिए मसरूर अनवर का लिखा ये शेर। इसे आवाज दी है रूना लैला ने।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जावेद अली और श्रेया घोषाल की आवाजों में हम आपको एक गैर फिल्मी गीत सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं यतीन्द्र मिश्रा और संगीत दिया है प्रीतम ने।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विरंग तरंग। ये आवाज है भूपेंद्र सिंह की। विमल कश्यप के बोल हैं और निखिल कामत का संगीत।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जगजीत सिंह की आवाज में हम आपको एक भक्ति पद सुनवा रहे हैं।

0: इस भक्तिपद के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: रंग तरंग। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों ने बहुत काम किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जब तत्कालीन सरकार ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को कमजोर करने का प्रयास किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। उन्होंने कहा कि उस समय नागरिकों के कई अधिकार सीमित कर दिए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी इसका असर पड़ा। भारत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार विषयों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई के अनुसार ये कार्रवाई देश भर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी 200 से अधिक ठगी की घटनाओं की जाँच के तहत की गई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा है। ये सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकते हैं। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत ब्रिटेन

0: व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबद्ध दोहरे अंशदान समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये समझौते अगले महीने की 15 तारीख से लागू होने वाले हैं। यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय किया है। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक आज लगभग 0.7% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहे थे। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 500 अंक के उछाल के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि से 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम, बस कुछ ही पलों में।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज महान संगीतकार मदन मोहन का जन्मदिन है। हम उन्हें आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। साथ ही आज मशहूर अभिनेत्री करिश्मा कपूर का जन्मदिन है, तो विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें ढेरों शुभकामनाएं भी देते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में हम याद करेंगे मदन मोहन को और साथ ही करिश्मा कपूर की फिल्मों से कुछ गीत सुनेंगे। यह आवाज लता मंगेशकर और भूपेंद्र की, फिल्म का नाम मौसम, गीतकार गुलजार, संगीतकार मदन मोहन।

0: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: 20 जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन, कौन लाया,
2: कौन लाया। मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी का लिखा गीत सुनिए, आवाज मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम हीर रांझा।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में अब सुनिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। स्वर लता मंगेशकर का है और ये फिल्म है चिराग।

0: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे राजा मेहदी अली खान का लिखा गीत। आवाजें मदन मोहन और लता मंगेशकर की थी। फिल्म का नाम था वो कौन थी।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: और लीजिए अब सुनिए राजा मेहदी अली खान की रचना, आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है मेरा साया। संगीतकार हैं मदन मोहन और अभी तक हम आपको सुनवा रहे थे मदन मोहन की संगीत रचनाएं।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म मेरा साया का गीत सुना। गीतकार राजा मेहरी अली खान थे और संगीतकार थे मदन मोहन।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: दोस्तों अभी तक आप सुन रहे थे मदन मोहन की संगीत रचनाएं और अब हम आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री करिश्मा कपूर की फिल्मों से कुछ गीत। तो लीजिए पहले हम आपको नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा हुआ ये गीत सुनवा रहे हैं। उदित नारायण, अलका याग्निक और सपना अवस्थी की आवाजें। फिल्म का नाम राजा हिंदुस्तानी।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आनंद मिलिंद का संगीत, समीर के बोल, उदित नारायण की आवाज और ये फिल्म है अनाड़ी।

इस कार्यक्रम का अब आखिरी गीत सुनिए, आनंद मिलिंद का संगीत, समीर के बोल, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें, फिल्म का नाम कूली नंबर 1।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? आज फिर तैयार है ना मेरे साथ सुरीला सफर में निकलने के लिए? मुझे पता है आप तैयार हैं। देखिए ना, बहुत ही एक सुंदर विचार है कि जीवन जो है एक संगीत वाद्य यंत्र के समान है, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा है। जिस तरह एक वीणा या गिटार से निकलने वाली धुनें यंत्र की बनावट से ज्यादा उसे बजाने वाले वादक पर निर्भर करती है, ठीक उसी तरह हमारे जीवन की लय और सफलता हमारे दृष्टिकोण और हमारे कार्यों पर निर्भर करती है ना? तो फिर आप देखिए ना कि आप अपने जीवन के स्वयं रचयिता हैं। हर परिस्थिति, हर सुख और दुख में ये आप तय करते हैं कि कौन सा सुर हमें बजाना है, यानी कौन सा काम हमें करना है। तो संगीत की तरह हमारे जीवन में आने वाली उतार चढ़ाव और भावनाओं को व्यक्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम बनते हैं ये इंस्ट्रूमेंट, यानी हमारे वाद्य यंत्र। तो जैसे एक वाद्य यंत्र के सुर में रखने के लिए, उसको सुर में रखने के लिए नियमित अभ्यास की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर सीखने और धैर्य की जरूरत होती है ना? और यदि इन तारों को बहुत ज्यादा कस दिया जाता है तो क्या होता है, वे टूट जाते हैं, और अगर ढीला छोड़ दिया जाता है तो उनसे सुर नहीं निकलता। तो जीवन में संतुलन बेहद जरूरी है। बस यही बात हमारी गीत संगीत में भी लागू होती है। जी हाँ, हमारे संगीतकार जब किसी गीत की रचना करते हैं तो हर वाद्य यंत्र को कस के रखते हैं, और जब कोई निर्देशक उन्हें पर्दे पर फिल्माता है तो वहां पर भी उन वाद्य यंत्रों के साथ उन गीतों को गाया जाता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। समझ गए ना आप मेरी बात? तो आज की हमारी जो टेक्स्ट है, आज का हमारा जो टेक्स्ट है वो ये है कि अक्सर जब कोई किरदार अकेला होता है, उदास होता है या प्यार में होता है, तो पर्दे पर उसे किसी वाद्य यंत्र के साथ नायक या नायिका अपने जज्बात पेश करते हुए दिखाए जाते हैं। तब वो सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि स्क्रीन पर रोमांस

उदासी या दिल की गहराइयों को दिखाने का एक जरिया होता है। फिल्मी दुनिया के सुनहरे दौर से लेकर आज तक एक खास वाद्य यंत्र पर कई जादुई गीत रचे गए हैं, फिल्माए गए हैं और कई बार गानों की शुरुआत उसी वाद्य यंत्र की धीमी और मीठी मीठी धुन से हुई है। बाद में हाँ अंतरा आते आते और सारे वाद्य यंत्र भी उसमें जुड़ जाते हैं। तो आज हमारे दोस्तों को बताना है कि वो कौन सा वाद्य यंत्र है जिनसे जुड़े खूबसूरत गीत आज मैं लेकर आई हूँ। जी हाँ, हम आपको गीत सुनवाने वाले हैं। इससे पहले हम उन श्रोताओं को बता दें जो हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं, www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर वो अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, विविध भारती परिवार से जुड़ सकते हैं। तो चलिए पहला गीत आपको सुनवाते हैं और आपको अंदाज लगेगा कि ये कौन सा वाद्य यंत्र आज हम लेकर आए हैं। हमारे कई श्रोताओं ने तो सही लिखा है और कई श्रोताओं ने बहुत सारे वाद्य यंत्रों की बात कही है। तो आइए सुनते हैं ये पहला गीत, खय्याम साहब की धुन, साहिर लुधियानवी के बोल, जगजीत कौर की आवाज और फिल्म का नाम शगुन। याद करिए पर्दे पर नायिका कहाँ बैठी है, किस वाद्य यंत्र के साथ उनकी उंगलियां थिरक रही हैं।

जी, तो अभी आपने जगजीत कौर की आवाज में फिल्म शगुन का ये गीत सुना। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीत दिया था खय्याम साहब ने। और हमारे श्रोताओं ने बता दिया है कि आज हम वाद्य यंत्र पियानो की बात कर रहे हैं। जी हाँ, और देखिए ये जो वाद्य यंत्र बज रहा है ये भी पियानो ही है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बात लिखी है और वो लिखते हैं कि भई आज पियानो से जुड़े कुछ फिल्मी गीत आप लेकर आई हैं और बहुत सारे

श्रोताओं ने तो बहुत सारे वाद्य यंत्रों का जिक्र कर दिया है, जैसे कि गिटार, हारमोनियम, ढोलक, वायलिन, शंख, मृदंग, तबला, सैक्सोफोन, सितार और बांसुरी का। नहीं नहीं आज हम बात करेंगे किस पर? पियानो पर। जो पियानो से जुड़े गीत हैं जहां पर नायक या नायिका की उंगली थिरक रही है पियानो पर। एक श्रोता लिखते हैं कि पारिजात जिस घड़ी निशब्द झड़ते हैं धरती की गोद में, तब दबे पांव सितार की झनकार तारों की ओढ़नी ओढ़कर सोए कंदील को जगा देती है। दुख सुख का कोई भी पल हो, वाद्य कोई भी हो, कुछ गीतों ने जीवन में बड़ा डांडस बधाया है। वाद्य कोई भी हो, ये हमारी संवेदना की दुनिया के सच्चे साथी हैं। ये गीत जो आज बजेंगे वे हमारी सांसों में तिरते हैं, कानों में उतरकर मन के अंतर्मन को विकल कर देते हैं। आज के सुरीले सफर में जीवन रस में डूबे गीत सुनने को मिलने वाले हैं। कल्पना को परवास देते इन गीतों की अनुगूंज पहरों पहर मधोश किए रहती है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है, देखिएगा आपके जो गीत आपने लिखे हैं क्या वो गीत हमारी पसंद से मेल खाते हैं। आपने लिखा है कि आज मीठी धुनों से, सुरीले संगीत से सजा है सुरीला सफर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के अनुसार आज के गानों में विभिन्न वाद्य यंत्रों की झनकार सुनने को मिलेगी, बहुत ही सुंदर विषय है। जी हाँ, वैसे तो हर गाने में बहुत सारे वाद्य यंत्र इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन हमने जहाँ खास तौर से पियानो बजाया गया है उन गानों को चुना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि और वो वाद्य यंत्र और कोई नहीं, पियानो ही है। आज हम पियानो पर बजने वाले गाने सुनेंगे, जैसे कि इन्होंने गाने का जिक्र भी किया है। वहीं एक साथी लिखते हैं कि नायक और नायिका को जब दुख और उदासी घेर लेती है तो दिल की व्यथा को उजागर करने के लिए वो गाने का सहारा लेते हैं और पियानो बजाकर अपना दुख व्यक्त करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पियानो सिर्फ लकड़ी, तार और चाबियों का ढांचा नहीं है, वो इंसानी जज्बातों को सुरों में ढालने का एक जरिया है। जब इसकी सफेद और काली चाबियां पर उंगलियां थिरकती हैं तो मानो वक्त थम जाता है। पियानो की धुन में शब्दों की जरूरत नहीं होती, इसकी धीमी आवाज जहां आंखों में आंसू ला सकती है, वहीं इसकी तेज और ऊर्जावान धुन थिरकने पर हमें मजबूर कर देती है। बहुत सुंदर क्लासिक विचार ठीक हमारे आज के गीतों की तरह आपके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आगे बढ़ते हैं और वैसा ही एक और गीत सुनते हैं जहां कौन है देखिएगा, शायद दिलीप कुमार साहब की उंगलियां थिरक रही हैं। मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम अंदाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और नौशाद साहब की धुन।

0: जी हाँ, हमारे श्रोता लिखते हैं कि अभिनव अन्वेषण की पर्याय बन चुकी जोशी साहिबा का ये इबारत पूर्ण रूपेण कार्यक्रम अनुरूप है, जो सफर को सुरीला और नशीला बनाएगा। साज बिन आवाज अधूरी, यंत्र बिना मंत्र अधूरा, आवाज को अंजाम हासिल करने में इन यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आदिकाल से पूजा आदि शुभ कार्यों और समारोह में इनका सम्मान होता आ रहा है। चाहे शंख हो, घंटी की ध्वनि हो, ढोलक हो, मृदंग हो, तबला हो, उसकी थाप हो, वाद्य यंत्र हमारे सामाजिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। आज के प्रसंग में पियानो और वायलिन का जिक्र है तो मन के शून्यता को पूर्णता प्रदान करने में सफल मानी जाती है। साज और आवाज से सज्जित सफर का बेसब्री से इंतजार है। तो अब आपका इंतजार खत्म हुआ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के कार्यक्रम के लिए मैं बहुत उत्साहित हूं, धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीले सफर में जिस वाद्य यंत्र की बात हो रही है वो है पियानो। हिंदी फिल्मों में दिखाए गए ये वाद्य यंत्र अक्सर अमीर घरानों के घर की शोभा होती थी। प्यार में धोखा या बेवफाई के कारण हीरो और हीरोइन अपना दर्द इसी पियानो के साथ बांटते नजर आते थे। आपने गीत का जिक्र भी किया है, देखिएगा ये गीत हमारी प्लेलिस्ट में है कि नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज क्या टेक्स्ट पढ़कर लग रहा है, वो साज कोई और नहीं पियानो हो सकता है। ये हमारा मानना है जो खुशी और गम दोनों मौके पर हीरो या हीरोइन द्वारा अपनी खुशी या गम व्यक्त करने के लिए इस साज के साथ गाते देखा गया है। जैसे कि फिल्म अनाड़ी का इन्होंने गाना लिखा है, अनुपमा का, और भी बहुत सारे गाने इन्होंने आज लिख दिए हैं। हो सकता है आपके गाने हमारे गानों से मेल खाएं, बताइएगा कितने गाने आपके गानों से हमारी पसंद मिली है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर में आपने बहुत सुंदर विषय चुना है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इबारत केवल एक वाद्य यंत्र की चर्चा नहीं करती बल्कि हिंदी सिनेमा की उस भावनात्मक विरासत को याद दिलाती है जहां सुर संगीत और संवेदनाएं एक दूसरे से घुल मिल जाती हैं। जब पर्दे पर कोई नायक या नायिका अपने मन की अनकही बातों को शब्दों से नहीं बल्कि किसी वाद्य यंत्र की मर्दों धुनों के सहारे व्यक्त करता है तब वो संगीत केवल सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस भी होता है। उसकी मीठी तान कभी प्रेम की कोमलता बन जाती है, कभी विरह की कसक और कभी अकेलेपन की मौन व्यथा। बहुत सुंदर जी। तो अगला गीत हम आपको सुनवाएं, इससे पहले हमारे दो सवाल बिल्कुल सीधे साधे। पहला सवाल तो यही कि पियानो से जुड़े गीत बताइए जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप कौन कौन से गीतों का जिक्र करने वाले हैं, बताइए कौन कौन से ऐसे गाने हैं जहां नायक या नायिका इस वाद्य यंत्र को बजा रही हैं और गीत गाए जा रहे हैं। हो सकता है आप जो गीत लिखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट से, हमारे पसंद के गीतों से मेल खा जाए। और हमारा दूसरा सवाल, क्या आपने कोई वाद्य यंत्र सीखा है, अगर हाँ तो कौन सा। जैसे हमारे एक श्रोता ने कहा है कि उन्होंने वायलिन सीखा है और उनके बेटे को भी उन्होंने वायलिन सिखाया है, तो आप भी बताइए अगर आपने कोई वाद्य यंत्र सीखा है तो कितना सीखा, कितने साल सीखा और अब आप उसे बजाते हैं, कैसा महसूस करते हैं। कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात। अगला गीत सचिन देव बर्मन की संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें, फिल्म का नाम तीन देवियां। बताइएगा इसमें देवानंद तो वाद्य यंत्र के साथ हैं यानी पियानो बजा रहे हैं, सामने खड़ी हैं सिमी ग्रेवाल और ठीक पीछे कौन सी नायिका खड़ी उनका इंतजार कर रही है यानी उस गाने को सुन रही है।
1: हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी

कल्पना मोहन है। बिल्कुल इस फिल्म में नंदा भी है, लेकिन इस गाने में नंदा जी नहीं खड़ी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि साज के साथ गीत और भावनाओं का संगम लेकर आया है आज का सुरीला सफर। साज वो दर्पण है जिसमें शब्द अपनी भावनाओं को निहारते हैं, साज वो आधार है जिस पर गीत अपनी उड़ान भरते हैं। जहां केवल शब्द अधूरे रह जाते हैं, वहां ये उस भाव को पूरा कर देते हैं। गीत अगर मौन की भाषा है तो साज उस भाषा की आवाज है। इस बात पर पियानो, गिटार, बांसुरी, सितार और कई पाश्चात्य वाद्य याद आ रहे हैं। ऐसे अनगिनत गीतों का खजाना दिखाई दे रहा है। आपने कौन सा वाद्य और गीतों की मोती चुन लिए, अनुमान लगाना मुश्किल है, फिर भी कुछ गीत आपने लिखे हैं तो सुनिएगा, बताइएगा क्या गीत आपके हमारे गीतों से मिल खा रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पियानो के साथ साथ शायद हारमोनियम भी आज के गीतों में है। तो वैसे तो हमने कहा ना कि पूरे गीत में कई वाद्य यंत्र बजते हैं, लेकिन फिल्मांकन करते समय पर्दे पर जब हम देखते हैं तो नायक या नायिका उस पियानो के पास बैठे हुए बजाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। उन गानों को आज हमने चुना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इट्स पियानो, सो मैनी सॉन्ग्स पिक्चराइज्ड ऑन पियानो इन हिंदी।

गीतों में है। तो वैसे तो हमने कहा ना कि पूरे गीत में कई वाद्य यंत्र बजते हैं, लेकिन फिल्मांकन करते समय पर्दे पर जब हम देखते हैं तो नायक या नायिका उस पियानो के पास बैठे हुए बजाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, उन गानों को आज हमने चुना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इट्स पियानो सो मेनी सॉन्ग्स पिक्चराइज्ड ऑन पियानो इन हिंदी सिनेमाज। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती के सुरीले सफर में जहां नायक नायिकाएं हाथ में कोई वाद्य यंत्र लिए गाते थिरकते नजर आते हैं, लेकिन पियानो की धुन पर सजी महफिल में गाती नायिका या नायक का गाना खुशियों में डूबा या उदास लम्हों को संजोए हुए है। दिल की भड़ास निकालते गीतों का क्या कहना, जहां तो बज रही है लेकिन सामने बैठी माशुका विलेन के साथ ठिठोली करती उसे जला रही है और आशिक को बाहर चले जाने को मजबूर भी कर देती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पियानो में आज सिर्फ एक वाद्य यंत्र को नहीं समझा जाए बल्कि भावनाओं का अनुवादक रहा है ये। जब नायक या दिल टूटा हो, जब प्रेम अधूरा रह गया हो, जब यादें बेचैन कर रही हो या जब अपनी तन्हाई से बातें कर रहा हो कोई, तब अक्सर उसे पियानो पर गाना गाते दिखाया जाता है। पियानो की मधुर और गहरी धुनें मन के दर्द को शब्दों से भी ज्यादा प्रभावी ढंग से व्यक्त करती है। आपने एक गीत का जिक्र भी किया है, शायद वो गीत आप सुन भी लें इस कार्यक्रम में, है ना? तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखते हैं। आगे एक श्रोता का कहना है कि आज का सुरीला सफर वास्तव में सुरीला होने वाला है, क्योंकि इबारत पढ़कर मुझे लगा कि आज वॉयलिन की बात होने वाली है। जहां तक मेरा सवाल है, हम भी अपने आप को संगीतकार समझते थे और इसी धुन में वॉयलिन की क्लास भी लगा ली, पर कुछ खास नहीं कर पाए। बहुत वर्षों पश्चात बेटे को भी वॉयलिन की क्लास लगवाई और उसने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाया। चार परीक्षाएं पास करके काफी कुछ बजाया है, लेकिन आम तौर पर जैसा होता है हम मध्यम वर्गीय परिवारों में कि नौकरी को वरीयता दी जाती है, समय अभाव के कारण वो भी इस क्षेत्र में ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। या आपने बिल्कुल सही कहा कि माता पिता चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिखकर चाहे LDC UDC बैंक में काम कर ले या बाकी दूसरी पोस्टों पर चला जाए, लेकिन एक साज को लेकर वो उसे अपना शौक नहीं बनाए या उस पर अपना कैरियर नहीं बनाए, है ना? इस तरह की सोच में अक्सर बहुत सारे कलाकार छूट जाते हैं बहुत पीछे। अगला गीत लेते हैं, शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में है, हसरत जयपुरी की रचना, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम लव इन टोक्यो। जी हाँ, जॉय मुखर्जी और आशा पारिक की जोड़ी, देखिए कैसे बजता है ये वाद्य यंत्र। जॉय मुखर्जी इसे बजा रहे हैं।

जी, तो आज हम वाद्य यंत्र के रूप में आपको पियानो की विभिन्न धुनें भी सुना रहे हैं। इस पर भी ध्यान कीजिएगा, है ना, गौर फरमाइएगा। और हाँ, हमारे एक श्रोता ने ध्यान दिलाया है कि जो वाद्य यंत्र है पियानो पर, आशा पारिक बैठी हुई थी और जॉय मुखर्जी सामने है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते भी हैं कि फिल्म में पियानो इस तरह का साज है जिसमें नायक या नायिका अपने दिल के जज्बात को व्यक्त करता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आइए मेहरबा बैठिए जाने जा जैसे ओपी नैयर का संगीत है, जिसमें लकड़ी के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया है, वो बहुत सुंदर लगता है। इस तरह से बहुत सारे गाने हैं जहां पर सपेरे की बीन की आवाज है। गीत तो बहुत सारे हैं जिसमें विभिन्न वाद्य यंत्रों जैसे गिटार, वायलिन, ढोलक, तबला आदि का प्रयोग किया जाता है। मुझे तो आपकी पसंद की गीतों का इंतजार है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज लग गया है 440 वोल्ट का झटका। अरे क्यों भाई, समझ नहीं पड़ रहा, क्योंकि अकेले नायक नायिका जब गाते हैं तो ज्यादातर दुख भरे गाने होते हैं या उम्मीद भरे, दोनों में गिटार या पियानो का उपयोग होता है, या कभी कभी बांसुरी भी। अनुमान लगाकर कुछ गाने लिख रहा हूँ। तो देखिएगा, ये गाने हमारे गाने से मेल खा रहे हैं क्या? मुझे लग रहा है कुछ गाने तो हमारी पसंद से मेल खा रहे हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत अलग सी थीम लेकर आप आती हैं, जरूर सुनेंगे नई जानकारी और मधुर गीतों के साथ आपको। जी जरूर सुनिएगा, आपके लिए तो ये सफर है जहां आप हमारे साथ और मेरे साथ होते हैं, खास है ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, यादों को तेरी दुल्हन बनाकर पियानो पर ये गीत गाया जा रहा है, और रफी साहब की आवाज ने तो इस जीत पर जान ही लगा दी है, इस गीत पर जान ही लगा दी है। अच्छा, आपने जीत लिख दिया है, गलती से कुछ आपका टाइप हो गया है, और ये गीत आपको बहुत पसंद है, तो सुनते रहिए कार्यक्रम, कहीं ये गीत आपको सुनने को मिल सकता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज मेरे अंदाज से पियानो के साथ फैलाए गए गीतों की बौछार होगी, नायक नायिका के मनोभावों को व्यक्त करते हुए पियानो की तरंगे हैं, किसी को सुनने को मजबूर कर देती हैं, चाहे उदासी हो या खुशी का माहौल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में वाद्य यंत्र केवल गायक के सहायक नहीं होते गायन के, बल्कि ये संगीत के प्राण, लय और सुर के मुख्य आधार होते हैं। ये रचना को गहराई, सौंदर्य और पूर्णता प्रदान करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और क्लासिक विचार आप सभी हमें लिखकर भेज रहे हैं। जी, तो हमारे दो सवाल आपने नोट कर ही लिए हैं, कुछ श्रोताओं ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं कि पियानो से जुड़े कौन से गीत हैं जो आपको याद हैं और वो हमारी प्लेलिस्ट से हो सकता है मेल खा जाएं, या वो गीत जो आप

को पसंद हो बताइए, जहां नायक या नायिका की उंगलियां पियानो पर थिरक रही हैं। और हमारा दूसरा सवाल कि आपने अपने जीवन में कोई वाद्य यंत्र सीखा या आपके बच्चों ने सीखा तो उसका जिक्र कीजिए। और हम लेते हैं अगला गीत अगले सफर की ओर। रवि का संगीत, साहिर लुधियानवी के बोल, महेंद्र कपूर की आवाज और फिल्म का नाम हमराज। यहाँ पर सुनील दत्त साहब बैठे हैं वाद्य यंत्र के पास और उनकी उंगलियां थिरक रही हैं।

मुझे लगता है कि आज पियानो पर जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमारे दोस्तों की यानी हमारे साथियों की उंगलियां भी थिरक रही होंगी। क्यों थिरक रही है ना, पियानो की तरह। हाँ पियानो पे मेरा मतलब है, क्योंकि हर गीत के साथ हम आपको एक पियानो की धुन भी अलग से सुनवा रहे हैं। और आज का ये सफर बहुत ही क्लासिक हो रहा है, मैं ऐसा समझती हूँ। आप क्या सोच रहे हैं मुझे बताइएगा। बाकी आज जो हमने दो सवाल आपसे पूछे हैं, हमारे श्रोता फटाफट हमें जवाब दे रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि एक ऐसी लड़की थी दिलवाले का और मेरी जंग जीत जाएंगे हम, इसमें पियानो का इस्तेमाल हुआ है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म अनुपमा का धीरे धीरे मचल और ब्रह्मचारी का दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, क्या बात है। तो हो सकता है आपकी पसंद हमारे पसंद से मेल खाती हो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राम और श्याम का और आदमी और ब्रह्मचारी फिल्म के गीत जो हैं पियानो से जुड़े हुए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम सभी संगीत प्रेमी श्रोता बहुत ही खुश नसीब हैं कि हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक नायाब म्यूजिक डायरेक्टर्स, म्यूजिक कंपोजर्स और वाद्य यंत्रों को बजाने वाले नायाब कलाकार हुए, जिन्होंने हमें शानदार गीतों का खजाना दिया है। सोचो अगर ये सारे म्यूजिक वाद्य अच्छी तरह से बजाए न जाएं तो गायक कलाकार की कितनी भी अच्छी आवाज क्यों न हो, अच्छा गीत नहीं बन सकता था। इसलिए सभी बजाने वाले साजिंदों को हम नमन करते हैं। बिल्कुल सैल्यूट देना चाहिए हमें उन सभी संगीतकारों को, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे 1960 से 1995 तक का संगीत बहुत ही पसंद है। और एक श्रोता ने तो पियानो के प्रकार लिखा है कि अपराइट पियानो, इसका भजन 175 वजन, इसका 175 किलोग्राम से 300 किलोग्राम तक होता है। अच्छा क्या, ग्रैंड पियानो का 300 से 600 किलोग्राम तक होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पियानो पर फिल्म वंदना का गाना आपकी इनायतें आपके करम आप ही बताएं कैसे भूलेंगे, हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है ये गाना आज के सुरीले सफर में होना चाहिए। और वहीं एक श्रोता कटी पतंग का गीत बताते हैं और वहीं लिखते हैं प्यार दीवाना होता है गाने में पियानो का इस्तेमाल हुआ है। एक श्रोता लिखते हैं कि कैसी हसीन आज बहारों की रात है फिल्म आदमी का गीत है। और वहीं मधुबन खुशबू देता है दिल के झरोखों में तुझको बिठाकर, धीरे धीरे मचल प्यार दीवाना होता है, मैंने तेरे लिए ही ख्वाब हो तुम, बहुत सारे गीतों को हमारे श्रोता ने लिखा है और आपकी पसंद हमारी पसंद से मेल खा रही है हुजूर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं धीरे धीरे मचल ख्वाब हो तुम, दिल ने प्यार किया एक बेवफा से, चले थे साथ मिलके आपके हसीन रुख पे, बहुत सारे ऐसे गीत हैं। और वहीं एक श्रोता ने फिल्म धर्म कर्म का गीत एक दिन बिक जाएगा को पसंद किया है। एक श्रोता लिखता है कि संगम का गाना दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा, ये भी गाना उसी से जुड़ा है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तबला सितार हारमोनियम और अकॉर्डियन पसंद है, स्कूल के दिनों में 3 महीने हारमोनियम सीखा था पर ये छूट गया, अब कुछ साल पहले हारमोनियम खरीदा है और समय समय पर बजाती भी रहती हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी वाद्य यंत्रों को लेकर इतने इतने संवेदनशील हैं, इतनी मार्मिकता आपके भीतर है और इन यंत्रों के बारे में आप भी बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण रखते हैं। आइए ऐसा ही एक और गीत सुनते हैं, रवि के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा हुआ, आवाज मोहम्मद रफी साहब की और फिल्म का नाम दो बदन।

0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैंने आज तक कोई भी वाद्य यंत्र नहीं सीखा, मुझे बहुत अफसोस है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती पर सुरीला सफर, जिंदगी गुजर रही है बेफिक्र, मजा आ रहा है। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म दो बदन का गीत मनोज कुमार पियानो बजाते हुए मोहब्बत हो गई जिनको दीवाने कहां जाएं, रफी साहब की आवाज में दर्द भरा गीत, शकील बदायूनी की कलम से और रवि का मध्यम संगीत बड़ा कर्णप्रिय लगता है। हमें पसंद है ये गीत, बजना चाहिए। हमें तो साज बजाना नहीं आता, हाँ हमारा लड़का ढोलक बजाता है जो जगह जगह भजन संध्या, अन्य कीर्तन और स्थानीय कार्यक्रमों में जाता है। अच्छी बात है ना। वहीं एक श्रोता ने पियानो वादक जो है मशहूर जैज पियानो वादक कीथ जैरेट के बात लिखी है। 1975 का उन्हें कोलोन कॉन्सर्ट की कहानी के बारे में एक बहुत लंबी चौड़ी बात लिखी है। इसे फिलहाल हम यहाँ नहीं ले पा रहे क्योंकि कार्यक्रम में समय बहुत कम है, लेकिन शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गाने आपने लिखे हैं, जिंदगी इत्तेफाक है और आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना, आपके हसीन रुख पे गुजरा जमाना, ये बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि कोई साज बजाना नहीं सीखा, लेकिन बचपन से विविध भारती को रेडियो पर सुनते सुनते आज ये दिन आ गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गीत आपने लिखे हैं, चेहरे पे खुशी छा जाती है, दोस्त दोस्त ना रहा, धीरे धीरे मचल और पत्थर के सनम, और इसके अलावा तू कहे अगर अंदाज का। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने बांसुरी, माउथ ऑर्गन और गिटार बजाना सीखा, काफी दिनों तक अपने विद्यालय और महाविद्यालय में कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बाद में मुझे मेरे बड़े भाई साहब ने कैसियो का कीबोर्ड, जो उस समय बहुत शुरू हुआ था, नेपाल से लाकर दिया। तब से मैं कीबोर्ड बजाता हूं और आज मेरे पास यामाहा का कीबोर्ड है जो मैं अमेरिका से लेकर आया था। बहुत अच्छी बात है कि आप वाद्य यंत्रों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, है ना। आइए हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं, उनकी लिस्ट में भी ये गाना है जो कहते हैं कि भाई फिल्म संगम का गीत सुनाइए मुकेश की आवाज में, दोस्त दोस्त ना रहा। तो चलिए सुना देते हैं आप सबकी पसंद पर, शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन की धुन। राज कपूर साहब बैठे हैं वहां इस वाद्य यंत्र को बजाते हुए। सामने कौन है? राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला, है ना।
1: के हसीन रुख

हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे सूरत में रोज मेरी नामक एक रेस्टोरेंट के वेटिंग एरिया की फ्लोरिंग पियानो थीम पर बनाई गई है। कांच के व्हाइट और ब्लैक पट्टे पर चलने से अलग अलग लाइटिंग के साथ म्यूजिक बजता है, बहुत ही रोमांचकारी नजारा होता है। ये वीडियो नहीं अपलोड होता वरना मैं दिखाता, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सरोद सीखना चाहता था पर हसरत ही रह गई, हालांकि छोटे भाई ने सितार सीखा है। वहीं एक श्रोता ने बहुत सारे गानों का जिक्र किया है और एक श्रोता लिखते हैं कि मैं हारमोनियम बजाना

सुनता हूँ। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे खैर गानों का इन्होंने जिक्र किया है, और एक श्रोता ने कहा है कि मैं हारमोनियम बजा लेता हूँ और तबला भी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है हमने वायलिन सीखा है 4 साल तक, पर अब हम बहुत कम बजाते हैं, अब थोड़ा भूलने भी लगे हैं। अरे भूलिए मत, उसे अपने जिंदगी में शामिल कीजिए। और अब हम शामिल करते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। जी हाँ, शम्मी कपूर साहब फिल्म ब्रह्मचारी के लिए और मोहम्मद रफी और लता साथियों की आवाजें हैं। हसरत जयपुरी की रचना है।

जी हाँ, उदास तो बिल्कुल भी नहीं होना है और जिंदगी का ये सुरीला सफर यूं ही कट जाएगा हंसते हंसते। इसी उम्मीद के साथ अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। इस अवसर पर देश और प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले सेनानियों को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान हत्या दिवस हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। इधर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए। इस दौरान 450 जेपी सेनानियों को सम्मानित किया गया। भाजपा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और जयंती के अवसर पर 6 जुलाई तक प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल का विरोध करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को नमन किया है। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल एक काला अध्याय था, जब सत्ता के अहंकार में लोकतांत्रिक संस्थाओं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा, संविधान के सम्मान और जन स्वर की शक्ति को सदैव सर्वोपरि रखना ही लोकतंत्र सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। वहीं आपातकाल विरोधी आंदोलन के अग्रणी नेताओं में शामिल रहे सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद ने कहा कि पटना स्थित उनका आवास 1975 में आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना हुआ था, जहां लोकतंत्र की बहाली को लेकर रणनीतियां बनाई जाती थीं। आकाशवाणी से बातचीत में श्री प्रसाद ने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों पर बड़ा प्रहार था। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि 25 जून भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था और मीडिया की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दी गई थी। श्री झा ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उस आंदोलन के दौरान जेल में रहे थे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलौटी गांव में पिछले दिनों हुए कथित मुठभेड़ में भरत तिवारी नामक युवक की मौत के मामले की न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने आज सुबह घटनास्थल का दौरा किया। श्री सिन्हा ने पीड़ित परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत की। इस दौरान शाहबाद के डीआईजी सत्य प्रकाश, जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया, पुलिस अधीक्षक राज सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में प्रचंड गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, पटना, नालंदा और गया समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं विभाग ने राज्य के उत्तरी भागों में अधिकांश स्थानों पर तेज हवा के साथ

0: बारिश का अलर्ट जारी किया है। अररिया जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के पास पुलिस ने जांच अभियान के दौरान 47 लीटर विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बेगूसराय जिले के चकिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पिछले दिनों हुए दुष्कर्म की घटना के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सगीर से इलाकाई खबरें सुनिए। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 25 जून 1975 को लगाई गई इमरजेंसी की याद दिलाता है, जब मुल्क में आईनी हकूक और जमहूरी कदरों को पामाल किया गया था। इस मौके पर मुल्क और रियासत में कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इमरजेंसी आयन पर सीधा हमला था। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने इमरजेंसी के दौरान जमहूरियत की हिफाजत करने वाले सेनानियों को याद किया। इधर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से पटना के ज्ञान भवन में मुनक़िद प्रोग्राम में वज़ीर आला सम्राट चौधरी और मरकजी वजीर JP नड्डा शामिल हुए। इस दौरान 450 JP सेनानियों को एजाज से नवाजा गया। इधर BJP डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और जयंती के मौके पर 6 जुलाई तक पूरी रियासत में मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद करेगी। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने संविधान हत्या दिवस पर इमरजेंसी की मुखालफत करने वाले सेनानियों को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी जमहूरियत की तारीख में इमरजेंसी एक सियाह बाब था, जब इक्तदार के नशे में जमहूरी इदारों, इजहार राय की आज़ादी और शहरी हकूक को संगीन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला ने कहा कि जमहूरियत की हिफाजत, आयन का वक़ार और आम लोगों की आवाज़ की ताकत को हमेशा सबसे ऊपर रखना ही जमहूरियत के सेनानियों के तईं खिराज अकीदत है। वहीं इमरजेंसी मुखालिफ तहरीक के सरफहरिस्त लीडरों में से एक सिक्किम के साबिक गवर्नर गंगा प्रसाद ने कहा कि पटना वाकई उनकी रहायशगाह 1975 में तहरीक का अहम मरकज था, जहां जमहूरियत की बहाली के लिए हिकमत अमली बनाई जाती थी। आकाशवाणी से बातचीत में जनाब प्रसाद ने कहा कि इमरजेंसी जमहूरियत और शहरियों के हकूक पर बड़ा हमला था। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान इजहार राय की आज़ादी पर काबू पाया गया और अपोजिशन के लीडरों और कारकुनों को जेल में बंद कर दिया गया। जनता दल यू के कौमी कारगुजार सदर संजय झा ने कहा कि 25 जून हिंदुस्तानी जमहूरियत की तारीख में सबसे काला दिन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जरिए लगाई गई इमरजेंसी के दौरान अपोजिशन के लीडरों को जेल में बंद कर दिया गया था और मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी लगा दी गई थी। जनाब झा ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी मुखालिफ तहरीक की क्यादत की थी और साबिक वज़ीर आला नीतीश कुमार भी उस तहरीक के दौरान जेल में रहे थे। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना इलाके के तहत बिलौटी गांव में गुज़श्ता दिनों हुए मुबैना इनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत के मामले की अदालती जाँच शुरू कर दी गई है। पटना हाईकोर्ट के सुबुकदोश जज विनोद कुमार सिन्हा की सदारत में तश्कील कमीशन ने आज सुबह जाय वारदात का दौरा किया। जनाब सिन्हा ने मुतासरा खानदान के लोगों और गांव वालों से बात की। इस दौरान शाहबाद के DIG सत्य प्रकाश, जिला मजिस्ट्रेट तनय सुल्तानिया, पुलिस सुपरिटेंडेंट राज समेत दिगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। राजधानी पटना समेत रियासत के जनूब मगरिब और जनूब वस्त हिस्सों में शदीद गर्मी से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हुई है। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक कई मकामात पर दर्ज हरारत 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ रियासत का सबसे गर्म मुकाम रहा, जहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने अपनी पेशनगोई में कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, पटना, नालंदा और गया समेत रियासत के जनूब मगरिब और जनूब वस्त हिस्सों में लू की हालत बनी रहेगी। वहीं महकमा ने रियासत के शुमाली हिस्सों में बेशतर मकामात पर तेज़ हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। अररिया जिले के फुलकाहा थाना इलाके के तहत भारत नेपाल सरहद के पास पुलिस ने जांच मुहिम के दौरान 47 लीटर गैर मुल्की शराब के साथ

0: दो स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय जिले के चकिया थाना इलाके के तहत गुज़श्ता दिनों हुए आबरूरेजी के मामले में पुलिस ने दो मजीद मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। कर्मचारी चयन आयोग SSC 10+2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के कुल 3,522 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के कुल 100 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से दूर संचार, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, कंप्यूटर, विद्युत, सूचना प्रौद्योगिकी में BE/BTEC उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 5 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bsnl.co.in से प्राप्त किया जा सकता है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर PO के कुल 1500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार दो शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और मैनचेस्टर में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चो में सिमटा जग किंतु विकल प्राण बिहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
3: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
4: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
5: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
4: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू।

0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की यह बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
1: The global south should be enabled.
2: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जेकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार

0: रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है।
1: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके बहुत सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह

0: सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
1: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

फिल्म बाबर का गीत था, आवाज सुधा मल्होत्रा की थी, गीत को साहिर लुधियानवी ने लिखा था और तर्ज बनाई थी रोशन ने।

ये स्वर है मुकेश और सुमन कल्याणपुर की फिल्म का नाम है मेरा घर मेरे बच्चे। रचनाकार हजरत जयपुरी, संगीतकार सरदार मलिक।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए प्रेम धवन का लिखा गीत, हंसराज बहल का संगीत, आवाज मुकेश की, और ये फिल्म है मुड़ मुड़ के नातिक।

0: रुको रुको हवा।
1: कार्यक्रम का अगला गीत कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में शमीम जयपुरी का लिखा हुआ, आवाज़ एक बार फिर मुकेश की, और ये फिल्म का नाम है दिल भी तेरा हम भी तेरे।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। वल्लाह क्या बात है। जी हाँ, यह है फिल्म का नाम जिसका दो गाना अब आप सुनेंगे, स्वर आशा भोसले और मोहम्मद रफी के। इस गीत को प्रेम धवन ने लिखा है और संगीत रोशन का है।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट

0: ये समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रवि के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन की रचना, स्वर हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के, फिल्म का नाम है अपना घर।

0: किसी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: की सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी आपको और सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: हाल बहुत अच्छे हैं।
1: देखिए बारिश की बूंदें पड़ गई है मुंबई के सरजमी पर और
2: मुंबई के अलावा और भी बहुत सारी जगह है जहाँ छुटपुट बारिश की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन बारिश के बाद जब फिर से धूप निकलती है ना तो बारिश का मजाक किरकिरा कर देती है क्योंकि उमस बहुत ज्यादा हो जाती है।
1: बस जब बारिश होती है तो हमें इंतजार रहता है कि नदियां भर जाए, तालाब झरने और कलकल बहने लगे, मतलब ये लगता है कि पानी पानी चारों तरफ दिखाई पड़े। और जब ज्यादा बरसात होती है तो हम परेशान भी होने लगते हैं, तो बस यही उम्मीद करते हैं कि इस बार संतुलित बारिश हो। और आज विशेष तौर पर हम अपने श्रोताओं को याद दिलाना चाह रहे हैं कि आज एक विशेष दिन है, नाविक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस।
2: जी,
1: तो ये वैसे हमें रोज इस बात का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इस दिवस के बहाने हम लोगों को आगाह करते हैं कि जो हमारे मछुआरे हैं, नदियों में जाते हैं, समंदर में जाते हैं, मछलियां पकड़ने जाते हैं
2: जी,
1: तो उनकी सुरक्षा कितनी जरूरी है, कितनी सबकी क्या जिम्मेदारी बनती है, घर परिवार वालों की, समाज की। और दूसरा कि जब आप इस नौका विहार के लिए जाएं और नाविक का काम, मतलब मछुआरों का काम करने जाते हैं, तो पहली शर्त यह कि तैरना आना चाहिए, कि बिना तैरे नदी में छलांग न लगाएं कि हम
2: वैसे भी
1: हैं।
2: जब हम किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं जहां नदी, झील, झरने ऐसी चीजें होती हैं, और वहां पर जब हम नाव की सैर के लिए जाते हैं तो सुरक्षा के तौर पर हमें एक जैकेट दिया जाता है पहनने के लिए कि अगर कभी कुछ दुर्घटना हो तो वहां आप सुरक्षित रहें। लेकिन उसके अलावा एक नाविक इस तरह का मौजूद हमेशा रहता है कि अगर कोई दुर्घटना हो तो अधिकतम लोगों को वो बचा कर ला सके। और बहुत ही उनकी कठिन जिंदगी होती है, उनके बारे में लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए जागरूकता हो, इसीलिए इस तरह के खास दिन जो है वो हम मनाते हैं।
1: और कई बार क्या होता है कि जब नौका विहार के लिए लोग निकलते हैं तो बहुत सारे जो नाविक होते हैं वो नाव पर जहां पर ये सुरक्षा जैकेट नहीं देते हैं
2: जी,
1: कम होते, दो चार होते हैं और 15-20 लोगों को बिठा देते हैं
2: जी,
1: तो ये बहुत खतरनाक होता है। जो लोग बैठते हैं कहीं पैसों की बचत की।
3: जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता का महीना है, इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
4: नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम कुमारी पूनम हॉस्पिटल सासाराम रोहतास बिहार से बोल रही हूँ। हर दंपति का सपना एक खुशहाल परिवार बसाने का होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी यानी बंजापन कई दंपति का यह सपना साकार होने नहीं देता। इनफर्टिलिटी का अर्थ है एक बरस तक नियमित प्रयासों के बावजूद गर्भधारण ना होना। यह हर 6 में से एक दंपति को प्रभावित करता है। याद रखें, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला नहीं पुरुष भी हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव से लेकर मॉडर्न प्रभावी उपचार जैसे IVF तक उपलब्ध है। अब समय है कि हम इस विषय पर बिना संकोच खुलकर बात करें और डॉक्टर

0: इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर संध्या सिंह, संध्या रंजन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रोजा रोड, सासाराम से बोल रही हूँ। हर दंपति का एक सपना है खुशहाल परिवार बसाने का, लेकिन इनफर्टिलिटी यानी बांझपन कई दंपति का यह सपना साकार नहीं होने देता। इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का अर्थ है एक वर्ष तक नियमित प्रयासों के बाद भी गर्भधारण ना होना। यह हर 6 में से एक दंपति को प्रभावित करता है। याद रखें, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला नहीं पुरुष भी हो सकते हैं, इसलिए इस विषय पर बिना संकोच खुलकर बात करें और उचित परामर्श लें। उचित मार्गदर्शन, ससमय उपचार, जीवन शैली में बदलाव सार्थक हैं एवं मॉडर्न ट्रीटमेंट जैसे IVF तक उपलब्ध हैं। इसलिए बिना संकोच डॉक्टर से उचित परामर्श लें और अपने सपने को साकार करें। धन्यवाद।
0: गुफिक बायोसाइंसेज के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी

0: ममता जी, आज हम जिनकी कहानी की बात कर रहे हैं पद्मश्री के अंतर्गत, ये हैं रमीला बेन राय सिंह भाई, जिनको साल 2022 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा जा चुका है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार बिना स्वार्थ के ये अपनी सेवाएं देती आ रही हैं।
1: और बता दें कि सामाजिक कार्यों में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया और 1 जून 1969 को गुजरात में उनका जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा 10वीं कक्षा के आगे तो नहीं हो पाई और उनका जहां जन्म हुआ था समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए तो लोग जाने जाते हैं वहां के, लेकिन संसाधनों तक उसकी पहुंच सीमित है, इसलिए उनकी औपचारिक शिक्षा जल्दी ही समाप्त हो गई। ऐसा समुदाय जहां लड़कियों के लिए शिक्षा अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों और कृषि कार्यों के आगे उपेक्षित थी।
0: बिल्कुल, और रमीला बेन ज्ञान की प्यास उनमें थी और कुछ कर दिखाने का जुनून ये भी उनका कम नहीं हुआ। मतलब जिस जहां वो जन्मी पली बड़ी, माहौल चाहे जैसा भी था, लेकिन उनके जुनून को वो रोक नहीं पाया और इसी बात ने उनके जीवन को उद्देश्य दिया और दिशा भी दी। भले ही वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई थी, लेकिन उनके जीवन के जो अनुभव थे उन्होंने उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बनाया, एक दयालु और दृढ़ निश्चय और परिवर्तन लाने वाली महिला के रूप में उन्हें ढाल दिया। रमीला बेन के जीवन जो था वो बहुत सारी बाधाओं से भरा हुआ था। उनके गांव में उचित शौचालयों का अभाव था, खुले में शौच करने जाना दैनिक जीवन की एक वास्तविकता थी और खास तौर पे अगर महिलाओं की बात करें तो बच्चों के लिए भी बात करें, जो छोटी बच्चियां थीं उनके लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकते थे। इस चीज से महिलाओं को शौच के लिए रात होने का इंतजार करना पड़ता था और इससे उनकी सुरक्षा और गरिमा ये भी खतरे में पड़ जाती थी।
1: और इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं थी ग्रामीणों को, जो सदियों पुरानी प्रथाओं को छोड़ने के लिए मनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो प्रथाओं में इतने जकड़े होते हैं कि उससे निकालना मुश्किल काम होता है। सबके विरोध का सामना करते हुए उन्हें एक एक परिवार का विश्वास भी जीतना था। उस पर उनकी आर्थिक तंगी ने उनकी चुनौतियों को और बढ़ा दिया, जिससे सामग्री जुटाना और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, जो कि वो कर रही थी।
0: और वो अपने इस काम के लिए सरकारी सहायता भी चाहती थी, लेकिन यहां भी बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, क्योंकि कुछ लोग कई बार ऐसे होते हैं ना जो नहीं चाहते हैं कि ये महिला काम करे। और ये सारी जटिलताएं, इनसे निपटने के लिए बहुत सारा धैर्य और दृढ़ता की जरूरत उन्हें थी। कितनी भी उनकी यात्रा जो चल रही थी उसमें बाधाएं आती गईं, लेकिन वो अडिग रही और अपने अटूट हौसले के साथ में आगे बढ़ती रही।
1: और रमीला बेन के गांव में परिवर्तन लाने के लक्ष्य की शुरुआत हो चुकी थी। अपने गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले स्वच्छता की समस्या को सुलझाने का प्रयास शुरू किया। अपनी कोशिशों से उन्होंने लोगों को एकजुट किया और 700 से ज्यादा स्वच्छता इकाइयां बनवाई, जिससे कुछ गांव खुले में शौच मुक्त हो गए।
0: लेकिन उन्हें बुनियादी ढांचा तैयार करने के साथ साथ लोगों में जागरूकता भी बढ़ानी थी। जैसे आपने कहा ना कि भाई अपनी पुरानी जो प्रथाएं या रूढ़ियां हैं लोग उनको छोड़ने को तैयार नहीं होते, तो उन्हें खुले में शौच के संबंध में जो जोखिम होते हैं उन पर प्रकाश डालने के लिए बहुत सारे शैक्षिक अभियान उन्होंने चलाए, जिनमें बहुत सरल और प्रभावशाली संदेश होते थे जिनके जरिए वो ग्रामीणों को समझाती थी तो बात उनके समझ में भी आ जाती थी।
1: और यही नहीं, उन्होंने सामुदायिक बैठकें आयोजित की, स्थानीय नेताओं से संपर्क किया और घर घर जाकर लोगों से निजी तौर पर बातचीत की इस संदर्भ में। और उनका काम केवल स्वच्छता तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण में आर्थिक स्वतंत्रता की शक्ति को पहचानते हुए बहुत से स्वयं सहायता समूह स्थापित किए, जिनमें महिलाओं को एक साथ लाकर सामूहिक रूप से बचत करने और छोटे छोटे ऋण लेने और छोटे व्यवसाय शुरू करने में सहायता दी। और ये सहायता समूह ग्रामीण आबादी और सरकारी योजनाओं को सीधे पहुंचाने का माध्यम भी बने।
0: इन सहायता समूहों ने महिलाओं को सिलाई और हस्तशिल्प से लेकर लघु कृषि तक सूक्ष्म उद्योग चलाने के ज्ञान भी दिया। और रमीला बेन ने विधवा कल्याण के लिए भी बहुत सारा काम किया, जिससे महिलाओं को सहायता मिली और वित्तीय सहायता भी मिलती रही। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्होंने घरेलू आय में सुधार किया और महिलाओं में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को भाव, जो ये भाव था उसको बढ़ावा दिया।
1: रमीला बेन के प्रयास से गांव में जो स्वच्छता की कमी थी, स्वच्छता की ओर लोग जागरूक हुए और जिससे स्वास्थ्य समस्याएं जो बहुत ज्यादा थी कम हुई और जो धन का अभाव था वो

0: भी बढ़ा क्योंकि निजी रूप से उन्होंने आर्थिक संपन्नता की ओर उन्मुख किया लोगों को, ग्रामीण लोगों को, और उनके अथक प्रयास के से आसपास के गांव भी जैसे खुले शौच में जाने की जो प्रथा थी उससे मुक्त हुए, और जो बीमारियां थीं निश्चित रूप से उससे कमतर हुई बीमारियां, और महिलाओं को सम्मान और निजता का अधिकार भी वापस मिला क्योंकि अब उन्हें अंधेरे में खेतों में जाने की जरूरत नहीं थी।
1: और पहले घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रहने वाली जो महिलाएं थीं, अब वो खुद को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उद्यमी और वित्तीय निर्णय लेने वाली वो बन रही थी। सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ रही थी, परिवारों तक उनके लाभ भी पहुंचने लगे थे। ये वो लाभ थे जो पहले इनके बारे में जानकारी भी नहीं थी उन लोगों को, और इन गाँवों में नए सिरे से सम्मान और आशा की भावना जागृत हुई। इन गाँवों के बच्चे, खासतौर पर लड़कियाँ, अब बिना डर के अपनी शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित कर पा रही थी।
0: बिल्कुल सही बात है। रमीलाबेन गुजरात में एक समाज सेविका के रूप में उभरी और उनका कहना था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, और उनकी सेवा भाव और मेहनत को देखते हुए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। 2002 में पद्मश्री के अलावा उन्हें स्वच्छ भारत अभियान में उत्कृष्ट योगदान के लिए,
1: ममता जी मैं यहाँ करेक्शन करना चाहूंगी, 2022 में उन्हें मिला।
0: 2022 बिल्कुल सही कहा आपने, और 2017 में भी उन्हें पुरस्कृत किया गया स्वच्छ शक्ति पुरस्कार से, और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें नारी तू नारायणी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और उनका नाम दृढ़ता और बदलाव का पर्याय बन गया।
1: और उनकी ये जो कहानी थी, जो कार्य उन्होंने किए, वो बहुत सारी महिलाओं को के लिए आगे बढ़कर अपने जीवन की बागडोर संभालने के लिए प्रेरित करते थे। बहुत सारे गांवों को स्वच्छ और सशक्त बनाने के लिए जो उनका जुनून था, इसने उन्हें पहचान भी दिलाई और सम्मान भी दिलाया। और रमीलाबेन अब तक गुजरात के करीब करीब 700 से ज़्यादा शौचालय वहाँ पर वो बनवा चुकी हैं या मदद की है उन्होंने, हम ऐसा कह सकते हैं। और उनकी कहानी अनगिनत लोगों को प्रेरित करती है और ये साबित करती है कि एक बदलाव छोटा से छोटा कदम भी अगर है, अगर अटूट संकल्प है, तो वो उसी से शुरुआत उसकी होती है।
0: बिल्कुल। अब यहाँ पर एक गाना सुनवाते हैं सखियों और सखाओं को।

0: चंचल जी, देखिए शादी ब्याह केवल दो लोगों का मिलना नहीं होता, मिलन नहीं होता, बल्कि बिछड़े हुए रिश्तों और परिवारों को फिर से जोड़ने का सुंदर अवसर भी होता है। कहा जाता है कि समाज के दो परिवार का मिलन होता है। घर में जब शादी का माहौल होता है तो चारों तरफ रोशनी, संगीत और खुशियों की गूंज छाई रहती है। इससे ऐसे में जब रिश्तेदारों का आगमन होता है, जब झुंड के झुंड रिश्तेदार आते हैं कि वो फलाने वाली बुआ आ रही हैं, फलानी चाची आ रही हैं, फलानी जगह
1: कोई मतवाला आया मेरे द्वारे ही होता है।
0: और ये भी कहा जाता है कि वो जैसे मड़वा वाली भाभी, पुरवा वाली भाभी और वो प्रतापगढ़ वाली, ऐसे ऐसे जगह जयपुर वाली, तो ये बड़ा
1: जयपुर वाली चाची, आगरा वाले ताऊजी।
0: कई बार तो भाभी और चाची का वो न कह के बल्कि सीधे सीधे वो जयपुर वाली आ रही है, देखिए ना राजस्थान वाली आ रही, तो उससे भी क्लियर हो जाता है कि कौन आ रहे हैं। तो ये जो शादी ब्याह में जमावड़ा होता है, इसी का आनंद अलग होता है।
1: और एक बात और ममता जी, आजकल सिर्फ शादी ब्याह ही रह गए हैं जहां हम अपने पुराने रिश्तेदारों से मिलते हैं। यूं ऑनलाइन बात करना, फोन पर बात करना, और एक जब इस तरह से हम मिलते हैं बहुत लंबे समय के बाद, आमने सामने से एक दूसरे को देखते हैं, तब उस मुलाकात का मजा बहुत कहते हैं कि अलग होता है। और इसके अलावा पहले हम अपने बहुत दूर दूर के रिश्तेदारों को भी जाना करते थे, लेकिन आजकल ये चीज़ें बड़ी संकुचित होती जा रही हैं। हमारे बच्चे कई बार तो हमारी जो हमारी सगे बहनों को तो जानेंगे, लेकिन अगर मेरी चाचा की लड़की है या मेरे ताऊजी के लड़के हैं तो वो उनको नहीं पहचानते, क्योंकि उनका मिलना जुलना ही बहुत सीमित हो गया है। जब कोई शादी भी हमें जाने की बात आती है तो हम भाई बच्चों की परीक्षाएं हैं, अभी उनके स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनका असाइनमेंट है, इनके चलते बच्चे जा ही नहीं पाते, या बच्चों का भी सोच जिस तरह से हो रही है वो एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से बड़े लोग हर माहौल में एकजुट होकर रह जाते हैं, बच्चे इस बहाने से भी जाना थोड़ा सा,
0: उनको अपना कमरा चाहिए, उनको अपना बाथरूम चाहिए, और उनको अपने खाने पीने की जो टाइमिंग्स है उसी टाइम पे नाश्ता चाहिए, वही दायरा, उसी दायरे में सिमट कर रह गए। और बच्चे पूछते भी हैं कि कौन से वाले मामा, कौन सी वाली मामी, कौन सी वाली चाची, कौन सी वाली बुआ, तो उनको पता ही नहीं है कि फोन पर क्योंकि बात होती है, मिलना जुलना हो ही नहीं पाता। तो शादी के बहाने बच्चों को भी ले जाना चाहिए शादी समारोह में। और पढ़ाई की जहां तक बात है कि पढ़ाई पे विघ्न आता तो किताब कॉपी लेकर जा सकते हैं अगर दूसरे शहर में शादी
1: अगर कोई
0: है तो।
1: बहुत जरूरी ही ऐसा है कि परीक्षाएं ही चल रही हैं जिन्हें आप बिल्कुल अनसुना अनदेखा नहीं कर सकते हैं, तब आप नहीं ले जा रहे हैं बच्चों को तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है फिर भी अपनी सहूलियत या सुविधाओं के वजह से बच्चे मना कर रहे हैं, तो थोड़ा जिद करके बच्चों को जरूर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि एक समय पर आकर बच्चे रिश्तेदारों को पहचानेंगे ही नहीं और वो रिश्ते कहीं आकर सिमट कर रह जाएंगे। उनके लिए रिश्ते का मतलब होगा सिर्फ उनके स्कूल कॉलेज के दोस्त या जहां उनके सहकर्मी हैं वो।
0: अच्छा, अब जरा ये देख लें कि हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं इस बारे में। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि शादी ब्याह त्यौहार किसी पारिवारिक आयोजन के बहाने सगे संबंधियों से मुलाकात का अवसर मिलता है। ऐसी मुलाकातें रिश्तों में अपनापन और मधुरता बढ़ाती हैं। परिवार के लोग एक दूसरे का हालचाल जान पाते हैं, सुख दुख साझा करते हैं और पुराने दिनों की यादें ताजा करते हैं। आज की व्यस्त जीवन शैली में जब सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं तब ऐसे अवसर रिश्तों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। जब इकट्ठे होते हैं फोन पर वो चर्चा कैसे हो सकती है?
1: बिल्कुल।
0: हालांकि कई बार ये होता है कि एक साथ कन्वर्सेशन के लिए कई लोग फोन, मतलब कई फोन एक साथ मिला लिए जाते हैं और बात करते हैं, ग्रुप कॉल होता है, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं आता जो आमने सामने बैठ के छेड़छाड़ करके एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, धौल धप्पा करते हैं। उसमें जो आनंद आता है पुरानी बातें ताजा करते हैं कि फलानी भाभी ने एक बार ये कहा था, और फिर उस पे जो ठहाके लगते हैं जोरदार, और वो ठहाके कमरे में ही नहीं आंगन तक, बरांडे तक गूंजते हैं।
1: बिल्कुल,
0: उसकी
1: बहुत
0: बात
1: छेड़छाड़ होती है और बहुत लंबे लंबे समय के बाद जब अब पुराने रिश्तेदारों से हमारी मुलाकात होती

0: है। और जब हम उनसे उनसे मिलते हैं ना, तो एक बात तो बड़ी कॉमन सी होती है जो हर कोई कहेगा, अरे तुम तो बड़े दिन बाद मिले हो, कितना छोटा सा देखा था तुमको, कितने
1: बड़ा हो
0: बड़े हो
1: गया,
0: गए हो।
1: बड़ा हो गया हमारा बेटा,
0: जी
1: बड़ी हो गई हमारी बिटिया। तो ये सब होता है, और समय का अंतराल कई बार कुछ चीज़ों को विस्मित कर देता है, जो जब आप मेलजोल के साथ वो बातें ताज़ा हो
0: कई बार
1: जाती
0: कुछ
1: हैं।
0: कटाक्ष भी होते हैं, अरे बड़ी दुबली हो गई हो, क्या ससुराल वाले खाने को नहीं देते, अगर थोड़ा वजन बढ़ गया कितना खाती हो भाई, ज्यादा खिलाते हैं ससुराल वाले, तो इस तरह के कटाक्ष
1: ज़्यादा अमीर हो
0: छेड़छाड़।
1: गई हो, ये भी
0: हाँ
1: होता है। अब ज़्यादा बातें ना हो जाए, इसका ख्याल रखते हैं।
0: जी
1: एक गाना सुनवाते हैं।

0: ताजा हो,
1: कई बार कुछ कटाक्ष भी होते हैं, अरे बड़ी दुबली हो गई हो, क्या ससुराल वाले खाने को नहीं देते, अगर थोड़ा वजन बढ़ गया कितना खाती हो भाई, ज्यादा खिलाते हैं ससुराल वाले, तो इस तरह के कटाक्ष,
0: ज्यादा अमीर हो गई हो, ये भी होता है। अब ज्यादा बातें ना हो जाए इसका ख्याल रखते हैं, एक गाना सुनवाते हैं।

0: जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता का महीना है। इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम कुमारी पूनम हॉस्पिटल सासाराम रोहतास बिहार से बोल रही हूँ। हर दंपति का सपना एक खुशहाल परिवार बसाने का होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी यानी बंझापन कई दंपति का यह सपना साकार होने नहीं देता। इनफर्टिलिटी का अर्थ है एक बरस तक नियमित प्रयासों के बावजूद गर्भधारण न होना। यह हर 6 में से एक दंपति को प्रभावित करता है। याद रखें, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला नहीं पुरुष भी हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव से लेकर मॉडर्न प्रभावी उपचार जैसे IVF तक उपलब्ध है। अब समय है कि हम इस विषय पर बिना संकोच खुलकर बात करें और डॉक्टर से उचित मार्गदर्शन लें।
0: गुफिक बायोसाइंसेज के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी

0: जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता का महीना है। इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर संध्या सिंह, संध्या रंजन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रोजा रोड सासाराम से बोल रही हूँ। हर दंपति का एक सपना है खुशहाल परिवार बसाने का, लेकिन इनफर्टिलिटी यानी बांझपन कई दंपति का यह सपना साकार नहीं होने देता। इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का अर्थ है एक वर्ष तक नियमित प्रयासों के बाद भी गर्भधारण ना होना। यह हर 6 में से एक दंपति को प्रभावित करता है। याद रखें, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला नहीं पुरुष भी हो सकते हैं, इसलिए इस विषय पर बिना संकोच खुलकर बात करें और उचित परामर्श लें। उचित मार्गदर्शन, ससमय उपचार, जीवन शैली में बदलाव सार्थक हैं एवं मॉडर्न ट्रीटमेंट जैसे IVF तक उपलब्ध हैं। इसलिए बिना संकोच डॉक्टर से उचित परामर्श लें और अपने सपने को साकार करें। धन्यवाद।
0: गुफिक बायोसाइंसेज के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी

0: भाई ममता जी, शादी ब्याह की बात चल रही थी और एक कमेंट में देखिए क्या लिखा गया है। सालों से दूर रहे कजिन्स, चाचा, ताऊ, मौसा, मौसी एक छत के नीचे आ जाते हैं, जिससे बहुत सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। ढोल, नगाड़े, संगीत, हंसी मजाक के बीच लोग अपनी रोजमर्रा की चिंताओं को बिल्कुल भूल जाते हैं। नई पीढ़ी का परिवार के सदस्यों से, यानी कि बच्चों और बहुओं के साथ पूरे कुनबे से मिलना हो जाता है, अपनी संस्कृति को समझने का मौका मिलता है। दुख में भले ही लोग दूरी बना लें, लेकिन शादी की खुशी हर किसी की कड़वाहट को भुलाकर गले मिलने का अवसर देती है।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी बातें कॉमन है, कई श्रोताओं ने लिखी है, तो वो एडिट करते हुए मैं आगे पढ़ रही हूँ। लिखा है कि इस शादी वाले घर में सभी व्यस्त होते हैं शादी, और उसी व्यस्तता में अपने चचेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई बहन, बुआ, चाचा, मामा का परिवार सभी से मिलना जुलना होता है और सबसे मजा आता है। संगत में पत्तल में बैठ कर खाना खाना और एक दूसरे की खिंचाई करना, और रात में एक रूम में सभी मिलकर गीत गवाई, आधी रात तक गप्पे लड़ाना, फलाने की बेटी और फलाने की बहू और तुम्हारी वो सहेली और तुम्हारा वो दोस्त, आज इस विषय प्रसंग ने परिवार में हुई कितनी शादियों की यादें ताजा कर दी।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह के रंग बिरंगे समारोह केवल उत्सव नहीं होते, बल्कि रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले ऐसे अवसर होते हैं जो हम शादी में जाते ही इसलिए हैं कि सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाए। शादी एक ऐसा माहौल भी होता है जहां पर अपनापन दिखाई देता है। हंसी मजाक में साथ बैठकर भोजन करने का आनंद ही होता है। मेहंदी लगवाना, ढोलक की थापर, बन्ना बन्नी के संगीत की महफिल रिश्तों को मजबूत बना देती है। तो कई बार समारोहों में नई पीढ़ी का परिचय भी अन्य सदस्यों से हो जाता है, जिससे पारिवारिक जुड़ाव बना रहता है।
1: हमारे एक श्रोता ने टिप्पणी भेजी है, लिखा कि बात कुछ साल पुरानी है। हम एक शादी में गए थे, हमारे बगल में एक कपल बैठे हुए थे, उनसे औपचारिक बातें हो रही थी। मेरी बड़ी बहन आई और कहा भाई बहन में दोस्ती हो गई। मैंने पूछा भाई बहन, तब उसने बताया कि ये तो हमारे भाई भाभी हैं, मैं परिवार में छोटी हूं, मेरी मुलाकात उनसे ना के बराबर हुई और मेरी पढ़ाई हॉस्टल में हुई, तो मेरे बचपन का चेहरा और आज का चेहरा, चेहरे में बहुत फर्क आ गया है, इसलिए भाई ने भी मुझे नहीं पहचाना। फिर तो बातों का सिलसिला जारी रहा कि बस ये मुलाकात यादगार बन गई। भाई आज अगर सगे भाई बहन एक दूसरे को नहीं पहचान रहे, ये तो बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि अब तो मोबाइल का भी जमाना है। अगर आपको फुर्सत नहीं तो कम से कम वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देख लें।
0: और कई बार ऐसा होता है कि जिन रिश्तेदारों को हमने बहुत सालों से नहीं देखा, या जो नई बहू आई है, नए जवाई घर में आए हैं, जिनसे हम नहीं मिले हैं, लेकिन ऑनलाइन हमने उनके चेहरे देखे हुए होते हैं, तो जब हम मिलते हैं सालों के बाद भी, तो कम से कम उन चेहरों को पहचान लेते हैं। एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि आज की भागदौड़ भरे जिंदगी में किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि लोग अलग से समय निकालकर एक दूसरे से मिल सकें और उनका हालचाल बताएं या दूसरों की सुने। शादी एक ऐसा समारोह है जिसमें सब मिलकर एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते हैं, अपनी व्यस्तता को भी बता देते हैं। शादी एक बहाना बन जाती है जो सालों से नहीं मिले होते हैं उनको मिला देती है।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि बिल्कुल अभी हमने जो बात कही थी कि किसी को चाय दे दी गई, उसके जवाब में लिखा है, अभी अभी ये टिप्पणी आई है, 6 मिनट पहले इन्होंने लिखा है कि आपने किसी एक को पहले चाय दे दी तो तुरंत दूसरे का मुंह फूल जाता था और उसका बहुत ज्यादा उसकी इज्जत हो रही तो मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये भी लोग कहते हैं। और बेटे की जब बारात चली जाती थी तो घर की औरतें रात जागरण करती हैं और मड़वे में हर तरह का स्वांग रच के डोमकच जलवा करती हैं, उसको बहुत जगहों पर महलूल भी कहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सही कहा, सब बहनों का मिलना, प्यारी सी मस्ती, थोड़ी सी लड़ाई, बताया नहीं तो ये पहनने

0: है, हमारे पास भी ऐसा ही था, हम भी पहन लेते, या फिर सबका एक कलर के कपड़े लेना और फिर किसी का कुछ घर में छूट जाना, सब कुछ बहुत मजेदार होता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर जयपुर में तो सखी सहेली की मौसम की बात हुई, और एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये मुद्दा उठाया, आज मुझे तो झपकी सी आ गई थी लेकिन अचानक नींद खुली और ये बातें सुनी तो बहुत अच्छा लगा और बातें हम सुनने लगे। एक श्रोता ने लिखा है कि फरवरी में मेरी भतीजी की शादी थी, हम काका पापा के 8 भाई और 8 बहनों में बड़े भाई की लड़की की शादी थी, मतलब हमारी पीढ़ी की पहली शादी। कई साल बाद सब इकट्ठा हुए, बहुत मजे किए, डांस किया, बाद में फेसबुक इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर सब ने इतने फोटो वीडियो शेयर किए कि सब बोलने लगे आजकल तो आपका परिवार फेसबुक पर छाया हुआ है।
1: इसी तरह से आज ये विषय ऐसा है कि इसके कमेंट भी बहुत सारे छाए हुए हैं। हमने कोशिश की हम बहुत सारे संदेशों को शामिल कर सकें, लेकिन जिनके नहीं हो सके उनसे माफी मांगते हुए अब सुन लेते हैं ये गीत।

0: बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। और बहुत सारे रिश्तेदार भी ये बात कहते हैं, जब शादी विवाह के रंग बिरंगे समारोह केवल उत्सव नहीं होते। ये हमारी एक सखी ने लिख भेजा है, बल्कि रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले ऐसे अवसर होते हैं जहां जाने पर सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाती है। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह की बातें लिखी हैं।
1: और अब हम बात करते हैं कि अगर आपने घर में कुछ छोटी सी बगिया बनाई है और पौधों पर कीट लग जाते हैं तो उन्हें बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। इस पर हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे उपाय बताए हैं कि बारिश के मौसम में ये होता ही है। इसके लिए कुछ उपाय इस तरह से हैं कि नीम के तेल की 3-4 बूंदें में 3-4 बूंदें शैम्पू की भी डाल लें और अब इसे पानी में घुल जाए इस तरह से इसका घोल बना लें और ये मिक्सर शाम के समय पूरे पौधों पर हर तरफ से स्प्रे कर दीजिए। खासतौर पर पत्तों के नीचे वाले हिस्से पर करना है क्योंकि कीट और अंडे वहीं पर ज़्यादा पनपते हैं। और अगर नीम का तेल ना मिले तो हल्दी के पानी को भी मिलाकर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जली हुई लकड़ी की जो राख होती है उसे अगर पत्तों पर छिड़का जाए तो उससे भी कीड़े नहीं आते हैं। नीम के हरे पत्तों को चलाकर उसका धुआं करने से भी कीड़ों से बचाव हो जाता है। बाजार में या ऑनलाइन इस तरह की गम कीबोर्ड मिलते हैं, 2-4 वो कई किसी जगह पर टांग देने से कीड़े उस पर चिपक जाते हैं, लेकिन कई लोग कीट को मारना नहीं चाहते तो वो इस उपाय को ना करें।
0: और लहसुन अदरक और हरी मिर्च का घोल बना ले, मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का घोल बनाकर उसे छानकर जैविक कीटनाशक छिड़काव कर सकते हैं। ये प्राकृतिक रूप से कीटों को दूर रखता है और पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और समय पर पौधों की सिंचाई करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी न दें, उनमें संतुलित खाद का प्रयोग करें ताकि पौधे स्वस्थ रहें।
1: और अगर पौधे बहुत छोटे हैं तो उनके पीछे छुपे हुए जो कीड़े और अंडे होते हैं उनको हाथ से ही हटा देना चाहिए, ऐसा एक कमेंट में लिखा गया है। और भौतिक बाधा कीड़ों तक पहुंचने से रोकने के लिए महीन जाली का उपयोग किया जाता है। चिपचिपे जाल, पीले रंग के चिपचिपे पौधे
0: पीली स्टिकी ट्रैप लगाएं, हाँ। मेरे ख्याल से ये कहना चाहते हैं ताकि वो जैसे मक्खी है, मधुमक्खी है, तो जो उड़ने वाले कीट को आकर्षित करने के लिए किया जाता है ताकि वो पकड़ने में मदद मिले।
1: इसके अलावा पेस्टिसाइड का उपयोग भी कर सकते हैं या कीटनाशक जिसे हम कहते हैं। ये हमारे श्रोताओं ने हम तक सलाह पहुंचाई है। और हम अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की अगर बात करें ममता जी, तो 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी और पहला अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून 2011 को मनाया गया था। दुनिया का लगभग 80-90% जो भी व्यापार होता है वो समुद्र के रास्ते से ही होता है। नाविक बहुत लंबे समय तक अपने परिवारों से दूर रहकर बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और जो सप्लाई चेन है जिसे हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला कहते हैं वो सुचारू रूप से चलती रहे, इसमें इन नाविकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और हमारे दैनिक जीवन में जितनी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, खासतौर पर जो भी वस्तुएँ हैं, भोजन है, ईंधन है, वो सब हमें इन्हीं समुद्री रास्तों से नाविकों के द्वारा पहुँचाया जाता है।
0: बिल्कुल, और समुद्र में तेल की खोज की जाती है, वो उनमें भी इनकी अहम भूमिका होती है। और कई बार समुद्र में जब तूफान आता है, सीरफ जिसे कहते हैं, तो कई नाविक दूर दूर तक समुद्र के बीचों बीच चले जाते हैं तो उनकी जान को भी बहुत खतरा होता है। वो मुसीबत से लड़ते हुए कई बार घर वालों को पता नहीं चलता है, कोई नेटवर्क नहीं होता है, मोबाइल फोन वहां तक नहीं पहुंचता है, तो उस समय घर वालों की चिंता देखते ही बनती है। 3-3, 4-4 दिन, कई बार महीनों तक वो तूफान में फंसे रहते हैं, लेकिन जब वो घर लौट आते हैं तो घर वालों की चिंता खत्म होती है।
1: बिल्कुल, इसीलिए उनके क्या अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा किस तरह हो, उनका कल किस तरह से बेहतर किया जाए, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तरह के जो भी खास दिन हैं वो आयोजित किए जाते हैं। और इस दिन का उद्देश्य भी यही है कि नाविकों के योगदान के लिए उन्हें समाज में सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए और समुद्री उद्योग को बेहतर हो सके इसे बढ़ावा देने के लिए ये दिन हम मना रहे हैं।
0: और अब सुनते हैं प्रोग्राम का ये आखिरी गाना।

0: था आरजू फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज थी। और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम जिसमें आप श्रोता कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं और अपने विचार रखते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही विचार आप श्रोताओं के द्वारा विविध भारती को लेकर, विविध भारती के कार्यक्रमों को लेकर। तो सुनते हैं आज का हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी। नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम है जी कल्लू मनियार, चिड़ी वाला।
0: कल्लू जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: रामपुर मनियारा और जी जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश।
0: अच्छी बात है, अपने बारे में बताइए, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया, शुक्र है मालिक का, आपकी दुआएं हैं। मेरा चूड़ी का काम है, मैं चूड़ी जो है साइकिल पर ले जाता हूँ।
0: अच्छा, साइकिल पर चूड़ियाँ लगा के आप बेचने जाते हैं?
1: जी हाँ, गाँव में जो रामपुर के चारों तरफ गाँव है ना, उनमें जाता हूँ।
0: तो कैसे बांधते हैं चूड़ियों को साइकिल पे? गिरने का डर नहीं रहता है? चूड़ियाँ टूट जाएंगी तो?
1: अरे बांध के ले जाता हूँ मैं चूड़ी को बहुत अच्छी तरीके से।
0: अच्छा, फिर घर घर फेरी लगाते हैं?
1: अभी फिर मैं गांव में जाता हूँ, फिर बच्चे खुद ही बता दें कल्लू ताऊ जी आ रहे हैं, चूड़ी पहन लो। अच्छा। तो घर वाले बुला ले रहे हैं फिर।
0: अरे वाह, यानी आप बहुत फेमस हैं कल्लू ताऊ जी के नाम से ना?
1: जी।
0: अच्छी बात है।
1: चूड़ी बेचता हूँ कांच की।
0: कांच की चूड़ियाँ बेचते हैं, तो महिलाएं किस तरह की चूड़ियाँ ज्यादा पसंद करती, कौन सा रंग ज्यादा लेती हैं?
1: मैरून रंग ज्यादा पसंद करती हैं जी।
0: मैरून रंग पसंद करती हैं, चमकदार?
1: हाँ जी, मैरून रंग ज्यादा पसंद करती हैं, और रंग भी तो काफी हैं वैसे, बाकी ज्यादातर मैरून चलता है।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: और कांच की चूड़ी है, शुभ मानते हैं इसको, कांच को?
0: बिल्कुल, हमारे यहाँ सुहाग का प्रतीक मानते हैं चूड़ियों को, कांच की चूड़ियों को पहना जाता है।
1: जब मैं चूड़ी पहना देता हूँ तो नुचकारती है फिर चूड़ी, फेंटर नुचकारती है मेरा औरतें, ये सुहाग की चीज है ना
0: जी। तो एक चूड़ी ज्यादा देते हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल, दो देता हूँ जी मैं तो।
0: अच्छा, दो दे देते हैं आप?
1: दो जो देता हूँ, जोड़ा ही भगवान तुम्हारा बनाओ रखे, जोड़ा ही मैं दे रहा।
0: अरे वाह, चलिए कल्लू जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बताइए अपनी पसंद का गाना।
1: फिल्म का नाम है जी आपकी परछाइयाँ, और आवाज है रफी की, गाने के बोले ये है तुमन्ना तेरे घर के सामने।
0: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी मैं जीतन यादव बड़ा गांव जिला गुना मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैम।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, दुकान पे बैठा हूँ, आपके नंबर मिला रहा था।
0: अच्छा, क्या दुकान है आपकी, किस तरह की?
1: किराने की दुकान है मैम।
0: अच्छा, सभी सामान रखते हैं?
1: जी मैम।
0: तो सुबह खुल जाती होगी कितने बजे, 8 बजे या 10 बजे?
1: 7 बजे खुल जाती है, रात के 10 बजे तक चलती है।
0: तो लंच में घर जाते होंगे या खाना साथ लेके आते हैं?
1: नहीं नहीं मैम, दुकान घर पे ही है और घर पे ही बैठा रहता हूँ, घर पे ही रेडियो है, विविध भारती का साथ है।
0: अरे वाह, फिर तो आपके मजे हैं कि जब हुआ एक बार घर के अंदर चले गए, खाना वाना खाया, पानी वानी पी, चाय वाय पी और आ गए, है ना?
1: जी जी।
0: मतलब घर के अंदर ही है तो और भी आराम हो गया है, घर के अन्य लोग भी आकर दुकान को संभाल लेते होंगे।
1: जी जी, और आने लोग आते हैं और विविध भारती को सुनते हैं और खासकर हेलो फरमाइश सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है।
0: आपकी दुकान पे आके सुनते हैं श्रोता?
1: जी।
0: तो उन्हें बताइए कि मोबाइल पे न्यूज ऑन AIR ऐप जो है डाउनलोड कर लें और सुने।
1: जी मोबाइल पे सुनते हैं, पर दुकान पे ग्राहक आते हैं भी सुन के जाते हैं।
0: अच्छा लगता है हम लोगों को कि हमारे श्रोता इतनी शिद्दत के साथ हमें सुनते हैं। कैसा लगता है आप सबको हेलो फरमाइश कार्यक्रम?
1: अच्छा लगता है।
0: क्या अच्छा लगता है इसमें?
1: दूसरों को श्रोताओं को मौका मिल जाता है बातचीत करने का और गाने अच्छे लगते हैं, सबसे बड़ी बात।
0: बिल्कुल सही कहा, बातचीत का मौका मिलता है और आपकी पसंद के गाने भी इसमें आते हैं, है ना?
1: जी।
0: तो चलिए आज आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज मजबूर फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ, रिम झिम बरसता जी बाहर पानी अंदर जी आग लगी है, मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में गीत है।
0: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार मंदाकिनी जी।
0: नमस्कार। अरे आपको पता है मंदाकिनी है इधर?
1: जी मैम आपकी आवाज से पहचान जाते हैं।
0: अरे तो हमारे कार्यक्रम बहुत शिद्दत से सुनते हैं, गहराई से सुनते हैं ना?
1: जी मैम।
0: नाम बताइए अपना।
1: जी मैम मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, जिला महोबा उत्तर प्रदेश से।
0: कैसे हैं सुनील जी?
1: बहुत बढ़िया है मैम।
0: अच्छा
1: आप कैसे हो?
0: मैं भी अच्छी हूँ। अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप सुनील जी?
1: जी मैम अभी तो हम भट्टों में काम करते थे राजस्थान में।
0: अच्छा राजस्थान में कहाँ?
1: जी भरतपुर में करते थे मैम।
0: और अब क्या कर रहे हैं इन दिनों?
1: अभी मैम छुट्टी हुई तो अभी घर आए, दो चार दिन हुए घर आए हुए अभी।
0: अच्छा तो भरतपुर में कैसा लगता है आपको, कैसा माहौल है वहाँ का?
1: जी मैम बढ़िया माहौल है, अच्छा लगता है वहाँ पे रहना, काफी साल हो गए अभी जाते जाते।
0: तो आपका परिवार कहाँ रहता है, महुआ में?
1: जी मैम।
0: तो आते जाते रहते होंगे ना, दिक्कत तो होती होगी अप डाउन करने से?
1: जी मैम दिक्कत तो होती है, अब ऐसा है कि 8 महीनों के लिए चले जाते हैं, तो 8 महीना वहाँ पे लगातार काम करना होता है भट्टों पे, तो 8 महीने। अब फिर आपके प्रोग्राम तो हम 1 बजे रास्ते ही सुनना चालू कर देते थे।
0: अच्छा आपको टाइम मिल जाता था?
1: टाइम तो इतना रहता है कि हमको 1 बजे रात को उठना पड़ता था काम के लिए, तो आपका प्रोग्राम 1 बजे रात से ही चालू हो जाता था, फिर सुबह 11 बजे तक, फिर यहाँ पर 4 बजे से आपका प्रोग्राम चालू रहता था करीब 10 बजे तक रात को।
0: क्या बात है, इतना प्यार है आपको विविध भारती से कि रात को 1 बजे से कार्यक्रम सुनना शुरू कर देते हैं।
1: जी मैम आपका ये सखी सहेली का टेलीकास्ट दोबारा होता है ना 3 बजे रात को?
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो रात में सुनना बहुत अच्छा लगता है आपका सखी सहेली कार्यक्रम।
0: अच्छी बात है आप लोग कार्यक्रम सुनते हैं, लेकिन ये जो काम आप करते हैं भट्टों का, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है क्या?
1: जी मैम ये तो मुश्किल काम है, इसमें मेहनत बहुत है।
0: बहुत मेहनत है इसमें तो, और आपको बिल्कुल एक तरह से अपने आप को खपाए रखना पड़ता होगा।
1: जी मैम उसमें मेहनत काम ज्यादा पड़ता है,
0: और उसमें से भी आप समय निकाल कर विविध भारती सुनते हैं और खुश रहते हैं, बहुत अच्छी बात
1: नहीं
0: है।
1: वो तो ऐसा है कि काम चलता रहता है, विविध भारती में चलता रहता है, उसके बगैर तो मन ही नहीं लगता हमारा। जो सुबह हुआ कि हम सीधा विविध भारती चालू कर देते हैं पहले।
0: अच्छी बात है,
1: सभी लोग सुनते हैं। फिर हम तो ऐसा है कि रात में बिजली रहती, काम बिजली में करना होता है रात को, तो एम्पलीफायर में लगा के रखते हैं, जब बिजली चली जाती तो फिर ब्लूटूथ स्पीकर में लगा के रखते हैं।
0: इतनी व्यवस्था कर रखी है आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। हमारे ऐसे जो दीवानगी वाले श्रोता हैं, दीवानगी की हद तक विविध भारती को प्रेम करते हैं, उनसे बात करके हमें अच्छा लगता है। बताइए सुनील जी, आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: हेमलता जी का गाना है भीगा भीगा मौसम आया बरसे घटा घनघोर।
0: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश मंदाकिनी
0: हेलो,
1: दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मंदाकिनी दीदी, मैं बोल रहा हूँ राम बाबू मालवीय, कोलार रोड भोपाल से।
0: स्वागत है आपका राम बाबू जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ दीदी, आप सुनाओ, आप कैसे हो और हमारे विविध भारती की संपूर्ण टीम कैसी, क्या है?
0: सब अच्छे हैं, बताइए अपने बारे में राम बाबू जी।
1: अपने ड्राई क्लीनिंग का काम है, लॉन्ड्री का, और वो काम वाम करते हैं और अपने परिवार के साथ में जो भी है, जो दाल रोटी के लिए कमाते खाते हैं और बढ़िया आनंद मंगल से जितना परमात्मा ऊपर वाले देते हैं उसी में खुश रहते हैं और विविध भारती सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी इंसान को संतुष्ट तो रहना ही होगा एक हद तक, है ना? अगर हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि हम असंतुष्ट रहेंगे तो फिर जिंदगी तो खराब ही होनी है, हमारा वर्तमान खराब ही होना है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: आज गाना सुनना चाहेंगे, फिल्म का नाम है पापा कहते हैं, उसमें गाना है उसकी आवाज में, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही।
0: बहुत सुंदर गाना सुनना चाहते हैं आप।
1: वैसे दीदी आपके यहाँ के प्रोग्राम जो आपने नए शुरू किए वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमने चिट्ठियाँ भी भेजी है मन चाहे गीत में।
0: अच्छा चलिए सुने आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: संदीप कुमार मक्कड़, पींगा वाला चौक, गोरैया, पंजाब डिस्ट्रिक्ट जलंधर से आपका निमिष होता।
0: जी स्वागत है आपका संदीप जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका साथ है तो अच्छा, ना हो तो
0: और भी अच्छा।
1: जी हाँ जी हाँ।
0: बताइए क्या करते हैं संदीप जी आप?
1: मेरा वैसे फोटो फ्रेम और लेमिनेशन का काम है, इसके अलावा मैं गाता भी हूँ और लिखता भी हूँ।
0: अरे क्या गाते हैं और क्या लिखते हैं बताइए।
1: मैंने अपना हिंदी सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया है, मैं लिखता भी हूँ, हिंदी सॉन्ग लिखता हूँ और मैं सूफी सॉन्ग भी लिखता हूँ। गाने के कुछ बोल हैं वो सुनाना चाहूंगा।
0: गा के सुनाइए।
1: चलती ट्रेन में चलती चाय पी ले पी ले, तू मेरा हिंदू तो मुस्लिम भाई, पी ले आएगी सुस्ती मरेगी सुस्ती, एक प्याली पी ले भाई पी ले पी ले, ओ सब है मुसाफिर दिल के अच्छे, सब है मुसाफिर दिल के अच्छे, कान कहाँ पर उतरेगा भाई पी ले, ओ चाहे मेरी गरम मसाला, पिएगा कोई किस्मत वाला, गोरा हो या बिल्कुल काला, खुल जाएगा दिल का ताला, कहता रहेगा कहने वाला, चलता रहेगा चलने वाला, सुन ले भाई सुन ले लाला, आगे मेरे फौजी भाई, तेरे पे कुर्बान में भाई, तुम हो सबकी जान हो भाई, बैठो तुम भी चाय है आई, बैठो तुम भी चाय है आई। ये है मेरे गाने के
0: क्या बात है।
1: और अंतरा सुनाया।
0: अच्छा जो लिखते हैं कैसी सूफियाना कविताएं लिखते हैं?
1: सूफियाना जैसे मैं सूफियाना भी सुनाना चाहूंगा। सब सियाने मिल देने, सब सियाने मिल देने, ते कमला कोई कोई, ओ बोलण वाले मिल देने, चुप कोई कोई, तांदा मेला मंदा मेला, तांदा मेला मंदा मेला, ते समझे कोई कोई, ओ सब सियाने मिलते ने ते कमला कोई कोई।
0: बहुत अच्छा लगा संदीप जी, अपने शौक को आगे बढ़ाइए, लिखते रहिए और इसी तरह गाते रहिए। अगली मुलाकात में फिर आपसे कोई नया गीत सुनेंगे, बताइए।
1: तो मेरी 30 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी भी है मेरी।

0: एक ज्योति है उसके लिए डेडिकेशन है, उनको सुनाना चाहूंगा। फिल्म है बीवी हो तो ऐसी, गाना है फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुछ भोजपुरी एल्बम लोकगीत। कार्यक्रम है लोक माधुरी। कार्यक्रम का पहला गीत इस छोटे से संदेश के बाद।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। खांग पंचायत से कौशल्या देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: घर सम्मानी कौशल्या देवी खांग पंचायत। गाँव के तो बढ़ा रहे है की गली नली बना रहा है, हमको गाँव ने पंचायत भवन नहीं बन रहा है। बनने की कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं हो रहा है, आगे बढ़ाने चाह रहा है। ये सम्मान पा के बढ़िया लगा। गांव का फायदा तो है कि हमको गांव में पानी गिरे के साधन नहीं था, वो सब के बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: अगली रचना भरत शर्मा व्यास की आवाज में इस छोटे से संदेश के बाद।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। अमथुआ पंचायत से मिराज अहमद हैं यशस्वी मुखिया।
2: मैं मिराज अहमद, ग्राम पंचायत अमथुआ, प्रखंड काको, जिला जहानाबाद। बेहतरीन छठ घाट बनाना है तालाब किनारे जो है, और उसके बाद वहाँ पर पूरा चबूतरा बनाया है बैठने के लिए जो है, वहाँ पर पार्क बनवाया जाए, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो है बर्थिन लोग को बहुत दिक्कत होती थी कपड़ा चेंजिंग करने के लिए, वहाँ पर चेंजिंग रूम हमने बनवाया है कि जो ऐसा प्रोग्राम जिन्होंने कराया है ये काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सलाम।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
0: आइए सुन लेते हैं कुंज बिहारी कुंजन का लिखा गीत भरत शर्मा व्यास की आवाज में।

0: तो ये थे भरत शर्मा व्यास और आप सुन रहे थे कुंज बिहारी कुंजन का लिखा गीत। कार्यक्रम का अगला नगमा इस छोटे से संदेश के बाद।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राज भदगाई पंचायत से ओम प्रकाश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
2: मैं ओम प्रकाश कुमार ग्राम पंचायत राज भटगाई और अपने पंचायत के हर दुख सुख में रहे। हमारे पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है। दलित बस्ती बहुत सारे हैं, जहां सड़क नहीं था वहां सड़क बनवाएं, स्कूल में चार दीवारी करवाएं। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। धन्यवाद।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
0: आइए सुन लेते हैं मदन राय का गाया निर्गुण।

स्वानंद ठाकुर की गाई इसी रचना के साथ ही लोक माधुरी कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं से जन्मी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया, जो आज भी आपातकाल के उस काले अध्याय को बयां करती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जब किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा पर्व और आजादी का अमृत महोत्सव जैसी सरकारी पहले संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करती हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एक लेख साझा करते हुए ये बात कही। श्री शेखावत ने अपने लेख में आपातकाल के दौर और उनके दौरान लोगों की स्वतंत्रता तथा आकांक्षाओं पर पड़े प्रभाव का उल्लेख किया है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंतकायला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगमनेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तादक, ओडिशा से भाजपा के देवाशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता, रखरखाव की समीक्षा की है। नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने गुणवत्ता जवाबदेही बनाए रखते हुए परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक विश्व व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुम्बकम के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 घायल हो गए हैं। स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। इस बीच जापान के उत्तर पूर्वी भाग में आज सुबह 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, इनमें 4 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम वंदन आप सुनते हैं 5:10 पर, और हमारे युवा साथी अपना प्रसारण सुनेंगे युवावाणी 5:30 पर।

संध्या 6 बजे सुनिएगा लोकगीत और 6:05 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण होगा। इसे हम रिले करते हैं। छह बजकर 10 मिनट पर प्रसारित आज के किसानवाणी कार्यक्रम में अंकिता राव जानकारी देंगी खरीफ में मोटे अनाजों की खेती से संबंधित, अलावा इसके बरसाती सब्जियों की खेती और

धान के बीजों के देखभाल की भी चर्चा की जाएगी। छह बजकर 40 मिनट पर आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत, और संध्या 7 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान। सात बजकर 15 मिनट पर हमारे श्रोता सुनते हैं गुड इवनिंग रोहतास के तहत सांध्यकालीन सूचनाएं, और 7:30 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल।

ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ई मन पसंद आप सुनेंगे 7:50 से और रात्रि 8:45 पर सुनिएगा दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या। लोकधारा के अंतर्गत लोक गीत आप सुनते हैं रात्रि 9:00 और 9:15 पर सुनिएगा महफिल। इस कार्यक्रम में आप गजलें और गीत सुनते हैं। विविध भारती मुंबई से प्रसारित आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर और रस रंग के तहत हिंदी एल्बम सॉन्ग सुनिएगा रात्रि 10:00। फिल्म संगीत कार्यक्रम चित्रपट तराने हम आपके लिए पेश करेंगे रात्रि 10:30 पर और सभा का समापन होगा रात्रि 11:10 पर दिल्ली से प्रसारित समाचारों के बाद।

0: तो श्रोताओं, यह थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा आपके लिए। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 5:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम वंदन। कार्यक्रम की पहली पेशकश सुनते हैं इस छोटे से संदेश के बाद।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। श्री यानवा पंचायत से ओम राजेश कुमार रंजन है यशस्वी मुखिया।
2: मैं राजेश कुमार रंजन, ग्राम पंचायत ग्यामा। हमने RWD के प्रयास से ग्रामीण कार्य विभाग से मुख्य सड़क से पक्की रोड तक हमने जुड़वाए, कुछ ग्राम पंचायत से कार्य करवाए, अभी वो सब गांव खुशहाल है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं कि गांव बनेगा तभी देश बढ़ेगा।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
3: जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता का महीना है, इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
4: नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम

0: कुमारी पूनम हॉस्पिटल सासाराम रोहतास बिहार से बोल रही हूँ। हर दंपति का सपना एक खुशहाल परिवार बसाने का होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी यानी बंझापन कई दंपति का यह सपना साकार होने नहीं देता। इनफर्टिलिटी का अर्थ है एक बरस तक नियमित प्रयासों के बावजूद गर्भधारण न होना। यह हर 6 में से एक दंपति को प्रभावित करता है। याद रखें, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला नहीं पुरुष भी हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव से लेकर मॉडर्न प्रभावी उपचार जैसे IVF तक उपलब्ध है। अब समय है कि हम इस विषय पर बिना संकोच खुलकर बात करें और डॉक्टर से उचित मार्गदर्शन लें।
1: गुफिक बायोसाइंसेज के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी।

जानकी जी और लक्ष्मण। वनवास समाप्त करके वापस आए और भरत को वनवास कथा सुना रहे हैं कि देखो भरत हमारे साथ क्या क्या हुआ। रावण वध भी हुआ और ये कौन कौन से लोग जिन्होंने हमारी सहायता करी उसमें, सबसे परिचय कराया। और जब प्रभु ने परिचय कराया हनुमान जी का तो नेत्र भराए प्रभु के और बोले भरत ये जो कपि हैं, ये जो हनुमान हैं, इन्होंने हम पर जो ऋण चढ़ा दिए हैं उनसे हम कभी मुक्त नहीं हो सकते, उनसे कभी उऋण नहीं हो सकते। भरत भाई कपि से उऋण हम नहीं हैं।

सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से।

0: मोहनपुर पंचायत से ओम रानी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मेरा नाम है रानी देवी, मैं भागलपुर जिला को है। मेरे गांव में तो पहले मैं 13 नंबर वार्ड का है। मेरा गांव है सरैया, मोहनपुर पंचायत है। एक काम है बुनकी वही गली नली है, वहाँ पानी फंस रहा है, वो पानी निकलना की जरूरी है उसका। यही काम बेसी खास बच्चे है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता का महीना है। इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
3: नमस्कार, मैं डॉक्टर संध्या सिंह, संध्या रंजन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रोजा रोड सासाराम से बोल रही हूँ। हर दंपति का एक सपना है खुशहाल परिवार बसाने का, लेकिन इनफर्टिलिटी यानी बांझपन कई दंपति का यह सपना साकार नहीं होने देता। इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का अर्थ है एक वर्ष तक नियमित प्रयासों के बाद भी गर्भधारण ना होना। यह हर 6 में से एक दंपति को प्रभावित करता है। याद रखें, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला नहीं पुरुष भी हो सकते हैं, इसलिए इस विषय पर बिना संकोच खुलकर बात करें और उचित परामर्श लें। उचित मार्गदर्शन, ससमय उपचार, जीवन शैली में बदलाव सार्थक हैं एवं मॉडर्न ट्रीटमेंट जैसे IVF तक उपलब्ध हैं। इसलिए बिना संकोच डॉक्टर से उचित परामर्श लें और अपने सपने को साकार करें। धन्यवाद।
2: गुफिक बायोसाइंसेज के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। जजुआर मध्य पंचायत से ओम सुमंत नाथ ठाकुर बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: मेरे यहाँ अस्पताल बनाया, मेरा ग्राम पंचायत तो कुपोषण मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, टीबी मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, एनीमिया मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है। किसी भी गर्भवती महिलाएं की प्रसव के दौरान हमारे ग्राम पंचायत का खुद का अपना एम्बुलेंस है, जो कोई भी व्यक्ति को इलाज के लिए समय रहते गाड़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बनेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: और इसी के साथ ही भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम वंदन अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 5:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए युवा साथियों को संबोधित हमारा प्रसारण युवा वाणी।

योगवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को संजय चतुर्वेदी का सब प्रेम नमस्कार और कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी। जी हाँ, यदि हम विकास की बात करें तो विकास चाहे गांवों का हो या शहरों का हो या किसी भी क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में विकास दिखता है, इसे महसूस किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक पौधा एक कली से भर गया, इसका मतलब है कि कुछ नया काम हुआ। कली खिल करके जब फूल बन गई तो लगता है कि कुछ नया काम हुआ। तो विकास जो है वो महसूस किया जा सकता है, महसूस करने की चीज़ है। आज हम ग्रामीण विकास में युवाओं के योगदान की बात करेंगे। ग्रामीण विकास में युवाओं के योगदान की जहाँ तक बात है तो हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि गांव का विकास बिन युवाओं के प्रयास से बड़ी स्लो होगा, धीमा होगा। होगा विकास, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हाँ, यदि नौजवान जहाँ लग जाएंगे, कारण है कि युवा स्वप्नदर्शी है, युवा ताकत से भरा है, ऊर्जावान है, युवा में नई सोच है, नई विचारों का अभ्युदय है, नई

योजनाएं, नए संकल्प, दृढ़ संकल्प शक्ति है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है। ग्रामीण विकास में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये इनोवेशन और ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। नवाचार, नए ढंग से काम को करने की व्यवस्था, अपनी तकनीकी क्षमता और आधुनिक सोच से युवा कृषि के आधुनिकीकरण व डिजिटल साक्षरता के माध्यम से गाँव की तस्वीर बदल रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। अब जैसे मान लीजिए कृषि का आधुनिकीकरण और उद्यमिता की बात अगर हम कर लें, तो कृषि जो है वो व्यापक बदलावों के दौर से गुजर रही है। हमारी कृषि अब अत्याधुनिक कृषि संयंत्रों से संचालित है। संकर किस्म के बीज प्रयोग में लाए जा रहे हैं। अत्याधुनिक खाद और उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है। रिसर्च जारी है, शोध हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? बिन युवा शक्ति के तो हो नहीं रहा है। तकनीकी खेती की बात यदि हम कर रहे हैं, तो युवा किसान जैविक खेती, ड्रिप इरिगेशन जिसको टपका सिंचाई भी कहते हैं, और आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग कर कम लागत में बेहतर पैदावार प्राप्त कर रहे हैं। एग्री स्टार्टअप की यदि बात की जाए, एग्री माने एग्रीकल्चर माने कृषि खेती, युवा कृषि उत्पादों की मार्केटिंग, फूड प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन में नए स्टार्टअप शुरू करके गाँवों में ही रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। डिजिटल साक्षरता और शिक्षा को भी जरा सा देख लीजिए। युवा ग्रामीण इलाकों में ई मित्र, कॉमन सर्विस सेंटर CSC और डिजिटल लर्निंग सेंटर चलाकर सरकारी योजनाओं और बैंकिंग सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। शिक्षा में सुधार हो रहा है। शिक्षित युवा ग्रामीण बच्चों को शिक्षित करके ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ने और प्रौढ़ शिक्षा अभियान में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। तो ये कुछ क्षेत्र हुए, अनेक क्षेत्र हैं, जैसे कौशल विकास और स्वरोजगार भी एक क्षेत्र है। सरकारी योजनाओं जैसे DDU GKY और PMKY से जुड़कर युवा सिलाई, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन और कंप्यूटर जैसे कौशल सीखकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं और अन्य ग्रामीणों को भी प्रशिक्षित कर रहे हैं। सामाजिक जागरूकता और नेतृत्व की बात की जाएगी तो स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में युवा काफ़ी कुछ कर रहे हैं। युवा स्वच्छता अभियान, टीकाकरण और मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति गाँवों में जागरूकता फैला रहे हैं। पंचायत स्तर पर नेतृत्व, ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने गाँव के विकास के लिए सही नीतियाँ बनाने में मदद कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण बहुत ही शानदार काम हो रहा है इस क्षेत्र में और युवाओं की पहल से हो रहा है। हरित क्रांति लाई जा रही है। युवा जल संरक्षण और सौर ऊर्जा और उपयोग और वृक्षारोपण जैसे कार्यों के जरिए पर्यावरण सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रहे हैं युवा वर्ग। तो ये एक चीज़ है कि हमारे युवा ऊर्जावान हैं, उनमें सब कुछ करने की क्षमता है। तो आज दशा और दिशा दोनों ही बदल रही है हमारे गाँव की, और विकास के कदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए और भी बातें करेंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर रटवारा पंचायत से ओम पूनम कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं पूनम कुमारी, ग्राम पंचायत किशनपुर रटवारा, प्रखंड आलमनगर, जिला मधेपुरा। जी मैंने काम करवाए है। अभी तो मेरा बाहर इलाका है, कोसी कटाव से पीड़ित है। वहाँ तो रोड सालों आती है, सालों चली जाती है बह के। तो उसी को हम अभी तक में 25 से 30 हम मतलब कच्ची सड़क बनाए हैं, 10 से 15 पक्की सड़क। मैं दो बार मुखिया बनी हूँ।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता का महीना है। इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
3: नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम कुमारी, पूनम हॉस्पिटल सासाराम रोहतास बिहार से बोल रही हूँ। हर दंपति का सपना एक खुशहाल परिवार बसाने का होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी यानी बंजापन कई दंपति का यह सपना साकार होने नहीं देता। इनफर्टिलिटी का अर्थ है एक बरस तक नियमित प्रयासों के बावजूद गर्भधारण न होना। यह हर 6 में से एक दंपति को प्रभावित करता है। याद रखे, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला नहीं पुरुष भी हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव से लेकर मॉडर्न प्रभावी उपचार जैसे IVF तक उपलब्ध है। अब समय है कि हम इस विषय पर बिना संकोच खुलकर बात करें और डॉक्टर से उचित मार्गदर्शन लें।
2: गुफिक बायोसाइंसेस के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी।
4: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। <So easy. laughs>
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: और परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: स्वागत है एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प। जी हाँ, हमें अपने संविधान के प्रति दृढ़ आस्था रखनी चाहिए। संविधान हमारे देश का एक पवित्र ग्रंथ है जिसके प्रति हर नागरिक प्रतिबद्ध है, जिसके अक्षरशः अनुपालन की नैतिक जिम्मेवारी हमारे साथ रहती है। और हमें अपने देश का संविधान, देश के संसद सबका समादर करना चाहिए। तो लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प यदि हम देखें तो इसका तात्पर्य एक ऐसे दृढ़ निश्चय से है जो यह सुनिश्चित करता है कि देश में लोकतांत्रिक मूल्य, नागरिक स्वतंत्रता और संविधान सर्वोच्च बने रहें। इस संकल्प का मुख्य अर्थ है मूल अधिकारों की रक्षा, सुरक्षा, संविधान का सम्मान और तानाशाही का विरोध भी। जनता को प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और न्याय के अधिकारों को संरक्षित रहना, यह हमारा परम कर्तव्य है। लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे न्यायपालिका और स्वतंत्र चुनाव आयोग की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखना, यह हमारी नैतिक जवाबदेही है। सत्ता के दुरुपयोग को रोकना और किसी भी परिस्थिति में असहमति की आवाज़ को न दबने देना, ये भी हमारा ही संकल्प है। इतिहास और प्रेरणा की यदि बात हम करें तो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 25 जून यानी आज का ही दिन 1975 को लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में देखा जाता है। उस समय मौलिक अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता का हनन किया गया था। इस दिन को अब हमारे देश में संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया जाता है, जो हमें स्मरण दिलाता है कि नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए हमेशा सजग रहना कितना ज़रूरी है। एक नागरिक के रूप में हमारा दायित्व है कि मतदान का प्रयोग हम करें, सही और जवाबदेह प्रतिनिधियों का चयन करें, संविधान के प्रति हमारी जागरूकता हो यानी अपने अधिकारों और कर्तव्यों को हम समझें, कानून का पालन करें, राष्ट्र के नियमों का सम्मान करते हुए समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखें। तो ये चंद संकल्प ऐसे हैं जिनके प्रति हर नागरिक देश का वो कृत संकल्प है और हमें अपने संविधान को बहुत ही आदर के साथ, उच्च स्तर के आदर के साथ मानना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। चलिए एक और गीत सुन लेते हैं, फिर आगे और बातें होंगी।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मोतीपुर पंचायत से ओम प्रेमी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं प्रेमा देवी, 10 ग्राम पंचायत राज मोतीपुर, प्रखंड रोसड़ा, जिला समस्तीपुर। हम सारा काज किए हैं अपना ग्राम सभा में लेकर, अपना महिलाओं से और ग्राम से लेकर उसे पंचायत को शुरू किए हैं। हमारे आने से बहुत सारे महिलाओं को रोजगार मिली, अभी लाइब्रेरी खोले हैं, जिच्छा मिल रही है, अभी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता का महीना है, इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
3: नमस्कार, मैं डॉक्टर संध्या सिंह, संध्या रंजन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रोजा रोड सासाराम से बोल रही हूँ। हर दंपति का एक सपना है खुशहाल परिवार बसाने का, लेकिन इनफर्टिलिटी यानी बांझपन कई दंपति का यह सपना साकार नहीं होने देता। इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का अर्थ है एक वर्ष तक नियमित प्रयासों के बाद भी गर्भधारण ना होना। यह हर 6 में से एक दंपति को प्रभावित करता है। याद रखें, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला नहीं पुरुष भी हो सकते हैं, इसलिए इस विषय पर बिना संकोच खुलकर बात करें और उचित परामर्श लें। उचित मार्गदर्शन, ससमय उपचार, जीवन शैली में बदलाव सार्थक है एवं मॉडर्न ट्रीटमेंट जैसे IVF तक उपलब्ध है। इसलिए बिना संकोच डॉक्टर से उचित परामर्श लें और अपने सपने को साकार करें। धन्यवाद।
2: गुफिक बायोसाइंसेस के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी।
4: स्वागत है आपका फिर इस कार्यक्रम में, और अब हम बात कर लेते हैं योग या योगा इंस्ट्रक्टर। हिंदी शब्द है योग, उसको इंग्लिश में योगा लिख रहे हैं लोग, तो चलिए योगा इंस्ट्रक्टर की बात कैसे बने ये एक चीज है, क्योंकि अभी 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमने मनाया है और आज योगाभ्यास करने का शौक या इसको आदत कह लीजिए, जो हमारी अच्छी सेहत के लिए बड़ी ज़रूरी है, परवान पर है। तो इसमें योग जो है वो अब रोज़गार के अवसर भी दे रहा है, योगा इंस्ट्रक्टर बन करके कैरियर को संवारा जा सकता है। योग शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 200 घंटे का योग शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स

0: TTC पूरा करने होंगे। इसके बाद सरकारी मान्यता के लिए आयुष मंत्रालय के योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड YCB से प्रमाणित होना पड़ेगा और फिर अभ्यास करके अपना करियर शुरू किया जा सकता है। इसके लिए सही कोर्स चुनने की ज़रूरत है। 200 घंटे TTC जो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स की बात है, यह सबसे लोकप्रिय और बुनियादी कोर्स है। इसे करने में लगभग एक महीना लगता है। डिग्री या डिप्लोमा, अगर आप अकादमिक स्तर पर जाना चाहते हैं तो आप योग में BA, BSc, MA, MSc या PG डिप्लोमा भी कर सकते हैं। योग के प्रकार यदि हम देख लें तो हठ योग, अष्टांग योग या विन्यास जैसे अलग अलग रूपों में से किसी एक विशेषज्ञता हासिल होनी चाहिए। सरकारी या अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन प्राप्त करने की भी ज़रूरत है अगर, तो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड YCB की परीक्षा दें। यह 3 स्तरों पर आयोजित होती है। यह स्तर हैं योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर और योगा टीचर। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए योगा अलायंस से रजिस्टर्ड स्कूल से कोर्स करना सबसे बेहतरीन विकल्प है। अब यदि व्यवहारिक अनुभव की देख ली जाए तो अपने कोर्स के दौरान और बाद में भी नियमित रूप से खुद योग का अभ्यास करें। शुरुआत में परिवार के सदस्यों, दोस्तों या अपने आस पड़ोस में मुफ्त कक्षाएं लेकर अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं और अपने कैरियर की शुरुआत करें। ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षाएं चलाएं। आप जूम या अन्य वीडियो कॉलिंग ऐप्स के माध्यम से ऑनलाइन योग कक्षाएं चला सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से होम ट्यूशन भी दे सकते हैं उन्हें जिनको योग करने की ज़रूरत है। यदि नौकरियों की बात की जाए तो स्कूलों, जिम, कॉरपोरेट कार्यालयों और आयुष वेलनेस सेंटर में योग प्रशिक्षण की नौकरी के लिए आवेदन किया जा सकता है और खुद का केंद्र भी आप खोल सकते हैं। अनुभव बढ़ने के बाद आप अपना खुद का योग स्टूडियो भी खोल सकते हैं। अब उससे क्या होगा कि आपको कहीं और नहीं जाना होगा, लोग ही आपसे मिलने के लिए आ लिया करेंगे। तो ये योगाभ्यास या योग शिक्षक, योगा इंस्ट्रक्टर कैसे बने उसकी बात थी। एक गीत सुनेंगे और, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर लोहार पंचायत से ओम राकेश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
2: यशस्वी मुखिया राकेश कुमार शाह, ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं था, जिसके चलते मेरे यहाँ नागरिकों को बहुत कठिनाई होती थी, प्रखंड जाकर काम कराना पड़ता था। मैंने ग्राम पंचायत में अपने ग्राम पंचायत पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया। अब पंचायत सरकार भवन के एक छत के नीचे ही मेरे पंचायत के लोगों का सारा काम हो जाता है। अब प्रखंड जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
3: जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता का महीना है। इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
4: नमस्कार, मैं डॉक्टर संध्या सिंह, संध्या रंजन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रोजा रोड सासाराम से बोल रही हूँ। हर दंपति का एक सपना है खुशहाल परिवार बसाने का, लेकिन इनफर्टिलिटी यानी बांझपन कई दंपति का यह सपना साकार नहीं होने देता। इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का अर्थ है एक वर्ष तक नियमित प्रयासों के बाद भी गर्भधारण ना होना। यह हर 6 में से एक दंपति को प्रभावित करता है। याद रखें, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला नहीं पुरुष भी हो सकते हैं, इसलिए इस विषय पर बिना संकोच खुलकर बात करें और उचित परामर्श लें। उचित मार्गदर्शन, ससमय उपचार, जीवन शैली में बदलाव सार्थक हैं एवं मॉडर्न ट्रीटमेंट जैसे IVF तक उपलब्ध हैं। इसलिए बिना संकोच डॉक्टर से उचित परामर्श लें और अपने सपने को साकार करें। धन्यवाद।
3: गुफिक बायोसाइंसेज के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही युवाणी कार्यक्रम समाप्त करने की संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों को संबोधित हमारा प्रसारण युवावाणी। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए सुनिए लोकगीत।

भरत सिंह भारती और साथियों की गई इसी रचना के साथ ही लोकगीत कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 6:05 होने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी समाचार बुलेटिन। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

प्रणाम। ई आकाशवाणी के पटना केंद्र है। अब रहुआ सूर्य प्रकाश उपाध्याय से भोजपुरी में समाचार सुनी। आज संविधान हत्या दिवस मनावल जा रहा बा। ई दिन 25 जून 1975 के लगावल गई आपातकालीन के याद दिलावेला, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यन पर बहुत गहिर असर पड़ल रहे। इस मौका पर देश और राज्यन में तरह तरह के कार्यक्रमन के आयोजन कैल जा रहा बा। राज भाजपा के ओर से पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल भेले। इस दौरान आपातकालीन के खिलाफ लड़ाई लड़े वाला 450 गो जेपी सेनानियन के सम्मानित कल गई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा लोक नायक जयप्रकाश नारायण की तैल चित्र पर फूल चढ़ा के श्रद्धांजलि देले। सभा के संबोधित कर श्री नड्डा कहले कि आपातकालीन के दौरान वो समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अंग्रेजों के जमाने के बनावल मीसा कानून के तहत बिना कोनो कारण आ बिना कोनो अदालती जांच के 131,000 लोगन के जेल में बंद कर देले रही। वो कहले कि अंग्रेज भी इतना अत्याचार ना कैले रहन। केंद्रीय मंत्री आपातकालीन के समय पटना से शुरू भइल जन आंदोलन के याद करत कहले कि वो खुद भी यह संघर्ष के गवाही आ साथ रहल बान। वो कहले कि लोकतंत्र के हत्या के खिलाफ लड़ाई के बिया बिहार के माटी पर ही परल रहे आ इहे से पूरा देश में आंदोलन के शुरुआत भइल रहे। श्री नड्डा लोक नायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के नारा आ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भइल भारी रैली के जिक्र करत कहले कि यह आंदोलन ने लोकतंत्र के वापस लावे के लड़ाई के एगो नया ताकत दिलस आ वह समय सरकार के जड़ हिला के रख देले रहे। केंद्रीय मंत्री कहले कि आपातकालीन के दौरान प्रेस के आज़ादी या संविधान के सब मूल्यन के गला घोट दिल गिल रहे। वो कहले कि लोकतंत्र के ई सिख बा कि जनता संविधान आ प्रजातंत्र के गला घोटे वालन के समय अयला पर मजबूती से जवाब देवेले। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी संविधान हत्या दिवस पर

0: आपातकालीन के विरोध करे वाला लोकतंत्र के सेनानियन के नमन कैले वाड़न। सोशल मीडिया पर आपस संदेश में वो कहले कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकालन युग करिया पन्ना रहे, जब सत्ता के घमंड में लोकतांत्रिक संस्था अपन बात कहे कि आज़ादी और नागरिक अधिकारण के भारी चुनौती के सामना करे के पड़ल रहे। मुख्यमंत्री कहले कि लोकतंत्र की रक्षा, संविधान के आदर और जनता की आवाज़ के ताकत के हमेशा सबसे ऊपर रखल ही लोकतंत्र सेनानियन की असली श्रद्धांजलि बा। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा कहले बड़न कि 25 जून भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के सबसे करिया दिन बा। वो कहले कि कांग्रेस ओरी से लगावल गए आपातकालीन के दौरान विपक्षी नेता लोगन के जेल में ठूस दिल गए रहे और मीडिया के आज़ादी पर भी रोक लगा दिल गए रहे। श्री झा पटना एयरपोर्ट पे पत्रकारों से बातचीत करत कहले कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वो आंदोलन के दौरान जेल में रहल बाड़न। भोजपुर जिला के शाहपुर थाना के क्षेत्र के विलोटी गांव में पिछला दिनन भयल कथित मुठभेड़ में भरत तिवारी नाम के जवानन के मौत के मामला में न्यायिक जाँच शुरू कर दिल गई बा। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा की अगुवाई में बनल आयोग आज सवेरे घटना वाली जगह के दौरा कैलस। श्री सिन्हा पीड़ित परिवार और गांव के लोगन से बात कैले। यह दौरान शाहबाद के DIG सत्य प्रकाश, DM तनय सुल्तानिया, SP राज के संघे और दूसरा वरिष्ठ अधिकारी लोगन भी मौजूद रहले। राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम आ दक्षिण मध्य भागन में बिजोड़ गर्मी से लोगन के जनजीवन बेहाल बा। मौसम विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक कई गो जगह पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बनल बा। पिछला 24 घंटा के दौरान कैमूर के भभुआ सबसे गर्म जगल रहल। यहाँ के सबसे अधिका तापमान 42.2 डिग्री रिकॉर्ड कल गई। ओहिजा पटना के सबसे अधिका तापमान 40.6 डिग्री दर्ज कल गई। मौसम विभाग अपन अनुमान में कहले बा कि अगला 48 घंटा के दौरान बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, पटना, नालंदा आ गया समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम दक्षिण मध्य भाग में लू चले के आसार बा। दूसरा ओरी विभाग राज्य के उत्तर भागन में ज्यादातर जगह पर तेज हवा के साथ पानी बरसे के अलर्ट जारी कैले बा। अरवल जिला में मुहर्रम के दौरान शांति और व्यवस्था बनावे के रखे के खातिर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के देखरेख में अलग अलग थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालल गई। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक यही जा समाप्त भइल।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 MHz पर। 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का प्रसारण किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: सब श्रोता भाई बहन के नमस्कार बा, आ पच्चू भाई रो के नमस्कार बा।
1: नमस्कार ए जगत भाई आ सभी किसान भाई बहन लोग के पंचू भाई के दंडवत। जगत भाई
0: जी भैया,
1: हमने के देश देखी कृषि प्रधान देश है। आइजा के अधिकांश खेती मानसूने पर निर्भर करेला। हर साल किसान भाई लोग बड़ा आशा उत्साह के साथ मानसून के इंतजार करेलन, लेकिन जब मानसून समय पर ना आवे चाहे ओकरा में देरी हो जाला तो एकर सीधा प्रभाव खेती, जल संसाधन, पर्यावरण आ आम जनजीवन पर पड़ेला।
0: देखिए भैया, बात

0: सही कहल है और हमनी के तक खेती पर निर्भर बनी जा और खेती जौन बा वो हमनी के जीविका के मुख्य स्रोत बा और ओकरा में बिया बाला भी डाले के समय चल रहा बा खरीफ फसल के धान खातिर आ हमें बारिश के न होना गंभीर विषय बा
1: गंभीर विषय बा। आ देखी मानसून के जौन देरी बा ओकर लोग विज्ञानी लोग प्रभाव बतावता कि भाई जौन अलनीनो बा ओकरा चलते काफी परेशानी हो रहा बा।
0: ये भैया बात अलनीनो जौन बात रबा कल ही वो तो हमनी के समझ में आई ना किसान भाई लोगन के।
1: हाँ किसान भाई लोग
0: तो ओकरा के हमनी के का चीज हो आखिर तो किसान कौची है।
1: हाँ ये बात बा। देखिए अलनीनो एगो प्राकृतिक जलवायु घटना है।
0: अच्छा
1: लेकिन जलवायु परिवर्तन एकर प्रभाव के और अधिक जटिल बना सकेला। ये जौन प्रशांत महासागर बा ओकरा में मध्य आ पूर्वी भाग के जौन समुद्री जल बा उ असामान्य रूप से गर्म हो जाला।
0: अच्छा
1: तो जब गर्म हो जाला तो एकर असर दुनिया के कई देश के मौसम पर पड़ेला।
0: हाँ जब चूंकि मानसून जंगे से उठेला।
1: हाँ तो जब असर पड़ेला तो इस दौरान अक्सर मानसून कमजोर पड़ सकेला वर्षा कम हो सकेला चाहे वर्षा के जौन वितरण बा कि समान रूप से होके के चाहिए तो उ ना हो कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाए। तो भाई ठीक बा हमने के एकरा से निपटे खातिर एक काम कइल जा सकेला कि खेती जौन बा तौन जलवायु आधारित खेती करे के चाहिए मौसम आधारित खेती करे के चाहिए तो एकरा से हमने के एकर काट कर सकेले जा। अब तनी बताई कि सब बात कही हमने के आगे भी होत रही लेकिन अब बताई कि कार्यक्रम में आगे और क्या क्या हमने के जानकारी मिले।
0: सबसे पहले हमने के जाना जी खर खबर एकरे बाद खरीफ में मोट अनाज के खेती के बारे में जानकारी कही जाई फिर बरसाती सब्जी की खेती कही जाई एकरा बाद धान के बिचड़ा के कैसे देखभाल कही जाओ ई आज के नसीहत रही और कुछ पत्रोत्तर कार्यक्रम में कुछ शामिल कर लिए एकरे बाद मौसम के हाल चाल जानला के बाद हमने के कार्यक्रम के समापन कर लिए तो देखें कुछ खबर रवा लगे बात बताई।
1: देखी खरीफ बुआई में बढ़ोतरी खातिर कृषि मंत्रालय के अनुसार खरीफ फसल के बुआई 119.90 लाख हेक्टेयर में हो चुकल बा जौन की पिछला वर्ष के तुलना में लगभग 2 लाख हेक्टेयर अधिक बा। एमे धान आ बजरा के रकबा में बढ़ोतरी कल गई बा। एगो और बा कि धान के बिचड़ा में अब कृषि विज्ञानी लोग 2 से 3 सेंटीमीटर पानी रखे के सलाह दे रहा बड़न। एगो खबरी बा कि 9 दिन के देरी से मानसून गुजरात आ मध्य प्रदेश में आ गई बा। पिछला अलनीनो वर्ष 2023 में भी मध्य प्रदेश में 24 जून के आयल रहे एक बार एकरा एमपी में 3-4 दिन तक लाग सकेला। फिलहाल इस समूचा महाराष्ट्र के कवर करके आगे निकल गई बा। एकरा साथ ही बिहार छत्तीसगढ़ आ झारखंड के कुछ जिलन में भी एकर प्रभाव दिख रहा बा। अगला 5 दिन में उम्मीद बा कि पूरा देश में झमाझम बारिश होई।
0: देखिए कितना निमन रवा बात बतौल है भैया सुन के खबर ते मियाज गदगद हो गल के बुझाते खेत में फरुआ चल जियो
1: चली आब एकदम हरियरी आई।
0: हाँ, हाँ।
1: गर्मी से थोड़ा सा मुक्ति मिली
0: लेकिन भैया देखी आ जाए तबे कहल जाओ क्योंकि हमनी के बिया बाल डाल के असरा देखत जा कब तनिका पानी टपक जाओ के विवाह हरियाओ
1: जगत भाई रउआ खेती खातिर पर जानल भी जाइला तराउर चिंता स्वाभाविक बा लेकिन कृषि विज्ञानी लोग के अनुमान बा।
0: देखी सारा खेती तो अनुमाने पर होते बा। अब चला जाओ कुछ अपना कार्यक्रम में
1: बताई आगे का बा।
0: आगे जैसन कि हमने के कल ही जा कि खरीफ में जौन समय चल रहा बा और देखी पानी के अभाव जैसन चल रहा बा उमें मोट अनाज के खेती के बड़ महत्व बा।
1: देखी मैं पानी के कल हाँ तो मोट अनाज के तो खेती के इतना डिमांड बा इतना मांग बा कि हमरा लगता कि जौन हमने के मेहिका कहत रहें जा पहले वो उससे ज़्यादा कीमती मुठके हो गई।
0: बिल्कुल बिल्कुल अच्छा दूसरा चीज़ ये बा कि पहले हमने के किनार

0: कर देते रह जाए, अब ओकर मांग बढ़ रहा बा। आई देखी मोटना जौन बा कम पानी में बढ़िया आमदनी करी।
1: हमरा एगो बात याद आ गई, बचपन में जब हमने के खेत पर जात रह जा खाए पानी लेके रोपनी या कबरिया लोग के,
0: अच्छा अच्छा,
1: तो चना के उघरी रोटी जात रहे कुछ दिन तक अकाल उकाल के स्थिति में, तो जे कबरिया लोग रहे कहत रहे कि अपने खात रह जा मेहिका गेहूँ के आ हमने के मोटका चना के देते रह जा। आज चना किशमिशो ले मुहाल हो गए,
0: महत्व तो बढ़ गई बा न, मड़ुआ भइल।
1: तब बताई,
0: अच्छा एक चीज पहले महुआ के भी लाटा खातिर देखे के मिलता
1: नहीं,
0: कहीं
1: मिलत?
0: नहीं खेलो कब,
1: आजकल के लइकन के तो जानकारियो नहीं
0: ना ना ना ना।
1: तो आई सुनल जाओ,
0: सुनल जाओ केकरा से सुनल जाए,
1: डॉक्टर अंकिता राव से सुनल जाओ, खरीफ में मोट अनाज के खेती, इनका से बातचीत कर रहा बड़न डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। तो आई सुनल जाओ।
2: किसान भाइयों, आजकल मोटे अनाजों की खेती के बारे में जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जो मोटे अनाज हैं वो काफ़ी पौष्टिक होते हैं। प्राचीन समय में ज़्यादातर खेती मोटे अनाजों की होती थी, सूखा पड़ने पर भी उनका उत्पादन हो जाता था, श्रम कम लगता था और उसके लिए बहुत ज़्यादा खेत की तैयारी भी नहीं करनी पड़ती थी, फिर भी उत्पादन होता था। प्राचीन समय में आप देखिएगा, जब से मानव ने खेती की शुरुआत की तो उसमें रागी, सावा, कोदो, ये जो फसलें हैं ये प्रारंभिक दौर से चली आ रही हैं, लेकिन बीच के समय में हम लोगों ने धान और गेहूं को अपना लिया। परिणाम हुआ कि उसके लिए भूमिगत जल का अधिकतम दोहन करना पड़ा, अधिक पानी देना पड़ा उनको, और दूसरी चीज़ कि हमारे स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव पड़ा है उसका। तो मोटे अनाजों की खेती के बारे में भारत सरकार ने भी काफ़ी जोर दिया है, किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि मोटे अनाजों की खेती करें और उनका जो बाज़ार मूल्य है वह भी अधिक मिल रहा है। तो मोटे अनाज की खेती खरीफ के मौसम में कैसे किया जाए, कौन कौन फसलें आती हैं, कैसे किया जाए, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर अंकिता राव। आप सहायक प्राध्यापक हैं शस्य की नारायण कृषि संस्थान गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुहार रोहतास में। डॉक्टर अंकिता राव जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। ये बताइए कि जो मोटे अनाज हैं इस मौसम में यानी खरीफ मौसम में, इसमें कौन कौन फसलें आती हैं?
3: जी, मोटे अनाज में देखिए कुल 8 फसलें हैं, इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कंगनी, चीना, कोदो और कुटकी शामिल है।
2: जी,
3: जो हमारे मोटे अनाज का उत्पादन होता था वो पहले से ही होता चला आ रहा है, लेकिन क्या हुआ कि 50 से 60 वर्ष पहले मोटे अनाजों पे काफ़ी जोर दिया जाता था और हमारे थाली में सिर्फ मोटे अनाज ही दिखाई देते थे, लेकिन जब से हरित क्रांति आई, हरित क्रांति ने हमारे थाली से मोटे अनाजों को छीन के वहाँ पे
2: गायब कर दिया
3: और गेहूं को ला दिया।
2: जी जी
3: जी, जी।
2: अच्छा, लेकिन सरकार ने तो इस पर काफी जोर दिया है, पूरे विश्व में इस पर जोर दिया जा रहा है।
3: जी सर, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। विश्व में जोर अभी दिए जाने लगा है, सरकार ने अभी पहल की है मोटे अनाजों के लिए। इसका भी विशेष एक उद्देश्य है, जो मोटा अनाज होता है, मोटा अनाज अभी क्या है कि वो बहुत ही पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है, साथ ही साथ जो उसकी उत्पादन करने के तरीके हैं वो बहुत ही बिना देख रेख के, एकदम कम देख रेख में हम कर सकते हैं। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है दिन प्रतिदिन, उस जलवायु परिवर्तन में मोटे अनाजों को हम आसानी से उगा सकते हैं। अभी खरीफ में हम बात करें मोटे अनाजों में, तो ज्वार बाजरा को उगा सकते हैं जो सबसे उपयोगी साबित होता है,
2: या सावा को उगा सकते हैं।
3: सावा को भी उगा सकते
2: जी जी
3: हैं।
2: और इसीलिए भारत सरकार ने वर्ष 2023 को
3: जी
2: ये घोषित किया है मोटे अनाजों के लिए, मोटे अनाज का वर्ष जो है घोषित
3: जी
2: किया
3: जी
2: है।
3: 2023 में जो भारत सरकार है, भारत सरकार के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसे अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया 2023 को।
2: जी जी जी, अच्छा, इसका जो है सुपर फूड के रूप में भी तो प्रयोग होता
3: जी
2: है।
3: जी, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो मोटे अनाज है उसके सुपर फूड के रूप में भी उपयोग किया जाता है, इसलिए क्योंकि जो मोटे अनाज है, मोटे अनाज को कम से कम मांग होती है जल की, कम से कम उर्वरकों की मांग की होती है और

0: वो बहुत ही जो पोषण होते हैं उसके अंदर पौष्टिक तत्व होते हैं वो उससे भरपूर होते हैं,
1: जी
0: इसलिए उसे सुपर फूड के रूप में भी हम जानते हैं।
1: जी
0: जी
1: अच्छा, ये जो मोटे अनाजों का जो उत्पादन था बिल्कुल लगभग ठप पड़ गया था, कहीं
0: जी
1: कहीं कुछ कुछ
0: जी
1: हो रहा था, तो इसकी कितनी आवश्यकता है कि उसको हम लोग जो है पुनर्जीवित करें?
0: जी पुनर्जीवित करने के लिए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगी कि जो मोटे अनाज हैं वो उनको पुनर्जीवित करने की बहुत ही ज़रूरी है, उन्हें हमें ज़रूर ही अपने जो उत्पादन है उसमें शामिल करना चाहिए। जो मोटे अनाज हैं धीरे धीरे हमारे थाली से गायब हुए, जब धीरे धीरे थाली से गायब हुए हैं तो उसका परिणाम हमें मिल रहा है, जो हमारी उपज है वो उपज कम हो रही है। पहले तो हमने आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए धान गेहूं की फसलों को अपनाना शुरू कर दिया और मोटे अनाजों को हमने पीछे छोड़ दिया, लेकिन बात अभी की करें तो उससे क्या हुआ, उससे जो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो भी काफ़ी पीछे चली गई। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि मोटे अनाज होते हैं वो कम से कम उर्वर भूमियों में भी उगा सकते हैं, अगर हम कहें शुष्क भूमियों में भी उगा सकते हैं, जहाँ बात आ रही है कि पानी बिल्कुल कमी है, पानी की कमी दिन प्रतिदिन होती ही जा रही है, तो जो मोटे अनाज होते हैं उनकी जो जल मांग होती है वो बहुत ही कम होती है। जैसे आप खरीफ की फसल ले ले, धान की जो जल मांग है वो 1500 मिलीमीटर है, अगर बात करें रबी की गेहूं की उनकी जल मांग भी 500 मिलीमीटर है। वहीं पे जब मोटे अनाज की बात करें तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है जल मांग की वो 300 से लेके 500 मिलीमीटर होती है। अगर दूसरे तरह से हम कह सकते हैं कि अगर जलवायु परिवर्तन दिन प्रतिदिन होता जा रहा है, कभी तापमान इतना ज़्यादा हो जा रहा है, कभी तापमान बहुत कम हो रहा है, जब मानसून का सीजन है तो बारिश नहीं हो रहा है, ये जलवायु परिवर्तन जो हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए हम उस जगह पर एक फसल को उगा सकते हैं, वो है मोटा अनाज। मोटा अनाज अगर फसल नहीं दे पा रहा है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम पशुओं को चारे के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं।
1: जी जी अच्छा, अब रही बात की स्वास्थ्य संबंधी, तो हम लोगों ने बात की कि इसका जो है स्वास्थ्य पर जो कुप्रभाव पड़ा है चावल गेहूं से, वो हम मोटे अनाजों से उसको दूर किया जा सकता है। जी अब रही बात की मोटे अनाजों की खेती में कितनी चुनौतियां आप देख रही हैं?
0: जी देखिए किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले ही मैंने बताया कि जो मोटे अनाज हैं उनको अपने देश से गायब ही कर दिया गया, लेकिन अभी मोटे अनाज पे जोर दिया जा रहा है, लेकिन बहुत सारी बीच में चुनौतियाँ भी आई हैं, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले क्या है, जो धान और गेहूं है उसका जो वो जो होता है वो महंगा है, वहीं पर हम कहें कि मोटे अनाज जो सस्ता होता है, ठीक है, उसकी जो हम कह सकते हैं कि लागत कम है, ठीक है, और मुनाफा ज़्यादा होता है। दूसरा बात ये आप कह रहे हैं कि चुनौतियाँ क्या आ रही हैं, चुनौतियाँ ये आ रही हैं कि जो मोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाज में हम कहें तो ग्लूटीन जो होता है वो नहीं पाया जाता है, उससे क्या होता है कि जो रोटियाँ मोटे अनाज से अगर हम बना रहे हैं तो रोटी जो बनेगी कठोर बनती है, मुलायम बिल्कुल नहीं बनती। वहीं पे अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं से जो रोटियाँ बनती हैं, आटा गूंथते हैं, वो बहुत ही लचीला और मुलायम होता है, तथा उससे बनने वाली जो रोटियाँ होती हैं वो भी मुलायम होता है। तो आजकल पीढ़ियाँ जो हैं, आजकल की पीढ़ियाँ वो मोटे अनाजों की तरफ ना जाके सिर्फ गेहूं के तरफ जा रहा है, क्योंकि उसकी जो रोटियां होती हैं वो अच्छी बनती हैं, खाने में स्वादिष्ट होता है, इसलिए।
1: जी अच्छा, जो हमारी पारंपरिक प्रजातियां थीं मोटे अनाजों की, क्या वही हैं या इस पर भी शोध हुआ है?
0: जी पारंपरिक प्रजातियों की बात करें तो शोध सिर्फ प्रजातियों में, प्रजातियाँ जो जितनी किस्में थीं, किस्में तो वही हैं, जो 8 प्रमुख फसलें हैं वही हैं, लेकिन इनके प्रजातियों को बढ़ा दिया गया है।
1: जी
0: जी
1: प्रजातियों पर शोध हुआ है ताकि अच्छा से अच्छा उत्पादन मिल सके।
0: ताकि अच्छा से अच्छा उत्पादन मिल सके।
1: जी अच्छा, इसको जो मोटे अनाजों में उर्वरक प्रबंधन कैसे करते हैं?
0: जी मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि जो मोटे अनाज होते हैं उनको कम से कम उर्वरक वाली भूमियों में भी हम उगा सकते हैं। जैसे अगर हम मोटे अनाज की संकर प्रजातियों के बारे में बात करें तो संकर प्रजातियों में 40 किलोग्राम नत्रजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। अगर वहीं पे संकर प्रजातियां लेकर देसी प्रजातियों को हम लेते हैं तो वहां पे नत्रजन 80 किलोग्राम, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास लेते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान देना चाहिए किसान भाइयों को कि नत्रजन की पूरी मात्रा हमें नहीं देना है, नत्रजन की सिर्फ आधी मात्रा बुआई के समय में तथा आधी मात्रा

0: फसल की बुआई के कुछ दिनों बाद खड़ी फसल में करना है तथा जो फास्फोरस और पोटाश है उसकी पूरी मात्रा बुआई के समय ही कर देना चाहिए।
1: जी जी, तो इस तरह से उर्वरक प्रबंधन करना चाहिए।
0: जी
1: अच्छा, एक चीज बताइए कि जैसे मान लीजिए कि बरसात नहीं होती है कई जगहों पर, कई ऊंचा जो ऊंचे स्थान हैं जहाँ की पानी नहरों का नहीं पहुंच पाता है, तो वैसी जगहों के लिए यदि वर्षा नहीं हुई तो क्या अब लेट वैरायटी भी हैं जिसका कि मोटे अनाजों को उत्पादन किया जा सकता है?
0: जी, बहुत सारी लेट प्रजातियां हैं जिनका हम उपयोग करके वहाँ पे उपयोग करके उगा सकते हैं। पहले ही मैंने बताया कि एकदम जो इनकी जल मांग होती है वो बहुत ही कम होती है। अगर शुष्क अवस्था है, ठीक है, शुष्क भूमि है, वहाँ पे भी हम मोटे अनाजों को आसानी पूर्वक उगा सकते हैं।
1: जी जी
0: जी,
1: तो डॉक्टर अंकिता राव आप आई और ये जानकारी दिया कि खरीफ में हम लोग मोटे अनाजों की खेती कैसे करें, कितना इससे लाभ है, स्वास्थ्य संबंधी क्या लाभ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। नमस्कार।

0: आसानी पूर्वक उगा सकते हैं।
1: जी जी
0: जी।
1: तो डॉक्टर अंकिता राव आप आई और ये जानकारी दिया कि खरीफ में हम लोग मोटे अनाजों की खेती कैसे करें, कितना इससे लाभ है, स्वास्थ्य संबंधी क्या लाभ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। नमस्कार।
2: देखी पचू भैया कितना बढ़िया से फरिया फरिया यहाँ के बतौला है मोट अनाज के खेती, और उतने फरिया फरिया के हमने के तिवारी भाई पूछला है कि कैसे कल जाओ।
3: ये जानकारी खातिर डॉक्टर अंकिता राव के बहुत बहुत
2: धन्यवाद
3: बा। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ल जाओ, उससे पहले सुन जाओ संदेश।
2: जी

0: ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतरवर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
1: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
0: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक है। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
2: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
3: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
4: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं, वही रेट पर कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
5: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
0: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

0: व्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।
1: देखिए पच्चू भाई
2: जी, जी
1: बत कही तो भाई संदेश भी जन लीजा, लेकिन नया दौर के नया बात में बरसाती खेती के जो सब्जी में आनंद बा और आमदनी बा उनमें बढ़िया बा। इससे बरसात के चारों तरफ पानी भर जाला और खेत में जौन ऊंच खेत बा उचास बा उनमें सब्जी के खेती होला और जेहर देखी ओहर हरियरे हरियरे नजर आवेला। और बरसाती सब्जी की खेती में देखी का बा नेनुआ बा कद्दू बा तरोई बा बोदी बा झिंगू झिंगी मने एकरा बाद पात गोभी खीरा बैगन मिर्चाई मूली सबके खेती बरसात में उच्च जमीन पर होला। अगर कई जाए तो मुनाफा बढ़िया हुई और इस सब्जी बरसात में तेजी से बढ़ेला। काहे से कि जवन मौसम बा उमें पटवन उमें करे के ना पड़े, बारिश से अपना बढ़ेला। जो ऊपर के पानी होला पौधा के विकास खातिर अमूल्य बा। और इसमें माटी जोन बा जैसे बताया कृषि विशेषज्ञ के मुताबिक कहा जाला बरसात के मौसम में आमतौर पर तीन तरह के फसल उगावल जाला, जेकरा में बेल वाला सब्जी, खड़ा फसल वाला सब्जी और जमीन में उगे वाला सब्जी। यानी कि जैसे नेनुआ हो गलो सब में नेनुआ बैगन बताइए या वही टाइप पर हो। और यह पर इसमें अगर हमने के पैदा कर जाओ तो भरपूर पैदा हुई।
2: आ अब देखी आज के नसीहत बा कि धान के बिचड़ा के देखभाल करी तो किसान साथी लोग धान के बढ़िया उपज खातिर मजबूत आ स्वस्थ बिचड़ा के बहुत महत्व बा। अगर बिचड़ा कमजोर हो जगत भाई तो रोपनी के बाद फसल के बढ़वार पर खराब असर पड़ सकेला। इस समय बहुत जगह मानसून के गति धीमा बा तो ए स्थिति में बिचड़ा के विशेष देखभाल बहुत जरूरी बा। बिचड़ा वाला खेत में नमी बनल रहे के चाही, पानी के कमी ना होके, बाकी बहुत ज़्यादा पानी भी ना जमा होके के चाही। जहाँ पानी भर गई होके वहीजा अतिरिक्त पानी निकाल देवे के चाही। आ बिचड़ा में अगर पत्ता पियर पड़त दिखाई देत होके तब प्रति कट्ठा जरूरत के हिसाब से हल्का यूरिया के प्रयोग कर जा सकेला। खाद के प्रयोग हमेशा नमी वाला खेत में करी ताकि पौधा ओकरा के आसानी से ग्रहण कर सके। आ बिचड़ा में घास फूस उगे लागे तो ओकरा के समय पर निकाल दी। घास फूस खाद पानी और रोशनी के हिस्सा ले लेला जौना के चलते बिचड़ा के बढ़वार रुक जाला।
1: लेकिन एक बात कह भैया, हम खाद के प्रयोग जैसे कि यूरिया बतैल हई उस शाम में करे में ज्यादा बेहतर होला क्योंकि यूरिया गर्म हो।
2: हाँ,
1: और शाम में करे से हाँ सुबह में अगर करते हैं तो पौधा पर असर पड़ सकता।
2: तो देखिए कुछ चिट्ठी पत्र भी आज वाला था।
1: देखिए वो चिट्ठी आये बोलवे ग्राम पोस्ट नहर विक्रमगंज से लिखे वाला बानी गणेश सिंह मंटू सिंह। यहाँ लोग लिख रहल बानी जा कि हमने के मोट अनाज के खेती करे के चाहत नहीं जा, ओकरा कैसे कइल जा, ओकर पौधा का कब तो हमने के बतौल ही जा,
2: तुरंत
1: सुन ही जा। उम्मीद बा वहाँ से उन लोग के लाभ मिलल हुई और वहाँ का चिट्ठी लिखने के खातिर बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कृषि सलाह भी बा मानसून के बारे में बताई।
1: देखिए मानसून जौन बा भारत मौसम विज्ञान के अनुसार विभाग के अनुसार 24 से 25 माने आज तक जिले में लू माने हीटवे चले के संभावना रहा। एकरा बाद एक दो स्थान पर मेघ गर्जन हल्का वर्षा होके के संभावना बा। अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60% और 70% दोपहरिया में 25 से 30% रहे के संभावना बा। यह अवधि में 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दक्षिणी पूर्वी हवा चले के संभावना बा। एकरा बाद देखल जाओ
2: कुछ सलाह भी बका।
1: हाँ हाँ
2: देखिए सलाह में बता दिया कि वर्तमान मौसम आ परिस्थिति के देखते हुए किसान भाई लोग फसल में नमी संरक्षण आ जल निकासी के उचित व्यवस्था बनौले रखस। फसल के नियमित निगरानी करे के चाही आ उर्वरक आ कीटनाशन के प्रयोग

0: खाली साफ मौसम में करी। खेत में खरपतवार नियंत्रण आ आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करे के चाही। एकरा अलावा जे धान के खेती करे वाला किसान भाई लोग बा, तो वर्तमान में मानसून के कमजोर स्थिति के देख के सलाह दिया जाता कि ऊंचा भूमि में धान के खेती मत करी। जौन किसान भाई लोग के पास सिंचाई के सुविधा उपलब्ध बा, वो मध्यम अवधि वाला धान के किस्म के बिचड़ा गिरावस आ बीजस्थली में नमी बनौले रखे खातिर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करे के चाही। एकरा अलावा विशेषकर ऊंचा भूमि में धान के स्थान पर वैकल्पिक फसल के खेती पर भी विचार करे के चाही कि मान ली अगर धान ना भइल तो वैकल्पिक खेती हो जा हो सके। मक्का के खेती के बारे में भी अगर कुछ होके तो बता।
1: हाँ, देखिए मकई जोन बा हमनी के खरीफ मक्का के बुआई मौसम साफ तिघड़ी बा और खेत के जुताई करके 10 से 15 टन गोबर के सड़ल खाद हर हेक्टर में डाल के ओकरा के प्रति हेक्टर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम स्फुर और 50 किलोग्राम पोटास व्यवहार करके अनुशंसित मक्का जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान एक आ दू, राजेंद्र शंकर मक्का, गंगा 11 बा ओकरा के बुआई हमनी के कर
0: देवे के चाहिए। तो जगत भाई देखी आज हमनी के एक कार्यक्रम के समय ओरा गई, बेरा हो गई बा किसान भाई बहन लोग से विदा लेवे के। एक कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहन संतोष कुमार। तो चलत चलत ले सभी श्रोता भाई बहन लोग के आ जगत भाई रहुओ के पंचू भाई के राम राम।
1: राम राम। अब सब श्रोता भाई लोगन के भी जगत भाई के नमस्कार।

अभी हमारे किसान भाई अपना प्रसारण सुन रहे थे, किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए सुनिए सांझ गीत।

0: जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता का महीना है। इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम कुमारी पूनम हॉस्पिटल सासाराम रोहतास बिहार से बोल रही हूँ। हर दंपति का सपना एक खुशहाल परिवार बसाने का होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी यानी बंजापन कई दंपति का यह सपना साकार होने नहीं देता। इनफर्टिलिटी का अर्थ है एक बरस तक नियमित प्रयासों के बावजूद गर्भधारण न होना। यह हर 6 में से एक दंपति को प्रभावित करता है। याद रखें, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला नहीं पुरुष भी हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव से लेकर मॉडर्न प्रभावी उपचार जैसे IVF तक उपलब्ध है। अब समय है कि हम इस विषय पर बिना संकोच खुलकर बात करें और डॉक्टर से उचित मार्गदर्शन लें।
0: गुफिक बायोसाइंसेस के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी।
2: इस संदेश के पहले आपने भैया दूज फिल्म का गीत सुना, अलका याग्निक और उदित नारायण के युगल स्वरों में। शब्दकार थे लक्ष्मण शाहबादी, संगीतकार थे चित्रगुप्त। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कल्पना पटवारी और उदित नारायण की आवाज़ों में विनय बिहारी का लिखा गीत। तर्ज बनाई है राजेश रजनीश ने, फिल्म है प्रतिज्ञा।

0: कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग
1: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता असुलभ
0: ता बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700001-4242 पर
1: जी हाँ नंबर बा 8700001-4242

0: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग देही ओके बुलंदियन के पाख।
1: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
0: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के

0: तो श्रोताओं, अभी आपने महेंद्र कपूर और आशा भोसले को सुना। फिल्म थी अमर सुहागन, और इसके पहले आपने आशा भोसले की आवाज़ में रूठ गइले सैया हमार फिल्म का गीत सुना। इन्हीं गीतों के साथ ही सांझ गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान।
1: आयुष्मान ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुआर सासाराम के सौजन्य से।

हेलो बिहार वालों, अरे हमने हेलो कह दिया, आपका राजेश आपको हेलो कह दिया, लेकिन नहीं, हम कहेंगे सब लोगों को नमस्कार है राजेश की तरफ से। और राजेश एक बार फिर से स्वास्थ्य पत्रिका, पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका कहें तो अच्छा होगा, आयुष्मान लेकर आप सबों के घर आंगन में आ गया। जी हाँ, आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, हम यही चाहते हैं। हम बोले तो इस कार्यक्रम को हम जिनकी तरफ से लेकर आ रहे हैं, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुहार रोहतास सासाराम की तरफ से। हाँ, ये इच्छा है कि सारे लोग, हाँ कोई भी बीमारी आपको तो हो ही नहीं, अगर हो जाए तो उससे निजात मिल जाए। लगातार आपके घर आंगन में आते हैं, विशेषज्ञों से मुलाकात करवाते हैं, जानकारियां दिलवाते हैं और आपके जीवन को खुशहाल बनाने की कोशिश करते हैं। बड़े हों, छोटे हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, स्त्री हों, पुरुष हों, कोई भी हो, हाँ सारे लोग हमारे इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, जब पूरा बिहार, पूरा झारखंड इसे सुनता है ना, और जब फोन करता है हमें इस नंबर पर 6206803040, हमने कहा 6206803040, तब हमें एहसास

0: होता है कि ये पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान कितना कारगर साबित हो रहा है। आयुष्मान ये एक बहुत ही उम्दा नाम है। आयुष्मान भव मतलब आप अच्छे से रहें, आपकी कीर्ति दुनिया में फैले। और इसी से संबंधित, इसी से नाम से संबंधित देश में स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है, आयुष्मान कार्ड, जिस पर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होता है और नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी होता है। हम इस बात की जानकारी हम दे रहे हैं। एक बात हम कहना चाहते हैं, लगातार हम डॉक्टर रजत कालरा को बुलाते हैं। आपको भी ऐसा लगता होगा कि आफ्टर ऑल राजेश केवल डॉक्टर रजत कालरा से ज्यादा बातचीत क्यों करवाता है। डॉक्टर रजत कालरा चाइल्ड कार्डियक सर्जन हैं, बच्चों के हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और किसी भी घर की जान जो होती है ना वो बच्चे होते हैं। उस माता पिता से पूछिए जिनके गोद में किलकारी लेता हुआ बच्चा हंसता मुस्कुराता है, कितना अच्छा लगता होगा। लेकिन अगर उसी बच्चे को कहीं कोई बीमारी हो जाए हृदय से संबंधित, तो इससे बुरा कुछ भी उसके जीवन में नहीं हो सकता, है ना। इसीलिए हम डॉक्टर रजत कालरा को हमेशा बुलाते हैं और आप तक जानकारियां पहुंचाते हैं कि अगर बच्चों में, आपके बच्चे में दिल से संबंधित, हृदय से संबंधित कोई रोग है, ये लक्षण दिख रहे हैं, ऐसा बच्चा बिहेव कर रहा है, बच्चा नीला पड़ रहा है, हृदय में छेद है, हाँ, तो परेशान ना हो, उसका इलाज भी आ गया है। और डॉक्टर रजत कालरा इस क्षेत्र के महारथी डॉक्टर हैं और नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर रोहतास में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज भी हमारे साथ हैं डॉक्टर रजत कालरा। अब इनसे हम जानकारियां इनके क्यों पूछें, हाँ, सीधे सीधे बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, बातचीत की शुरुआत करते हैं और बच्चों की बात होगी, उसके हार्ट की बात होगी, हृदय की बात होगी, लेकिन कुछ अटपटा सा नहीं लगता है कि बच्चों में हार्ट की बीमारी, हाँ, क्या कहना चाहिएगा इस पर?
1: देखिए, आज से 10 साल पहले तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम होना अविश्वास था, खासकर गांव जैसे जगहों पे। और अब धीरे धीरे खासकर डिजिटल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से लोगों में अवेयरनेस तो आ रही है कि हाँ, रेडियो के वैसे कि भाई ऐसी अवेयरनेस है कि बच्चों को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। बट अब मेन प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस करना। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, आउटरीच प्रोग्राम बढ़ रहे हैं, तो अब समय पे डायग्नोसिस हो पाता है, जिससे उनको माता पिता को इतला दे पाए कि भाई इस वजह से बीमारी है। और फिर वो सोचते हैं, आगे हिम्मत करते हैं, कुछ इलाज कराते हैं, कुछ ओपिनियंस देते हैं। बट पहले और अब में ये फर्क है कि धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है।
0: क्या लोगों में विश्वास आ रहा है क्या?
1: देखिए, जैसे जैसे बच्चे ठीक होके जा रहे हैं, कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और पहले हमारे पास लोकल पेशेंट आते थे, अब सीतामढ़ी, मोतिहारी, झारखंड के अलग अलग इलाकों में, बनारस से, यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर से भी पेशेंट आ रहे हैं।
0: कार्यक्रम चल रहा है आयुष्मान, पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में राजेश हूँ, आप सबों के घर आंगन में, आपके आपके आपके आकाशवाणी केंद्र से ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। सारे लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, खास करके जब बच्चों की बात आती है, आप बड़ों की भी बात आती है, तो हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, जानकारियां आप तक भरपूर रहे, कि कोई समस्या आए तो आप सही जगह जा सकें। एक फोन नंबर भी बताते हैं कि आप इसे डायल करके जानकारियां ले सकते हैं। नंबर है 6206803040, 6206803040, ये नंबर है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, ये बच्चों के लिए जो हार्ट की समस्या या इस तरीके का जो आपने आपके नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो चिकित्सा दी जाती है, अकेले या आपकी पूरी टीम है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए पूरे बिहार वालों को, क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है हेल्थ सेक्टर में, खास करके, और खास करके जब बच्चों की बात आती है।
1: कहते हैं ना, प्लेयर इज एज गुड एज अ टीम, है ना। तो ऐसे ही केवल डॉक्टर के अकेले होने से हार्ट का इलाज नहीं हो पाता, तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सुविधा चाहिए, टीम चाहिए, मैन पावर चाहिए।

0: वो सब इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तभी हम डिलीवर कर पा रहे हैं। और ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पूरे देश भर में कुछ ही गिने चुने सेंटर हैं जहां पे बच्चों का इलाज सब्सिडाइज कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, खासकर जहां पे वजन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारी जगहें हैं जहां पे 10 किलो के ऊपर के बच्चे, उन्हीं का इलाज हो सकता है, लेकिन हमारे सेंटर में हम वजन पे कोई मायना नहीं रहता, बच्चे की गंभीरता पे देखा जाता है, चाहे 2 किलो का हो, 2.5 किलो का हो, और अगर बहुत सीरियस है जिसको इलाज की जरूरत है, हम लोग वो भी आयुष्मान में फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं।
1: इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, आपके जो साधन हैं, हाँ, उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या क्या है यहाँ?
0: देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है, मॉडलर ओटी है, आईसीयूज में हेपा फिल्टर्स लगे हुए हैं, मॉडलर आईसीयूज हैं, वेंटिलेटर अप टू डेट है, यानी सारा इक्विपमेंट जो भी एक एडवांस कार्डियक सेंटर में होना चाहिए, देश में नहीं विदेश में, वो भी हमारे पास। ये एक क्वार्टनरी केयर सेंटर है, यानी यहाँ पे सीरियस मरीजों का इलाज किया जाता है, तो बाय वर्चू ऑफ दैट हम 24 घंटे सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं।
1: अच्छा, एक बात डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बच्चों में हार्ट की समस्या कब आती है, क्या गर्भ में या गर्भ से बाहर जब बच्चा जन्म लेता है, और क्यों क्यों होता है ये ऐसी तरीके की समस्या बच्चों में, कैसे आती है?
0: जो बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जब बच्चे पनप रहा होता है गर्भ में, तभी हो जाता है। तो ये पता तभी लगता है, ऑफ कोर्स, जब बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन आजकल एंटीनेटल इकोज होते हैं, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तो इको के जरिए बच्चे की हार्ट की सेहत भी देखी जा सकती है, ताकि ये प्लान करके डिलीवर कर सके। अब दूसरा, ये होता क्यों है? तो हर 3 या 4 बच्चे, हर 1000 में से 3 या 4 बच्चों को ये कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन, यानी हार्ट के बनावट में दिक्कत आ जाती है। तो इसका कोई एक कारण नहीं है, मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं। तो इसीलिए ये केवल भारत में ही नहीं, विकसित देशों से भी हटाई नहीं जा सकती, तो वहां पे भी उतना ही इंसिडेंस है जितना हमारे यहाँ है। तो कोई इसका एक विशेष कारण नहीं है, और ये इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप में दोष ढूंढा जाए।
1: कोई कारण पता नहीं चल पाया है इसका, डॉक्टर साहब का कहना है। कार्यक्रम चल रहा है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान, बच्चों के हृदय रोग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इलाज होता है, कार्डियक सर्जरी क्या होती है, ये सारी चीजों पर डॉक्टर रजत कालरा से बातचीत चल रही है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। 6206803040, 6206803040 ये नंबर है, इस पर आप डायल करके जानकारियां हेल्थ से संबंधित ले सकते हैं, या नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में क्या क्या सेवाएं दी जाती है इसके विषय में भी जानकारियां ली जा सकती है। वैसे हम आपको बताएं कि आयुष्मान कार्ड से यहां इलाज होता है। डॉक्टर कालरा, एक छोटा सा सवाल, क्या मैल न्यूट्रिशन भी इसका कारण हो सकता है, क्या हम ढूंढ सकते हैं क्या?
0: देखिये, मैल न्यूट्रिशन जहां तक बोला जाए, जैसे फोलिक एसिड डिफिशियंसी है, उसकी वजह से कुछ हद तक हो सकता है, बट बहुत सारे समाज में लोग हैं जो मेल नरिश नहीं है, खासकर माता पिता, हाँ, फॉरेन में भी होता है, तो फिर वहां पे क्यों हो रहा है ये, राइट? तो कहीं पे मल्टी फैक्टोरियल बोलते हैं, थोड़ा सा जेनेटिक्स, थोड़ा सा खान पान, थोड़ा सा रहन सहन, तो मल्टीपल चीजें बनकर ये कॉज करती है। तो किसी एक चीज को एलिमिनेट कर दें तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा जिससे इसका इंसिडेंस कम कर सकें। हाँ, ये जरूर है कि फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, कुछ दवाइयाँ जैसे वॉरफरिन हो गया, लिथियम हो गया, इनको अवॉइड करना चाहिए, जिनकी वजह से पता है हमको कि हार्ट के बनावट में प्रॉब्लम हो सकता है। बट बहुत सारे कारण हैं, सबको नहीं, एक पिन पॉइंट से नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से ही हार्ट की प्रॉब्लम।
1: अच्छा, एक बात डॉक्टर रजत कालरा, फटाफट, हाँ, लोगों तक जानकारियां पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
0: अभी हम लोग एक तो आउटरीच ओपीडीज कर रहे हैं, खासकर सीतामढ़ी, मोतिहारी, फिर जमुई, इधर देवघर, बनारस, जौनपुर, तो इन जगहों पे जाकर कम्युनिटी में लेवल पे जाकर स्क्रीनिंग करके वो कर रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि

0: जगह जगह एडवर्टाइजमेंट्स यानी पोस्टर्स लगा रहे हैं ताकि लोगों को पता लगे कि यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। और तीसरा है कि ऑडियो मीडिया जैसे रेडियो या प्रिंट मीडिया, अखबार में एडवर्टाइज, इनके जरिए कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक बेस्ट इज कम्युनिटी मैसेज, जितने बच्चे ठीक होकर जाएंगे वो एक दूसरे को बताएंगे, माउथ पब्लिसिटी, उसी से ही कॉन्फिडेंस। और
1: बहुत अच्छी पहल है डॉक्टर रजत कालरा, आप ओपीडीज में जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जाकर बता रहे हैं एडवर्टीजमेंट, और इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारी रीच करोड़ों लोगों तक होती है ना, जिसमें हम बताते हैं कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के तहत जो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, जन सेवा में खड़ा है। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारे सवाल शेष रह गए हैं, अगले एपिसोड में हम आपसे बातचीत कर जानेंगे। पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका में अभी बातचीत चल रही थी डॉक्टर रजत कालरा से, बच्चों के डॉक्टर हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि चिकित्सा का जो स्थान है ना, वो भरोसा है, और आपका भरोसा हमें मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास में, जी हाँ, आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है, पैसे के चलते कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता। नंबर नोट करें 620-680-3040, 620-680-3040, ये नंबर है। तो बस आज हमें यानी अपने दोस्त राजेश को दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह नहीं 15 दिनों के बाद फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि ये है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान। हाँ, संकोच नहीं कीजिएगा, चलें, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहिए।
2: आयुष्मान
1: नमस्कार।
2: ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे थे नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुआर सासाराम के सौजन्य से।
3: आयुष्मान, अभी आप सुन रहे थे हमारा यह प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं संजय चतुर्वेदी। गुड इवनिंग रोहतास लेकर। जी हां, आज दिनांक 25/6/2026 को जिला पदाधिकारी रोहतास श्री दीपक कुमार मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक श्री रोशन कुमार द्वारा संयुक्त रूप से मुहर्रम पर्व को लेकर विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालकर अमन शांति के साथ मुहर्रम पर्व मनाने का संदेश दिया गया। फ्लैग मार्च के दौरान अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों में चौक चौराहों एवं जुलूस मार्गों का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर आम जन से पर्व को आपसी भाईचारे एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की गई। साथ ही असामाजिक तत्वों एवं अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। जिला पदाधिकारी ने कहा कि मुहर्रम पर्व के दौरान प्रशासन पूरी तरह सतर्क एवं सजग है। सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं तथा विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए लगातार गश्ती, निगरानी एवं संवेदनशील स्थलों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी प्रकार की भ्रामक अथवा आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोका जा सके। फ्लैग मार्च में अनुमंडल पदाधिकारी विक्रमगंज,

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित प्रशासन एवं पुलिस विभाग के वरीय पदाधिकारी, दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। रोहतास जिले में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। इसी क्रम में आज विक्रमगंज थाना परिसर में जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों तथा गणमान्य लोग शामिल हुए। बैठक में प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पर्व के दौरान निर्धारित मार्ग, समय एवं नियमों का पालन किया जाएगा तथा डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की गई। बैठक में उपस्थित शांति समिति के सदस्यों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया और कहा कि सभी समुदाय मिलजुल कर पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएंगे। प्रशासन ने आम जन से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि, अफवाह या असामाजिक तत्व की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस को दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। और साथ ही बढ़ते तापमान और इनक्लीमेंट वेदर को देखते हुए आप जहां कहीं भी हों, रहिए सावधान, क्योंकि मौसम के असर से आपके सेहत पर प्रतिकूल असर आ सकता है। चलिए एक नगमा सुन लेते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए।

0: तो श्रोताओं, इसी नगमे के साथ ही गुड इवनिंग रोहतास से संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे
2: और इस गीत के बाद
0: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पटना से प्रसारित समाचार और जिले की हलचल। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

This is All India Radio, the news read by Anuja Kumar.

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संविधान हत्या दिवस पर याद आए आपातकाल के काले दिन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटा। भोजपुर कथित पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच शुरू। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, जल्द होगा न्याय। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, लापरवाही के आरोप में हटाए गए पीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर गीता सिन्हा को मिला प्रभार। और राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में गर्मी का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान लू का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। इस अवसर पर देश और प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के माध्यम से आपातकाल के काले दिनों की याद दिलाई।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चो में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया।
0: प्रदेश भाजपा की ओर से पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले 450 जेपी सेनानियों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंग्रेजों के समय बनाए गए मीसा कानून के तहत बिना कारण और बिना न्यायिक समीक्षा के 1,31,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया था।
3: मैं इमरजेंसी के बारे में चर्चा करूं, 1,31,000 लोगों को बिना कारण और बिना जुडिशियल स्क्रूटनी के जेल के अंदर डाला गया था। इतनी बड़ी संख्या को अंग्रेजों ने भी कभी जेल में नहीं डाला, जो इमरजेंसी में 1,31,000 लोगों को इमरजेंसी में डालने का काम मिसेस गांधी ने किया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उन्होंने भी इसका इस्तेमाल इतने लोगों पर नहीं किया जो मिसेस गांधी ने किया था।
0: केंद्रीय मंत्री ने आपातकाल के दौरान पटना से शुरू हुए जन आंदोलन को याद करते हुए कहा कि वह स्वयं भी इस संघर्ष के सहभागी रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या के विरुद्ध लड़ाई का बीज बिहार की धरती पर पड़ा था और यहीं से देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपातकाल के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने प्रेस की स्वतंत्रता और संविधान के सभी मूल्यों का गला घोंट दिया था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की यही सीख है कि जनता संविधान और प्रजातंत्र

0: गला घोटने वालों को समय आने पर मजबूती से जवाब देती है।
1: हम सब जानते हैं कि 25 जून जहां प्रजातंत्र का गला घोटा गया, प्रेस का गला घोटा गया, व्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लग गई, संविधान पर कुठाराघात हुआ, आज हम इसलिए याद करते हैं कि भारत का प्रजातंत्र जिस मजबूती के साथ उस समय प्रजातंत्र का गला घोटने वाले को जवाब दिया था, यह प्रजातंत्र भारत का हमेशा हमेशा मजबूत रहे और इसको कोई आंच ना आए, इसकी हम प्रतिज्ञा भी करते हैं।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आपातकाल का विरोध करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को नमन किया। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल एक काला अध्याय था। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा, संविधान के सम्मान और जनस्वर की शक्ति को सदैव सर्वोपरि रखना ही लोकतंत्र सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।
2: आज अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। ये 25 जून जब आता है तो लोगों के लिए चिंता का दिन हो जाता है। इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजादी दिलाया, लेकिन कुछ लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करना शुरू किया और संविधान हत्या दिवस के तौर पर आज देश में हम मना रहे हैं। जेपी सेनानी एक तरह से दूसरे इस देश के आजाद दिलाने वाले लोग हैं। इस देश में आजादी तो अंग्रेजों से दिया गया, लेकिन अपने लोगों ने जो कष्ट दिया उससे मुक्ति दिलाने का काम किसी ने किया तो वो जेपी सेनानियों ने किया है।
0: आपातकाल विरोधी आंदोलन के अग्रणी नेताओं में शामिल रहे सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद ने अपने संस्मरण साझा किए हैं। आकाशवाणी से बातचीत में श्री प्रसाद ने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों पर बड़ा प्रहार था।
3: 25 जून की अर्धरात्रि 1975 में आपातकाल की घोषणा किया गया और उसमें सभी बड़े बड़े नेता लोग सब लोग एक साथ गिरफ्तार कर लिए गए। उस दौरान हमें भी गिरफ्तार करने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन फिर एक कुर्की जब्ती हमारा कर लिया गया। तब मैंने जाकर के अपना गिरफ्तारी दिया था और गिरफ्तारी देने के बाद जब मैं पटना में बाहर आया था तो बाप के नाम पर किरोल मिला था तो उस पर आए थे और आकर के फिर इस आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका मैं निभाता रहा।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक अधिकारों को समाप्त किए जाने की यादें दोहराई हैं।
4: जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, पुलिस सामने खड़ी थी और मुझसे सीधे पूछा, तू ही शिवराज सिंह चौहान है क्या? मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ। बोले तू इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चला है? तो मैंने कहा कि भाई मेरी परीक्षा है, मेरी बात तो सुने। उन्होंने कहा कोई बात नहीं सुनी जाएगी। पहले तो थप्पड़ मारे, अंदर घुसे, तलाशी ली तो मेरे यहाँ से सारा मटेरियल मिल गया। आपातकाल हटाओ और इंदिरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, गूंजे धरती और आकाश, देश का नेता जयप्रकाश, सारे मिल गए। तो वहां से पीटते हुए ले गए हबीबगंज थाना। मैं जेल के अंतिम 9.5 महीने बोर्ड की परीक्षा नहीं दे पाया मैं।
0: जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि 25 जून भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन है। श्री झा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस आंदोलन के दौरान जेल में रहे थे।
5: भारतीय लोकतंत्र में सबसे काला दिन आज ही का दिन रहा है। इस आपातकाल में जो विपक्ष के नेता थे वो तो जेल में बंद हुए ही, जो पत्रकार थे उनको भी पूरा बैन कर दिया गया था। जयप्रकाश नारायण ने पूरे आंदोलन को लीड किया, जेपी मूवमेंट जिसको कहते हैं। हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी भी 2 साल के करीब जेल में रहे इसी आपातकाल, और आज भी कांग्रेस का माइंडसेट वही है। आज तक देश से माफी नहीं मांगा आपातकाल के लिए, तो उसी माइंडसेट में है।
0: विभिन्न जिला मुख्यालयों में भी संविधान हत्या दिवस मनाया गया। मुंगेर के 3 नंबर गुमटी के पास स्थित सामुदायिक भवन में भाजपा की ओर से आपातकाल के दौरान विरोध करने वाले सेनानियों का सम्मान किया गया। इधर रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। इस दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई। अन्य जिलों में भी आपातकाल की वर्षगांठ को लोकतंत्र बचाओ के संकल्प के साथ मनाया गया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9 की नई सामाजिक विज्ञान पुस्तक में आपातकाल पर अध्याय शामिल किया है। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड नाम से शामिल अध्याय में आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया है। एनसीईआरटी ने पहली बार स्कूल स्तर पर आपातकाल को विस्तृत रूप से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। इसे लेकर देश भर में नई बहस छिड़ गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि भोजपुर कथित मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच से घटना का सच सामने आएगा। उन्होंने पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही रिपोर्ट आएगी और न्याय होगा।
1: भोजपुर में घटना घटी, तुरंत सरकार ने सबसे ऊपर के जो आयोग होते हैं जुडिशियल कमीशन का गठन तुरंत करने का काम बिहार की सरकार ने किया साथ, क्योंकि न्याय मिले, कोई यदि गलत है तो उस पर कार्रवाई होगा और बिहार की संरचना में सबका साथ सबका विकास, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे।
0: इधर मामले की न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय आयोग ने आज सुबह घटनास्थल का दौरा किया। श्री सिन्हा ने पीड़ित परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत की। इस दौरान शाहबाद के DIG सत्य प्रकाश, जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया, पुलिस अधीक्षक राज सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। स्वास्थ्य विभाग ने पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। विभागीय अधिसूचना में कहा गया है कि डॉक्टर सिंह पर बिना सूचना अनुपस्थित रहने और अन्य कार्यों में लापरवाही का आरोप सत्यापन के क्रम में सही पाया गया है। PMCH के स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग में प्राध्यापक डॉक्टर गीता सिन्हा को कॉलेज के प्राचार्य का प्रभार दिया गया है। ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने कहा है कि राज्य में ऊर्जा उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मंडल ने कहा कि 24 जून को राज्य में 9068 मेगावाट के रिकॉर्ड बिजली की मांग को पूरा करने में विभाग सक्षम रहा है। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है और लगातार बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में प्रचंड गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, पटना, नालंदा और गया समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं विभाग ने राज्य के उत्तरी भागों में अधिकांश स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट भी जारी किया है।
2: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: प्रदेश के विभिन्न भागों में मुहर्रम को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर निकलने वाले अलम और ताजिया जुलूस के दौरान शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए विभिन्न जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। शेखपुरा, अरवल समेत विभिन्न जिलों में आज फ्लैग मार्च निकाला गया। इधर पटना के फुलवारी शरीफ, पत्थर की मस्जिद, दानापुर, पटना सिटी समेत विभिन्न स्थानों पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही जुलूस मार्ग पर पहलाम स्थल के आसपास अस्थायी पुलिस चौकी बनाया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। यह आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से अगले महीने की 10 तारीख तक किए जा सकते हैं। मुंगेर जिले के वासुदेवपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सहनी टोला में पुलिस ने 3 फरार अपराधियों के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। इन सभी के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। अररिया जिले के रानीगंज और RS थाना क्षेत्र से पुलिस ने विभिन्न मामलों के वांछित 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शिवहर व्यवहार न्यायालय में आज नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय

0: दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मधुबनी जिले में नशा मुक्त भारत सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत वाहन जांच के दौरान पुलिस ने बंदूक के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी ऋचि पांडे ने आज पुनौरा धाम मंदिर निर्माण परियोजना के तहत निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संविधान हत्या दिवस पर याद आए आपातकाल के काले दिन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटा। भोजपुर कथित पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच शुरू। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, जल्द होगा न्याय। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, लापरवाही के आरोप में हटाए गए पीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर गीता सिन्हा को मिला प्रभार। और राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान लू का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: और इस गीत के बाद

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सीतामढ़ी जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश कुमार।
3: सीतामढ़ी जिले के कई अभ्यर्थियों ने 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग BPSC परीक्षा के परिणाम में सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। रूनी सैदपुर के अभिषेक आनंद और सुरसंड के राहुल कुमार का चयन उप समाहर्ता पद के लिए हुआ है। वहीं सोनवर्षा के कृष्णा कुमार और डुमरा के सुमेधा आर्यन का चयन पुलिस उपाधीक्षक पद के लिए किया गया है। इसके अलावा बोखरा के जयानंद ठाकुर का चयन कारा अधीक्षक पद पर हुआ है। इन सफल अभ्यर्थियों की उपलब्धि से पूरे जिले में हर्ष का माहौल है। परिजनों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने सभी चयनित उम्मीदवारों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इधर बीते दिनों जिले के 6 परीक्षा केंद्रों पर नीट परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हुई। इस परीक्षा में कुल 3,227 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 298 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थियों की सघन जांच की गई तथा कड़ी निगरानी के बीच परीक्षा आयोजित कराई गई। इस दौरान जिला पदाधिकारी रिचि पांडे और पुलिस अधीक्षक अमित रंजन सहित अन्य वरीय अधिकारियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, CCTV निगरानी, पेयजल, बैठने की व्यवस्था सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा की और शांतिपूर्ण आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जिले में बीते दिनों कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में

विविधीकरण को बढ़ावा देने तथा उर्वरकों की कालाबाजारी पर रोक लगाने पर जोर दिया गया। किसानों को समय पर बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। वहीं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की समीक्षा बैठक में जल संकट से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने तथा लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी गई। जिले में जारी भीषण गर्मी के प्रकोप ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी है। जिले में तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है। वहीं मॉनसून का देखते हुए जिले में संभावित बाढ़ की तैयारियों की लगातार समीक्षा की जा रही है। तटबंधों, सड़कों और संवेदनशील स्थलों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है तथा सुरक्षा कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ से निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, राहत शिविरों की व्यवस्था, नावों की तैयारी तथा आपातकालीन सेवाओं की समीक्षा भी की जा रही है।

7:50 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम ई मन पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को संजय चतुर्वेदी का सप्रेम नमस्कार और कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी। बस एक विनम्र निवेदन यह कि मौसम को देखते हुए, चूँकि जिला प्रशासन ने, राज्य सरकार ने भी आग्रह किया है कि आप जहाँ कहीं भी हों अपने आप को, अपने और अपनों को भी लू के प्रकोप से बचाएं, तो चाहे जहाँ भी आप हों अपना ख्याल रखिएगा और मौसम संबंधी कुप्रभावों से खुद को बचाइएगा। चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का पहला नगमा। बंटी और बबली फिल्म का गीत है, शंकर महादेवन आलिशा और साथियों ने इसे गाया है। गुलजार ने गीत को लिखा है, स्वरबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने। और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण। जी हाँ, आप हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन बाला, ओम कुमार, आरती सुरलकर ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। और साथ ही साथ इसी गीत के लिए फरमाइश आपकी भी आई है मेल के माध्यम से। आप हैं गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से, राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी अच्छेलाल राय और बुल्की वाली फलना झा, नया नगर सुपौल बिहार से, श्वेता रंजन विद्यार्थी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, पप्पू जी, गजेंद्र कुमार, निराला और चीलना झा। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश का ये नगमा, लिखिए सुनिए।

बंटी और बबली फिल्म का गीत अभी आपने सुना और श्रोताओं आपकी पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है मुझे कुछ कहना है। जी हाँ, इस फिल्म में आइए सुन लेते हैं बाबुल सुप्रियो के साथ प्रीति और पिंकी को। समीर के लिखे गीत की संगीत रचना की है अनु मलिक ने और इस गीत को सुनना चाहते हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और करण वीर हाउस भूचो कैंचिया, बठिंडा पंजाब से आप हैं प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दफिंदर वरिंदर, कुलदीप, सीमू एकम, दमन और अभिजोत। और इसी गीत के लिए हमें ये MLV है, जी हाँ आप हैं पाकीज़ा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी सनावद से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमस खत्री, रमेश कोड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। जमा मस्जिद रोड गोगावा से आप हैं इसी गीत को सुनने वाले हाजी इशहाक लोलामानी, उमर मोहम्मद, उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी। चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का मुझे कुछ कहना है फिल्म का नगमा, मैंने कोई जादू नहीं किया। लीजिए सुनिए।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं नील कमल फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। साहिर लुधियानवी के लिखे गीत की तर्ज बनाई है साहिर ने, और इस गीत को सुनना चाहते हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। और आप हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, लोकेश जोशी, पायल जोशी, बेबी वैदेही जोशी, बैठी हंसिका जोशी और कुमारी अंकिता जोशी, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा इस गीत को सुनना चाहते हैं पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। और श्रोताओं आप हैं ग्राम खरवत से मोतीमाला, बीरा सिंह, सुनील राय, कृष्णा और खूंटी पासवान। चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश का नील कमल फिल्म का ये नगमा। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी, गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीतकार हैं रफ़ी।

जी हाँ, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं है परवाज़ दम मगर रखती है। बहुत ही शानदार नगमा भी आपने सुना नीलकमल फिल्म का, मोहम्मद रफ़ी साहब की अमर आवाज़ में। और अब आइए, हमारे श्रोतागण सुनना चाहते हैं एक और बेहतरीन नगमा अनपढ़ फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ है। और इस गीत को लिखा है राजा मेहदी अली खान ने और मदन मोहन साहब की संगीत रचना है। अनपढ़ फिल्म के इस गीत को सुनने के लिए फरमाइशें आप सबकी आई हैं श्रोताओं। जी हाँ, आप हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज एस टी अंसारी और आसमा खातून अंसारी ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। और आप हैं इस गीत को सुनने वाले, पसंद करने वाले मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरो निशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी, और गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से इसी गीत को सुनना चाहते हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और आपके मित्रगण। और एक फरमाइश और है इस गीत के लिए, जहां आप हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नुहाकर, निर्मला नुहाकर, विशाल नुहाकर, सोपान तायड़े, नारायण इंगले और आपके ढेर सारे दोस्तों ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। चलिए, अनपढ़ फिल्म का यह गीत, यह रहा आपके रेडियो सेट पर।

जी हाँ, अनपढ़ फिल्म का यह गीत था और अभी आपने सुना। चलिए, हम कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। आपकी ही फरमाइश पर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, हसरत जयपुरी के लिखे गीत की तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने, और फिल्म का नाम है पगला कहीं का। इस गीत को सुनना चाहते हैं ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी राय कारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण, जय श्री और आपके मित्रगण। और इसी गीत के लिए हमें और भी फरमाइशें जो आई हैं, जी हाँ, उनमें आप हैं उत्तर प्रदेश मऊनाथ भंजन से उस्मान अली अंसारी, आसमा खातून अंसारी, सनूबर परवीन अंसारी, आसिफ अली अंसारी, शुमैला परवीन अंसारी, रियाज सऊदी, अरबिया से अशरफ अली अंसारी, सारिक अंसारी और आपके मित्रगण। और ये हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। और एक फरमाइश आई है ग्राम भानपुर पोस्ट अंसारी थाना करघर से, श्रोता हैं अरुण कुमार सिंह, मनोज कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह, सुनील चौबे, भोला शाह, कामेश्वर सिंह और आपके मित्रगण। चलिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, फिल्म का नाम है पगला।

हुआ कहीं का, इन शब्दों के साथ कि तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ हमें, तुझे भुलाने में शायद मुझे जमाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा न लगे। लीजिए सुनिए।

है आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, आवाज़ है लता मंगेशकर की, और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण। जी हाँ, आप हैं फुटानी चौक नारायण स्टेट जिला समस्तीपुर से दलन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन, छोटू, अमित, सुमित, अमन परासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित, और बागपत उत्तर प्रदेश से इस गीत को सुनना चाहते हैं संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया, और साथ ही साथ एक फरमाइश और इस गीत के लिए, जी हाँ, आप हैं ग्राम टोरोवाल जिला नवा शहर पंजाब से, श्रोता हैं गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से कार्यक्रम ई मन पसंद। कार्यक्रम का अगला गीत आराधना फिल्म से, आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं। आनंद बख्शी ने लिखा है गीत और संगीत से संवारा है सचिन देव बर्मन ने, और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइशें आपने लिख भेजी हैं ईमेल के माध्यम से। जी हाँ, आप हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़, ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से। और इसी गीत के लिए हमें एक और एसएमएस मिला है। जी हाँ, आप हैं मोहनिया कैमूर से, भूपेंद्र महतो, संजय महतो, सुरेश महतो और समस्त महतो परिवार की ओर से ये फरमाइश है। मलियाबाग से संजय मालाकर, सुरेश मालाकर, दीपक मालाकर, गीता बबली और आपकी सहेलियाँ। और एक और फरमाइश इस गीत के लिए ईमेल के माध्यम से नावानगर से हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं। जी हाँ, आप हैं गुंजन, सुमन, राधिका, रामेश्वरी और आपकी सहेलियाँ। चलिए, बहुत ही प्यारा नगमा आपने चुना है, लीजिए सुनिए आराधना फिल्म का ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के गाए प्रोफेसर फिल्म के इसी नगमे के साथ ही आज के ई मनपसंद कार्यक्रम से संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रुपये होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। आईसीसी क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
2: Partnership with UK is taking many more dimensions.
1: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5,000

का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1,700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंतकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागा, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्यत्व के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना जम्मू

0: कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
1: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि COVID-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
2: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज।

0: सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपये किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रूपये होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बजे हैं। लोकधारा के अंतर्गत सबसे पहले सुनते हैं भरत सिंह भारती से एक बरसाती गीत।

ये थे मनोरंजन ओझा और कार्यक्रम का समापन नीलेश्वर मिश्रा की गाई इस कजरी से।

नीलेश्वर मिश्रा की गई इसी कजरी के साथ ही लोकधारा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से प्रसारित किया गया।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:15 हुए हैं। महफिल, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में चंद गज़लें।

ये थे हरिहरन। और अब आइए सुनते हैं अनूप जलोटा को, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: ठहर जाओ कि हैरानी तो जाए, तुम्हारी शक्ल पहचानी तो जाए। अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली को। इन्हीं रचनाओं के साथ ही आज की ये महफिल यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, हमारा अगला प्रसारण विविध भारती के मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।

0: फैटी लिवर इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है.
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर. ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी.
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने.
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है. और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको

0: हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हम बोल रहे हैं विविध भारती से। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत।

आज के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है, ढेर सारी कशिश है, जज्बात का सागर है।

संगीतकार मदन मोहन ने ढाई दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो गए थे।

उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का।

मुंबई आने के बाद मदन मोहन श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत,

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: उनके बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूंगा क्योंकि इट बी इजी फॉर देम, जब वो गुजरे

0: मैं 18 साल का था, समीर शायद 13 14 के थे। तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफी याद हैं, लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूजिक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिल के काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूजिक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है, लेकिन उन्हें जरूर लगा। और इसकी वजह भी है, सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों। फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
1: जी, मेरी एक छोटी सी याद है, उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था, और मुझे अभी तक याद है ये उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 ऑन किया, और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रेहाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूजिक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, और मैंने डैड को, म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सिटिंग में हूं। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी है, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूं, और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे 1000 रुपये मांगना चाहता हूं, इस खबर के लिए आप मुझे 1000 रुपये दें। तो उन्होंने कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूंगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूं, मैं बहुत बिजी हूं। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूजिक रूम में गया, और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, तो मैं देखा कि कोने में रफी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहां, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए, क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूं। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी, और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पे खड़े थे, उनके हाथ में एक शैंपेन की बॉटल थी, और उन्होंने कहा मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है, और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
0: इसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था, और दस्तक 1970 में मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी, जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था, वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के दो सूट सिलवाए, और मदन जी और संजीव कुमार ने वही दो सूट बोटाई के साथ एकदम जे सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए।

लेकिन मैं जैसे कह रहा था, इसकी वजह ये थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला अनपढ़ 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, हम मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं जैसे काम छोटा था, तो हम बोलते थे डैड तेज चलाओ तेज चलाओ, क्योंकि वर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था। तो वो तेज चलाने लगे, आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज़ पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माताजी जो साथ में बैठी थी, भाई रोको गाड़ी रोको, पुलिस आ रही है, क्या तुम इतने तेज से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए। उन्होंने कहा मदन जी, मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नज़रों ने समझा गाना जो सुना है कमाल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है।

0: संगीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत, तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति गीत।
1: कर चले हम पिता जान तन

दोस्तों, मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब खूब प्रयोग किया।

0: सन 1975, जुलाई का भीगा भीगा मौसम, जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया।
1: हम सब

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रस रंग।

ये थे जसविंदर और साधना सरगम। अब आइए सुनते हैं सुचित्रा के की आवाज़ में ये रचना।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

राजकुमार बाफना से अभी आप अनवर सागर का लिखा एल्बम सॉन्ग सुन रहे थे। आइए सुनते हैं शुभा मुद्गल के साथ एक बार फिर सुखविंदर को।

श्रोताओं, अभी आपने कुणाल गांजावाला की आवाज़ में यह एल्बम सॉन्ग सुना और इसी के साथ ही आज का रस रंग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट तराने। चित्रपट तराने कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को संजय चतुर्वेदी का नमस्कार। श्रोताओं, हमारी जिंदगी सबसे अनमोल है। जिंदगी को और भी खुश

चित्रपट तराने कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को संजय चतुर्वेदी का नमस्कार। श्रोताओं, हमारी जिंदगी सबसे अनमोल है। जिंदगी को और भी खुशहाल बनाने के लिए कुदरत ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। फ्री, मुफ्त में हवा, मुफ्त में पानी, धूप, सारा कुछ। हम अच्छे वातावरण में अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें, जिंदगी आसान हो जाएगी, जिंदगी कलात्मक बन जाएगी। जीने की कला तो हर व्यक्ति को हर हाल में आनी चाहिए। जिंदगी टूटकर रिश्तों में बिखर जाएगी, एक तेरे नाम के जुड़ने से समर जाएगी।

कुदरत ने दिन के साथ रात भी बनाया है। रात केवल अंधकार या सोने का समय नहीं, बल्कि भावनाओं, रहस्य और चिंतन का सबसे गहरा कैनवास है। इसे कवियों ने कभी उदासी और कभी भय का प्रतीक, तो कभी शांति और प्रेम के आश्रय के रूप में दर्शाया है। रात अचेतन मन और सपनों का द्वार है, जो यथार्थ से परे एक काल्पनिक दुनिया की सैर कराती है। चांद, तारे और शीतल हवा का वर्णन रात के साहित्यिक सौंदर्य को बढ़ा देता है। एक रात वैसी हो जहां खुलकर हम अपनी भावनाओं का आगाज कर सकें।

मोहब्बत के बस दो ही पक्ष हैं, या तो विरह नहीं तो मिलन। कहते हैं विरह में वेदना है, तड़प है, मिलन में कुछ नहीं है। मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है। विरह प्रेम की जागृत गति है और सुषुप्त मिलन है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि।

मुमकिन है सफ़र हो आसान, कुछ दूर चल के देखें, कुछ तुम बदल के देखो, कुछ हम बदल के देखें। श्रोताओं, आज के चित्रपट तराने कार्यक्रम के हवाले से बस इतना ही। दीजिए संजय चतुर्वेदी को आज्ञा। नमस्कार।

प्रातःकालीन प्रसारण सभा में 7:30 पर आप सुनते हैं प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास और 8:20 पर सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी।

9:10 पर आप हमारे केंद्र से सुनते हैं कार्यक्रम गीत मल्लिका और लोक माधुरी कार्यक्रम का प्रसारण समय 10:30। 10:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी।

सांध्यकालीन प्रसारण में कल बहनें अपना प्रसारण सुनेंगी घर आंगन 5:30 पर और 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गांव घर।

कार्यक्रम ई मनपसंद का प्रसारण समय 7:50 पर और भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा सुनिएगा रात्रि 9:00। एक नज़र कल के मौसम पूर्वानुमान पर। जी हाँ, कल अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस संभावित है। हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और हवा में आर्द्रता 49% हो सकता है।

आसमान साफ रहेगा, धूप खिली होगी, मौसम शुष्क रहेगा। तो श्रोताओं, यह थी कल के मौसम पूर्वानुमान की जानकारी और हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता

0: हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: श्री गोयल 3 दिन के ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK-India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a 3-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic